0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर। चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: आवश्यक सूचना। 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बरेली।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
1: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉकड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
3: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलों और झानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रूपये तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रूपये। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग प्वाइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुखपृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Center to withdraw temporary restrictions on sale and distribution of petrol and diesel from the 1st of July. West Bengal government to implement uniform civil code in the state, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. Information and Broadcasting Ministry announces major decisions to boost Indian film industry. Delhi government clears electric vehicle policy, cars under 30 lakh rupees to be exempted from road tax and registration fees. India strongly condemns Pakistan airstrikes in residential areas of Afghanistan that killed 36 civilians and injured 163 others. US and Iran to hold talks in Qatar's capital Doha today.

0: to resolve their dispute over Strait of Hormuz. And in football, Brazil enter round of 16 at the FIFA World Cup after 2-1 victory over Japan in Houston, US. The government has decided to withdraw the temporary regulatory measures governing the sale and distribution of petrol and diesel. The Ministry of Petroleum and Natural Gas said that with effect from the 1st of July, that is tomorrow, the temporary measures will be lifted from motor spirit and high-speed diesel through retail outlets of public sector oil marketing companies. We have more from a correspondent.
1: According to the statement, during the period of disruptions arising from the West Asia crisis, the government continued to shield retail consumers from the sharp increase in the international fuel prices by maintaining stable retail prices of petrol and diesel. This led to a significant price difference between retail fuel prices and those applicable to bulk consumers. The ministry said that to address this situation, the temporary regulatory measures introduced on 12th of this month prescribed a temporary limit of 200 liters of high-speed diesel per consumer or vehicle per day at retail outlets and required industrial, institutional and commercial consumers. The measures were aimed at preventing black marketing, hoarding and diversion of fuel while ensuring uninterrupted availability of petrol and diesel to retail consumers. Following a review of the supply situation of petroleum products in the country, the government has concluded that the temporary regulatory measures are no longer required in the public interest. The temporary measures help ensure adequate availability of petrol and diesels across the country while safeguarding the interest of retail consumers.
2: अरे भैया, इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारी वादा।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
6: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर। 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 rupees एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
7: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
8: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

सुप्रभात, नमस्कारम, वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। एक बार फिर से एक ब्रांड न्यू मॉर्निंग है, आप सभी का वेलकम बैक करते हैं, इस्तकबाल करते हैं जी। एक सुपर डुपर वाला गुड मॉर्निंग है, आप सभी का स्वागत अभिनंदन। आप जुड़ चुके हैं आरजे आनंद के साथ और ये है आपके शहर का अपना स्टेशन ऑफ द नेशन, दिस इज एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग। जी हाँ, आप सभी का वेलकम बैक है आज की इस खूबसूरत सी ब्रांड न्यू मॉर्निंग में। यह है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है सुबह के 8:22 हो गए हैं जी। आज 30 जून की सुबह है, मंगलवार का दिन है। सबसे पहले तो जय श्री राम कीजिए अपने दिन की शुरुआत उस परमपिता परमात्मा का नाम लेकर जिसे भी आप मानते हैं, अल्लाह, वाहेगुरु, खुदा, जिस भी यूनिवर्स में आप बिलीव करते हैं, जिस भी गॉड में आप बिलीव करते हैं, उनका नाम लेकर कीजिए आज की दिन की अपनी बेहतरीन शुरुआत। यकीन मानिए सब कुछ बहुत ही बेहतरीन होगा अगर आपने आज शुक्राना कर दिया उस परमपिता परमात्मा का जिसने आपको, मुझे, हम सभी को इस खूबसूरत जीवन से नवाजा है। श्रोताओं, आज का ये सिलसिला जो है लगातार जारी रहेगा। अगले 3 घंटे तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन अगले 2 घंटे जरूर मैं बोलूंगा कि मैं आपके साथ रहने वाला हूँ, यानी कि 10 बजे तक मेरा और आपका जो ये साथ है, जो समय है, ये जो बेहतरीन सी सुबह है, ये बिल्कुल बरकरार रहेगी। मतलब अगले 2 घंटे मेरे साथ तो मॉर्निंग आपकी सुपर डुपर लाउड रहेगी ना यार। तो मैं 10 बजे तक हूँ आपके साथ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहाँ बातें होंगी दिल से दिल तक। यस, अच्छा आज के मौसम को देख के क्या ख्याल आ रहा है? आज का मौसम है ना कमाल का औसम यार। सुबह सुबह 4 बजे ही मतलब थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हुई, हालांकि बादल तो रात से ही थे, लेकिन सुबह सुबह जब बारिश हुई हल्की हल्की तो लगा कि बारिश होगी नहीं। उसके बाद फिर से मौसम जो है थोड़ा सा चेंज हुआ और फाइनली अभी गर्मी से तो थोड़ी राहत है, बारिश इतनी तेज़ वाली नहीं हो रही, लेकिन मौसम एब्सोल्युटली औसम है। आप घर से बाहर निकलिए, ज़रा देखिए कितना सुहाना मौसम है, कितना खूबसूरत मौसम है, और इस खूबसूरत से मौसम में खूबसूरत गीतों का आनंद लेने के लिए अब आप आनंद के साथ जुड़ जाइए इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहाँ बातें होती हैं दिल से दिल तक। श्रोताओं, कहते हैं जीतने का मज़ा भी तभी आता है जब पूरी दुनिया आपके हारने का इंतजार कर रही हो और आप उसी वक्त पे उनको कुछ ऐसा जवाब दें कि आपकी हो जाए बल्ले बल्ले। कहते हैं किस्मत मौका देती है लेकिन सफलता सिर्फ मेहनत दिलाती है, है ना? तो अगर आपको सफलता चाहिए जीवन में तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी मेरे दोस्त, है ना? तो अपने हार्डवर्क पर बिलीव कीजिए, अपनी मेहनत पर बिलीव कीजिए, शॉर्टकट बिल्कुल मत अपनाइए, और लाइफ में अगर कुछ बड़ा करना है तो अपने कर्मों की किताब उठाइए और कुछ बेहतर से बेहतरीन लिख डालिए। श्रोताओं, 8:24 का समय हो गया है, चलिए शुरू करेंगे आज की एक बेहतरीन वाइब के साथ आज का सफरनामा। आपका वार्म वेलकम हो गया है मेरे स्टेशन ऑफ द नेशन पे, दिस इज मी आनंद एंड आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। निकल गया एक बहुत ही बेहतरीन ट्रैक आपके रेडियो सेट पे, इसी को सुनते हुए करेंगे आज के सफर की बेहतरीन शुरुआत। लेडीज एंड जेंटलमैन, उदित नारायण एंड साथ में लता मंगेशकर जी की बहुत ही बेहतरीन आवाज़ों में इस ट्रैक को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। आज की सुबह में आप सभी का स्वागत है, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
4: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
5: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
6: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
5: पर पापा।
6: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
7: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। We'll be right back.

0: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है,
1: लेकिन सोनिया
0: डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं,
1: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
2: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

अमेजिंग ट्रैक सुनो निगम अलका याग्निक जी की आवाज, बड़ा ही सुपर डुपर हिट वाला गाना, ये जोरदार तालियां, बिकॉज आप लोगों ने इतने अच्छे मैसेज किए हैं उसके लिए थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारे प्यारे संदेश। थैंक यू सो मच एवरीबडी इतने अमेजिंग मैसेजेस करने के लिए, आप सभी का हम दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं। मौसम बहुत ही औसम है, सब लोग मौसम के बारे में ढेर सारी बातें पहुंचा रहे हैं। आज झमाझम बारिश हो रही है, कोई लिख रहा है मौसम बहुत सुहाना है, किसी ने लिखा हवाएं अच्छी चल रही हैं, तो कोई लिख रहा है सुबह सुबह आनंद जी गर्मी से राहत मिल गई है, मजा आ गया, आज की मॉर्निंग इतनी बढ़िया हो गई है, क्या ही बताएं बाबा। चलिए बहुत अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हम तो चाहते हैं कि हर एक मौसम का आनंद लेते रहिए। और अब फाइनली गर्मियों से जहाँ हल्की फुल्की राहत है वो मिलने लगी है, अब जुलाई का महीना स्टार्ट होने वाला है, जून का महीना ऑलमोस्ट एंड हो गया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज 30 जून हो गई है एंड आई कांट बिलीव दिस कि कैसे मतलब यू नो जून का महीना निकल गया है, 2026 कैसे निकलता जा रहा है पता नहीं चल रहा है। वेल कल हमारे शहर में बहुत ही खूबसूरत चीज़ों का जो है शुभारंभ हुआ है, बिल्कुल आप सभी को पता है कल हमारे मुरादाबाद में जो है आगमन हुआ था हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने ढेर सारी योजनाओं परियोजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया, उसके बारे में डेफिनेटली बात करेंगे, बहुत सारी योजनाओं का शुभारंभ किया है एंड क्या कुछ खास रहा है कल मुरादाबाद के लिए, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी मुझे अपने लोकल फॉर वोकल में आपको बतानी है एंड आज के दिन से जुड़ी तमाम सारी जानकारियां हैं जो मुझे आपको देनी है। कल कौन कौन सी चीजों का उद्घाटन किया गया, कौन कौन सी चीजों का कल शुभारंभ किया गया अपने मुरादाबाद में, डेफिनेटली उस पर बात करेंगे अभी थोड़ी सी देर में। फिलहाल बात कर लेते हैं आज 30 जून की सुबह क्यों खास है इतिहास के पन्नों के लिए, क्या कहता है आज का मौसम, सबसे पहले वेदर चेक करेंगे। तो भैया बाहर तो हल्की फुल्की जो बारिश है वो झमाझम चलती रहेगी, आज वेदर कोल्डी रहने वाला है, एब्सोल्युटली मतलब ऑसम रहने वाला है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आज का वेदर एब्सोल्युटली बहुत अच्छा है, नो डाउट बहुत बढ़िया है, बट इस मौसम में ना आप अगर बड़े बड़े छाते निकालोगे तो शायद बादल जो अंकल हैं वो चल ना जाए, मतलब क्या क्या चाहते हो छाते नहीं निकालें, अरे बिल्कुल निकालो यार, लेकिन बहुत ज़्यादा छाते मत दिखाना क्योंकि पता चल रहा है बारिश ही भाग जाए। हम सभी को बड़ा बेसब्री से इंतजार था, बट आज एयर क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, आज की जो एयर क्वालिटी है वो इस बारिश में जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी साफ हो गई है, शुद्ध हो गई है, तो एयर क्वालिटी बढ़िया है, हवाएं जो है आज 4 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली है, ह्यूमिडिटी आज ठीक ठाक है यार, मतलब गर्मी से आज आपको थोड़ी राहत मिलेगी एंड विजिबिलिटी भी ओके ओके है। सो कुल मिला के वेदर अभी 28 डिग्री करंट टेम्परेचर दिखा रहा है एंड ये आगे जाते जाते 36 डिग्री होगा, यानी कि लेकिन आज का जो वेदर है वो थोड़ा सा कूल कूल रहने वाला है, आपको गर्मी से कुल मिला अच्छी खासी राहत मिलने वाली है। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये तो थी मौसम की जानकारी।

बात कर लेते हैं आज के दिन के बारे में, मतलब आज का दिन क्यों विशेष है, क्या महत्वपूर्ण है आज की तारीख में, आज का दिन क्यों स्पेशल जो है आज की तारीख 30 जून की। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हर दिन की तारीख बहुत ही स्पेशल होती है, बहुत ही खास होती है श्रोताओं, हर दिन कुछ ना कुछ स्पेशल रहता है इतिहास के पन्नों में। आज 30 जून को क्या महत्वपूर्ण है, चलिए एक नजर डालेंगे। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे, ये है बिंदास मॉर्निंग, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको बताते चले आज के दिन ब्राजील में जर्मनी को जो है 2.0 से हराकर फुटबॉल के विश्व कप पर जो है वो कब्जा किया था सन 2002 में आज के दिन। और आपको बता दें आज ही के दिन जो है एक और खास चीज़ हुई, इसके विषय में डेफिनेटली मैं भी आपको बताने वाला हूँ। और हर दिन बहुत कुछ खास होता है और वही हमारी कोशिश होती है कि हम आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर कर सकें। आपको बता दें ब्राजील ने कन्फेडरेशन फुटबॉल कप जीता था सन 2005 में, और आज ही के दिन फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी ने अर्जेंटीना को हराया था श्रोताओं आज ही के दिन। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आम सहमति से शांति रक्षण विभाग के बंटवारे का निर्णय किया था सन 2007 में आज ही के दिन श्रोताओं। और आज ही के दिन भूपेंद्र यादव जी का जन्म हुआ है श्रोताओं, आपको बताते चलें आज ही के दिन नागार्जुन जी का जन्म हुआ, जो भारतीय साहित्यकार हैं सन 1911 में, और रघुवंश हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं आलोचक थे, उनका भी जन्म हुआ था 1921 में आज ही के दिन। कल्याण जी हिंदी फिल्मों के सुप्रसिद्ध संगीतकार हैं, 1928 में आज ही के दिन 30 जून को उनका भी जन्म हुआ था। और आपको बताते चले हरिवंश नारायण सिंह, जो भारतीय पत्रकार और राजनेता है, 1956 में इनका जन्म हुआ था श्रोताओं आज ही के दिन। और आज ही के दिन मुकुट बिहारी लाल जी का भी जन्म हुआ, जो भारतीय राजनीतिज्ञ तथा लोकसभा के सदस्य रहे, सन 1903 में इनका भी जन्म हुआ। तो आज के दिन से जुड़ी ये थी कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारियां जो हमने साझा कर ली आपके साथ। इसके अलावा और कौन कौन से स्पेशल दिवस आज मनाए जाते हैं उस पर हम जरूर चर्चा करेंगे थोड़ी देर में विस्तार से। और आपको बता दें 1937 में दुनिया का पहला इमरजेंसी नंबर 999 लंदन ब्रिटेन में शुरू किया गया था। यस, आज के दिन दुनिया का पहला इमरजेंसी नंबर जो था 999, वो लंदन और ब्रिटेन में शुरू किया गया था 1937 में आज के दिन श्रोताओं। और आज के दिन 1938 में बच्चों और युवाओं का पसंदीदा सुपर हीरो सुपरमैन पहली बार कॉमिक्स के पन्नों पर, एक्शन कॉमिक्स पर #1 पर नजर आया था श्रोताओं आज ही के दिन। बाकी आज के दिन ऑफकोर्स बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही खास है, हर दिन कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप आनंद के साथ ही ढेर सारी ऐसी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। स्टेशन ऑफ द नेशन पे 9:43 हो गए स्टेशन क्लॉक में, एंड अभी आगे बढ़ेंगे। अगर आप भी हमारे साथ कुछ साझा करना चाहते हैं आज की सुबह, आपका स्वागत है यार, मैसेज करो मुझे 9837896896। हम तो यार आप ही की सेवा में उपस्थित रहते हैं डेली, यहाँ पर आते हैं ढेर सारा गीत संगीत लेकर आते हैं और बहुत सारा एंटरटेनमेंट का खजाना, जैसे कि आने वाला अगला गाना एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग है ब्रो। अंजी दीदी जी कैसे हालचाल है, गुड मॉर्निंग। अलका याग्निक उदित नारायण की आवाज, आप कुछ कहना चाहते हैं तो मैसेज कर दो जनाब। क्या राइमिंग छोड़ रहा हूँ आज की सुबह है। अच्छा ओल्ड टाइम फेवरेट है गाना, कितने लोगों का फेवरेट है बताओ बताओ बताओ। बहुत ही बेहतरीन ट्रैक, संजय कपूर माधुरी दीक्षित पर पिक्चराइजेशन गाने का, मूवी जितनी कमाल की थी गाने उतनी ही बढ़िया थे। और ये गाना तो भाई साहब हम सभी का, आपका मेरा, हम सभी का ओल्ड टाइम ढींचैक नंबर। होए मौसम अच्छा है, गाने अच्छे हैं, बातें अच्छी हो रही है, दिल खुश हो जाएगा भाई। क्या मैं कोई जादू नहीं करता, चलो साथ में गाना सुनते हैं, गुड मॉर्निंग।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
5: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
4: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
6: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड मुरादाबाद।
7: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
8: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
7: कॉल 8826213131।
9: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
2: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
10: बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 विद RJ आनंद के साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक, ढेर सारे मैसेज आपके पहुंच गए मेरे पास। आप सभी का दिल से थैंक यू करना चाहते हैं इतने फैबुलस मैसेज के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
11: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।
10: स्टेशन की घड़ी में वक्त हुआ है फिलहाल 8:39, यानी कि अभी जो है 8:50 होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अभी एक गाना होगा छोटा सा, एंड इस गाने के बाद मैं आता हूँ, फिर उसके बाद कुछ खास बातचीत करेंगे अभी आपके साथ। और एक छोटा सा सवाल आया है,
12: ये दिल तुमने आया रे ओ सनम, ओ सनम।
10: क्या बात है,

यार भैया देखो, ऐसे गाने आप सुबह सुबह सुनोगे तो सुबह अच्छी हो जाएगी। फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक छोटा सा क्वेश्चन भी है मेरे पास, लेकिन उससे पहले आपके ढेर सारे संदेश पहुंचे हैं, आइए जरा शामिल करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं सहारनपुर से जोन रोजी पलविलीज जी, लिखते हैं आनंद जी वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी ट्यूजडे, एंड साथ में लिखते हैं स्टे ब्लेस्ड एंड लॉट्स ऑफ लव जी, शुक्रिया मेरे भाई। और आगे लिखते हैं कि जो चीज़ मन की शांति को छीन ले उसे छोड़ देना ही समझदारी है, चाहे वो आदत हो, सोच हो या फिर कोई रिश्ता। बहुत ही बेहतरीन बात कर दी है आपने भाई साहब, मजा आ गया आपकी लाइन पढ़ के। आगे एक और लाइन आई है, गुड मॉर्निंग जी, सच्चे लोगों पर उतना ही भरोसा रखिए जितना दवाइयों पर रखते हैं, बेशक थोड़े कड़वे होंगे पर फायदेमंद ही होंगे। बिल्कुल बात तो सच बोली है साहब आपने, बहुत ही खूबसूरत लाइनों के साथ सुबह की बेहतरीन शुरुआत कर दी है। शिखा जी मेरे साथ जुड़ी हैं, लिखते हैं जिंदगी में अगर आपको कुछ करना है तो आप ये मत सोचिए कोई क्या कहेगा, आप ये सोचिए आपको क्या करना है। बहुत ही बढ़िया। पल्लवी जी मेरे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं गुड मॉर्निंग जी, गायत्री नगर से बोल रही हूँ मैं। अच्छा मैम अपने वॉइस तो नहीं भेजिए, लेकिन लिखती हैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, मौसम बहुत ही औसम है, आनंद जी आपके गाने सुन के मन नाचने को करने लगता है। अरे वाह, थैंक यू सो मच मैम। एक मैसेज और पहुंचा है मेरे पास, हेलो हेलो मॉर्निंग मॉर्निंग जी, आपको भी गुड मॉर्निंग। ये मयंक मेरे साथ जुड़े हैं आज की सुबह, लिखते हैं स्टेशन रोड पे हूँ, गुड मॉर्निंग आनंद, आपको गाड़ी में सुनते हुए जा रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है, मौसम बहुत ही औसम करवा दिया है आपने, क्या बात है सर, थैंक यू सो मच। सहारनपुर से हमारे पास मैसेज पहुंचा है यहाँ पर, हाई गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है आनंद जी, गुड मॉर्निंग। ये मैसेज मेरे पास रमन का पहुंचा है, रमन जी थैंक यू सो मच, आप जुड़े इतनी दूर से। एक और मैसेज हमारे पास पहुंचा है, ये मुजफ्फरनगर से पहुंचा है, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं सुभाष जी, लिखते हैं आज मेरे बेटे अनमोल सैनी का जन्मदिन है, तो आपके बेटे को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आज का दिन बहुत खास है, जरूर उस पर हम चर्चा करेंगे। और रिहाना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आज की सुबह, रानी नांगल से गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। दुर्गेश जी मेरे साथ जुड़े हैं कल्याणपुर से, लिखते हैं आनंद जी सुप्रभात। एक और संदेश हमारे पास पहुंचा है, नमस्ते आनंद जी, आप बरसात के दिन आ गए हैं, वो इंतजार के बाद फाइनली अब जो है मौसम अच्छा हो गया, मन जो है प्रसन्न हो गया है। बिल्कुल जी, हमारा मन भी बहुत ही प्रफुल्लित हो गया है इस वेदर को देख के। मोहन स्वरूप बिलासपुर रामपुर से मैसेज करते हैं कि जब गाने पसंद के हों तो दिल खुश हो जाता है, और जब FM मुरादाबाद 89.6 पे आनंद ही आनंद हो तो आनंद ही आ जाता है। अरे वाह, गजब, कमाल कर दिया आपने। हेलो आनंद सर, गुड मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग में बहुत ही मज़ा आ रहा है, आपका स्टाइल बोलने का बहुत अच्छा होता है, आप बहुत ही अच्छी, आपकी आवाज़ है बहुत ही प्यारा आप बोलते हैं जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, एक मैसेज आया है हमारे पास नवीन नगर से, ललिता कश्यप जी का, हमारी रेगुलर लिसनर है, हमेशा हमारे साथ जुड़ती हैं, लिखती हैं आज मौसम बहुत

आज हमारे साथ जुड़ने के लिए सुहाना जी, एक और बहुत ही प्यारा संदेश मेरे पास पहुंचा है आज की सुबह। इन्होंने तो काफी भारी भरकम बातें कर दी। लिखते हैं, खुद पर भरोसा रखो क्योंकि शुरुआत हमेशा अकेले ही करनी पड़ती है। सूरज है इनका नाम। सूरज जी, जैसा आपका नाम है वैसे ही आपके थॉट्स हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए मेरे भाई। एक और मैसेज आया है मेरे पास। हाय, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन ये लिखते हैं, जब इरादे मजबूत हों तो किस्मत भी साथ देने लगती है। आनंद जी, गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइज, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये तालियां आपके लिए ओरिजिनल वाली। आगे बढ़ेंगे, अभी आपके लिए एक मेरे पास बहुत प्यारा सवाल है, उसका जवाब आप हमें मैसेज करके पहुंचाएंगे एंड आपको बहुत आनंद आएगा। अभी डेफिनेटली हम आपके साथ उस सवाल को साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और मधुर मधुर गीत सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। मौसम इतना औसम है, तो इस औसम वाले मौसम में अच्छे गाने हो जाए तो फिर सुबह ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है ना। चलिए एक और ब्यूटीफुल ट्रैक, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और आपको बोलेंगे, अगर आप भी हमें कुछ कहना चाहते हैं, कोई अच्छा मैसेज देना चाहते हैं, कुछ मोटिवेशन बातें आप करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपका स्वागत है। 9837896896 पर आपका वेलकम बैक रहेगा। आप मुझे डेफिनेटली व्हाट्सएप करिएगा अपने नाम के साथ, अपनी प्यारी सी बात जो भी आप कहना चाहते हैं, आपका वेलकम है हमारे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर। फिलहाल ये बेहतरीन ट्रैक, इस ट्रैक के बाद वापस लौट कर आते हैं। फ्रॉम द फिल्म मैंने प्यार क्यों किया, ये तो मुझे भी नहीं पता यार। कमाल खान साथ में अलका याग्निक जी की बहुत ही ब्यूटीफुल आवाज। अगले घंटे चर्चा करेंगे मुरादाबाद शहर में क्या कुछ खास रहा, लेकिन उससे पहले बेहतरीन ट्रैक किसी को सुनेंगे मैं और आप साथ में।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय,
3: बिंदास मॉर्निंग
0: सुनिए, बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10। हाय दे आनंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
6: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
7: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है,
6: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
7: कॉल 9045912348।
8: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
6: ट्यूजडे की सुबह है, 9:03 हो गए हैं, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, जहां बातें हो रही है आपकी, मेरी और हम सभी की। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने यहां पर जो है अच्छी अच्छी बातों के साथ अपने अच्छे अच्छे जो संदेश पहुंचाए हैं उसके लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इतने प्यारे प्यारे मैसेज आप कर रहे हो ना, सच में बहुत मजा आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, फिलहाल आपको बताते हैं शो सुन रहे हैं आप एग्जैक्टली मंगलवार का दिन, आपने ट्यून इन कर लिया है मुरादाबाद शहर का आपका अपना इकलौता फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे, जहां आप सुनते हैं डेली मंडे टू सैटरडे आनंद को। आपके छोटे से रेडियो पर डेली आते हैं, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आते हैं, ढेर सारी बातें आपके लिए लेकर आते हैं, जहां पर आपको आनंद ही आनंद आ जाता है। और जब सुबह की शुरुआत एकदम रिचार्ज वाली हो जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर कुछ और चाहिए नहीं होता, दिस इज मोर देन इनफ यार, है ना।

चलिए दोस्तों, फिलहाल फटाफट से अभी हम यहाँ पर आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है, दिल से अभिनंदन है, खुली बाहों के साथ वेलकम बैक है। बस आपको कुछ नहीं करना है, हमें एक छोटा सा मैसेज करना है 9837896896 पर। अगर आप हमें कुछ कहना चाहते हैं, कोई अच्छा सा मैसेज जो हमारे नाम करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप के जरिए। चलो एक छोटा सा सवाल है, आप मुझे फटाफट से इसका मैसेज करिएगा। आपको मेरे को बताना है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आप मुझे आज मैसेज करके बताइएगा। सुबह सुबह आपके दिमाग के थोड़े से घोड़े दौड़ाते हैं। 9837896896 पे आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, भारत की सबसे लंबी कौन सी नदी है ये आप मुझे डेफिनेटली बताइएगा। आई एम वेटिंग फॉर यू मैसेजेस। कितने लोगों को देखते हैं नॉलेज है अपने भारत की, देश की, अपने देश की सबसे लंबी कौन सी नदी है, ये मैं चेक करना चाहता हूँ। देखो कितने लोगों को पता है, बट हाँ गूगल करोगे तो गलत हो जाएगा, देखो पाप लगेगा आपको, गूगल मत करना, बता रहा हूँ सुबह सुबह। इसलिए अच्छी अच्छी बातें कहने के लिए अच्छी अच्छी बातों को जो है थोड़ा सा दिमाग लगा के यू नो ऐसे गेस करके बताओ यार। अच्छा चलो तुक्का ही भिड़ा दो यार तुम। एवरीबॉडी व्हाट्सएप करना है, आपने मेरे को बताना है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलो ये बता दो, अब मैं सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अभी ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है, मतलब क्वेश्चन को ध्यान से सुनने के लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर रोड पे चल रहे हो तो दाएं बाएं सब जगह देख के चलना, ठीक है, ये मत बोला आनंद ने ऐसे बोला था दिक्कत हो जाएगी बाबा, वो चीज़ को फॉलो नहीं करने का। अगर आप घर पे हैं तो अभी जरा दाएं बाएं से फोकस रहिए, अगर आप घर पे बैठ के चाय शाय पी रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, करते रहो, लेकिन साथ में सवाल का जवाब भी पहुंचाते रहो। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है, आप मुझे मैसेज करके बताइएगा, दैट इज वेरी सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके लिए अच्छे गाने भी मैंने यहाँ पर लगा के रखे हुए हैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहाँ बातें होती हैं दिल से दिल तक। आप आनंद के साथ हैं एंड ऑफ कोर्स अब यहाँ पर हमारी अगले घंटे की शुरुआत हो गई है, तो यहाँ अच्छे गाने तो होंगे एंड दिस इज माय लास्ट आवर, जहाँ आपके साथ ढेर सारी बातचीत होंगी एंड ढेर सारी और इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप लोग ऐसे ही मैसेज करते रहिए, थैंक यू सो मच। एक मैसेज हमारे पास पहुँचा है यहाँ पर, हेलो गुड मॉर्निंग, पल्लवी जी मेरे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं आनंद जी सुबह सुबह आपको सुन के सच में मॉर्निंग रिचार्ज हो जाती है। अरे थैंक यू सो मच, हम भी यही चाहते हैं कि हर किसी की मॉर्निंग एकदम रिचार्ज हो, लाउड हो एंड फैबुलस हो, मजा आ जाए उसको सुन के, बस कहीं और फिर जाए ना यार, मैं चाहता हूं कि सब कुछ आपको यहां मिले। आने वाला ट्रैक फ्लैश बैक में ले जाएगा यार ये गाना। स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 9:07, आप जुड़ चुके हैं आपके आपके प्यारे से दोस्त आरजी आनंद के साथ। बताओ जरा मेरे क्वेश्चन का आंसर, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यू कैन टेल मी। उठाइए अपना फोन, टाइप कीजिए अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना करेक्ट आंसर।

0: क्या बात है यार, ये बेहतरीन ट्रैक जो हमें फ्लैशबैक में ले गया था गाना। वेलकम बैक है आप सभी का 89.6 आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। लेडीज एंड जेंटलमैन, 9:17 हो गए स्टेशन क्लॉक में और आप लोग बहुत प्यारे प्यारे संदेश भी कर रहे हो, थैंक यू सो मच इतने प्यारे मैसेजेस के लिए। और अभी लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं तो आपको पता है कल हमारे मुरादाबाद में हमारे सीएम साहब का आगमन हुआ और बहुत ही अच्छे से जो है सारी तैयारियां हुई। इनफैक्ट बहुत ही भव्य तरीके से जो है कल का ये प्रोग्राम रहा, बहुत ही मज़ा आया कल के शो में। बहुत सारी चीज़ों का उद्घाटन किया गया, शुभारंभ किया गया और आपको बता दें BTU का सम्मान, नए उत्तर प्रदेश की पहचान। जी हाँ, कल अपने उत्तर प्रदेश में अपने जनपद मुरादाबाद में अपने यशस्वी लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने श्री राम वाटिका का जो है लोकार्पण किया। दो नंदी बालिकाओं से जो है उन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन करवाया एंड उसके बाद जो है मतलब माहौल ही चेंज हो गया और वहाँ पर सब लोगों को ये बहुत ही खूबसूरत लगा। ये जो शुभारंभ था, जो इसका वेलकम हुआ श्री राम वाटिका और दो प्यारी प्यारी छोटी छोटी बच्चियों से जो है इसका शुभारंभ कराया गया, ये बहुत ही खूबसूरत था। एंड बस इसी प्रेरणादायी और गरिमाए कार्यक्रम की जो सहभागिता थी वो और भी खूबसूरत हो गई। आपको बता दें श्रोताओं, हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंट करते हैं हमारे सीएम योगी जी। जब भी मुरादाबाद में आते हैं तो ढेर सारी योजनाओं का लोकार्पण शुभारंभ जो है वो करके जाते हैं और बहुत ही एक अलग ही हैपनिंग और खुशी की वाइब होती है जब वो अपने मुरादाबाद में कुछ नया और बेहतरीन लेकर आते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुरादाबाद का जो है अब आप देखो कोने कोने में कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें, आपको अपनी जो सभ्यता संस्कृति है जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं मेंटेन नज़र आएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं अब देखने लायक हो गई हैं मुरादाबाद के अंदर। आप किसी भी तरफ से निकल जाओ कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा और ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छा सिग्निफिकेशन है और बहुत ही अच्छा साइन है कि अब जो है अपने शहर के अंदर बहुत सारी नई नई चीज़ें जो है वो आ रही हैं, बहुत ही अच्छी बातें। और सबसे मज़े की बात यह कि अब गांधी मैदान जो है सांस्कृतिक आयोजन का बनेगा केंद्र, ऐसा कहा जा रहा है भैया, जो गांधी मैदान है वहां पर कुछ ना कुछ डिफरेंट होने वाला है। एंड बताया जा रहा है कि बुद्धि बिहार का स्थित गांधी मैदान अब केवल जन सेवाएं और जो वहां पे जो भी चीजें होती हैं जनस्थल नहीं रहेगा, बल्कि अब भविष्य में शहर के सामाजिक सांस्कृत और सार्वजनिक जो आयोजन का स्थानीय केंद्र जो है वो बनेगा, उसकी दिशा में एक बड़ा कदम मतलब अब लिया गया है। स्टेप बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शहर की जो हमारे विधायक साहब हैं यानी कि रितेश गुप्ता जी, उन्होंने इस चीज़ के बारे में बात करी एंड अब जो वो गांधी मैदान है वहाँ पर सांस्कृतिक आयोजन का एक भव्य मंच बनेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि कुछ तो डिफरेंट और नया होने वाला है शहर के अंदर। दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ना। एंड और भी तमाम सारी चीज़ों के बारे में कल डिस्कस किया गया, बहुत सारी योजनाओं के बारे में जो है बातचीत हुई एंड बहुत ही अच्छा था ये कल का कार्यक्रम। एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो है वहाँ पर आए थे, सबको देखकर बहुत मन प्रसन्न हुआ। इनफैक्ट हम लोग भी थे और बड़े दूर दूर से लोग वहाँ पर आए, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़। तो श्रोताओं देखिए, कल तो बहुत सारी स्पेशल चीज़ें हो गई अपने शहर में, बहुत ही अच्छा और बहुत ही फैंटास्टिक रहा कल का कार्यक्रम। और बाकी आप लोगों को भी अगर कुछ कहना है तो डेफिनेटली आप भी अपनी प्यारी प्यारी थॉट्स, अपनी प्यारी प्यारी बातें रख सकते हैं अपने शहर के बारे में 9837896896 पे व्हाट्सएप के थ्रू, व्हाट्सएप के माध्यम से जो है आप अपनी बातों को जो है हम तक पहुँचा सकते हैं। ऑफकोर्स आपका मोस्ट वेलकम है, जैसे कि अभी ढेर सारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपनी प्यारी प्यारी बातें पहुँचा रहे हैं। डेफिनेटली आपकी सारे संदेश मैं आप तक पहुँचाऊंगा, लेकिन कुछ छोटू साइड ब्रेक, उसके बाद मैं लौट कर आ रहा हूँ।
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।
3: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ। क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
6: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
7: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
0: अच्छा कल कुछ और खास चीजें भी थी जो इस प्रोग्राम में हमारे मुख्यमंत्री साहब ने कही है, जरा आपको एक्सक्लूसिवली हम सोच रहे हैं यहाँ पर फटाफट सुनवा देते हैं।
8: आज मुझे जनपद मुरादाबाद में आने का अवसर प्राप्त हुआ। कार्यक्रम तो पहले संक्षेप में था कि मुरादाबाद मंडल में हमारे जो एक जनप्रतिनिधि मेहनत करते हैं, इनके लिए कुछ और स्कीम हम लेकर के जाएं। लेकिन मुझे इस कार्यक्रम को संपन्न करने के बाद आप सबसे संवाद बनाने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है, और इसी बहाने सैकड़ों करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं थी उनका लोकार्पण और शिलान्यास का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर ज्येष्ठ पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर आप सबको इन परियोजनाओं के भी लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। बहन और भाइयों, हमारी स्वयं की संपत्ति और हमारा वैभव राष्ट्र की सुरक्षा में कैसे सहायक हो सकता है? दानवीर भामा शाह का प्रेरणादायी व्यक्तित्व उसका उदाहरण है। याद करिए हल्दी घाटी के युद्ध में।
0: तमाम सारी बातें जो है मुख्यमंत्री साहब ने कल कही, और उन्होंने इसी बीच मुरादाबाद को 365 करोड़ की सौगात दी है। एंड आपको बता दें लाइन पार के बारे में बात हुई है, लाइन पार बनेगा एक खूबसूरत एक नए नाम के साथ, लाइन पार का जो एक नया रूप देखने को मिलने वाला है। एंड अभी क्या कुछ स्पेशल होने वाला है ये तो डेफिनेटली आपको पता लगेगा। और तमाम सारी बातें मुख्यमंत्री साहब ने कही और तमाम सारी योजनाओं का जो है लोकार्पण किया। एंड कल मुरादाबाद के लिए एक नई सौगात थी श्रोताओं, एंड आई एम श्योर आपको भी बहुत सारी चीज़ें जानने को। आगे बढ़ते हैं, आप लोगों ने ढेर सारे मैसेज किए हैं उसके लिए थैंक यू सो मच मुरादाबादी, कांग्रेचुलेशन। आप लोग सच में बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेज करते हैं। 9:25 हो गया है अभी स्टेशन क्लॉक में, 9:25 स्टेशन क्लॉक का जो टाइम है वो मैं फटाफट आपको बता देता हूं ताकि आप अपनी घड़ियों को सेट करके रखें। 9:25 हो रहे हैं जी, एंड कुछ वॉइस नोट भी हमारे पास आ रहे हैं, जरा इनको भी सुनते हैं एंड इन्होंने क्या पहुंचाया है इनकी आवाज में सुनते हैं जरा।
9: सुई जब अकेली चलती है तो उसका काम चुभना होता है, लेकिन जब वो धागे के साथ चलती है तो उसका काम फटे कपड़ों को जोड़ना होता है। ऐसे ही कर्मों का संगत का असर होता है। ये सुई के कर्म है, अगर वो अकेली चलती है तो चुभती है, धागे के साथ चलती है तो कपड़ा जोड़ती है। ऐसे ही संगत का असर होता है, अगर अच्छी संगत होती है तो अच्छे गुण होते हैं। गुड मॉर्निंग,
0: थैंक यू, बहुत ही बढ़िया आपने बोला। थैंक यू एकता जी, थैंक यू वेरी मच इस ब्यूटीफुल मैसेज के लिए, आई एम वेरी हैप्पी। और आपने एक छोटी सी बात में बहुत ही अच्छी बात बता दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे एक ब्यूटीफुल ट्रैक, उसके बाद हम आपके मैसेज को शामिल करेंगे। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, आपको मुझे बताना था हमारे देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अगर नहीं पता तो फिर से बता रहा हूँ, आप मेरे को सवाल का आंसर दोगे, हमारे देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है ये आपने मेरे को व्हाट्सएप करके बताना है। 9837896896 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आज की सुबह। ये है ट्यूसडे मॉर्निंग, आने वाला गाना बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम तुम्हारी सुलू से, हवा हवाई 2.0 निकाल रहे हैं आपके लिए आनंद, नेहा धूपिया एंड मलिष्का साथ में विद्या बालन, क्या लगी थी यार। सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, और देखो बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आज के टाइम में ना बाजी कोई किसी से कम नहीं है, सब अपनी लाइफ में और अपनी जिंदगी में एकदम धाकड़ और रॉक मचा रहे हैं, सब अपने आप में सुपरस्टार हैं। इसी बात के साथ आगे बढ़ते हैं।

0: Hello.
1: वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।
2: अरे आनंद इज बैक।

देश दुनिया में क्या चल रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। मुरादाबाद के बारे में तो हमने जान ही लिया है, लेकिन अब आपके आसपास हमारे देश दुनिया में क्या चल रहा है उस पे जानना भी तो, उस पे बात करना भी तो जरूरी है। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक इस गाने के बाद लौट कर आते हैं, फिर उस पे हम बात करेंगे। अभी आपके आसपास क्या चल रहा है, आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, ऐसे ही ट्यून रहिए आरजे आनंद के साथ। आतिफ असलम साहब की बहुत ही ब्यूटीफुल आवाज फ्रॉम द फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू से ट्रैक निकल गया है आपकी रेडियो सेट पे, इसी को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ेंगे। स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 9:30।

0: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
1: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
2: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
1: हाँ छोटी, आज हम सब समुद्र की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
3: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर। चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
5: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है,
6: लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं।
7: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
8: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
9: वेलकम बैक हियर वंस अगेन।
10: हे, यू आर ट्यून इन टू एफएम मुरादाबाद 89.6 FM।
9: Absolutely जी, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 FM पे, आपका फेवरेट वाला रेडियो स्टेशन जहाँ फेवरेट वाला शो भी चल रहा है, मॉर्निंग मैगजीन। दिस इज बिंदास मॉर्निंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत। अच्छा मैं क्या कह रहा था जी, आपने बहुत ही बढ़िया बढ़िया मैसेज किए यार, थैंक यू सो मच। आई डोंट नो मुझे कहाँ कहाँ पर इस वक्त सुना जा रहा है, मुझे खुद को भी नहीं पता है। वेल थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग निकल के अपनी मॉर्निंग शिफ्ट पूरी करें तो ऑल द वे बेस्ट। निकलिए यार, मौसम बहुत ही औसम है। आज के इस मौसम को देखते हुए क्या ख्याल आ रहा है ये भी आप मुझे बता सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से जो लेटेस्ट कड़क अपडेट आई है वो फटाफट आपके साथ शेयर करता हूँ। देश के कई हिस्सों में मौसम विभाग ने एक बार फिर से जो है ये रिपोर्ट जारी कर दी है कि भैया एक बार फिर से मौसम जो है अपनी करवट बदलने जा रहा है। मौसम विभाग ने एक सूचना दी है कि 29 जून यानी कि कल से 20 जून से जो है 15 राज्यों में भारी बारिश की उन्होंने जो है चेतावनी जताई कि भैया तेज हवाओं के साथ अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में हवाओं की जो रफ्तार है वो काफी तेज रहने वाली है, काफी तेज गति के साथ हवाएं चलेंगी। एंड साथ ही साथ आपको बता दें 29-30 को जो है वेदर पूरी तरीके से बारिश वाला होने वाला है। कल तो हुआ नहीं लेकिन आज तो हो गया यार। आपको बता दें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई गई है और आज भी जो है बारिश का ये वेदर रहने वाला है। चलो जी अच्छी बात है, फाइनली गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, मन थोड़ा सा प्रसन्न हो गया है। आपको एक लेटेस्ट खबर बता देता हूँ। ये खबर क्या है, ये एक्चुअली एक अलर्ट मैसेज है। आपको बता दें क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट के नाम पर एक नया फ्रॉड तेजी से मार्केट में आ गया है, जिसे जालसाज बैंक अधिकारियों या रिकवरी एजेंट बनकर आपको कॉल करते हैं और आपका बकाया बिल या ईएमआई को लेकर वो लोगों को डराते हैं। उसके बाद फिर कम पैसों में सेटलमेंट का झांसा देकर एक नया फर्जी लिंक भेजते हैं। जैसे लोग उस लिंक पर क्लिक करते हैं मोबाइल में जो है कोई कुछ ना कुछ कोड्स आते हैं, जिसके बाद आपका फोन हैक हो जाता है। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट मिनटों सेकंडों में जो है ये वो खाली हो जाता है। तो बैंक पहली बात तो देखिए, अगर आपके पास ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन आ रहा है तो आपको पता है कि बैंक कभी भी किसी अनजान लिंक से पेमेंट करने को नहीं कहता है और ना ही वो कोई अनजान लिंक आपको भेजते हैं। ठीक है, तो हमेशा कोई भी अगर आपको ऐसी रैंडम कॉल आती है, कोई भी ऐसे रैंडम लिंक आती है तो बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी जाँच पड़ताल के उस लिंक पर प्लीज क्लिक मत कीजिए। एंड अगर आपको उसके बारे में सही इंफॉर्मेशन नहीं पता है तो आप अपने नजदीकी जो जिस भी बैंक का नाम लेकर आपको कॉल कर रहे हैं या आपको क्रेडिट कार्ड या EMI जो भी आपका है वहां पे आप इंफॉर्मेशन लीजिए क्या उनकी तरफ से ऐसा कुछ आया है या नहीं आया है। अदरवाइज आप इन धोखाधड़ी और इन स्कैम से बचने के लिए यही कर सकते हैं।

ये भैया इन कॉल्स को और इन लिंक्स को प्लीज आपने अवॉइड करना है, ठीक है जी। बाकी अगर आपके पास कोई कार्ड का आपका ईएमआई या कुछ भी बकाया है तो आप अपने वेबसाइट या कार्ड नंबर के जरिए ही भुगतान कीजिए, ठीक है। तो भैया सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। और ये जो क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट के नाम पर एक नया फ्रॉड मार्केट में तेजी से बढ़ रहा है, इससे आपने बचना है बॉस। चलिए ऐसी कड़क अपडेट के लिए बस आपको ऐसे ही ट्यून इन रहना है आरजे आनंद के साथ। इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे एक व्हाट्सएप आया है, इंसान ही इंसान की दवा है, कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। आय हाय हाय, ब्यूटीफुल यार। एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम, 8 दिन के बाद, जैसे कि मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि भैया जो टेलीग्राम है वो गायब हो गया था ना किसी वजह से, मैंने आपको वो अपडेट भी दी थी लास्ट टाइम। तो फाइनली टेलीग्राम गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर जो है वापस कम्बैक कर चुका है। हालांकि कई यूज़र अभी भी चैट ओपन मैसेज करने में, चैट ओपन करने में, ऐप को रिफ्रेश करने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आ रहा है। लेकिन अगर आपके फ़ोन में अभी भी टेलीग्राम ठीक से वर्क नहीं कर रहा है तो सबसे पहले आप आपकी इस लेटेस्ट वर्जन को अपडेट कीजिए, उसको डाउनलोड कीजिए, उसके बाद आपका टेलीग्राम ओपन हो जाएगा। वैसे हम तो इतने सारे ऐप यूज़ नहीं करते, आपको सच बताऊँ मैं इतने सारे यूज़ ही नहीं करता हूँ, इतना टाइम ही नहीं मिलता यार। कहाँ हमें लोग इतने टेली वेली ग्राम, हम तो इंस्टाग्राम नहीं चला पाते हैं, सच बता रहे हैं यार, इतना टाइम ही नहीं होता। बस अपने काम से काम रखो यार, जो चीज़ आपको लाइफ में आगे बढ़ाए उस पर काम करो यार। है ये एलीग्राम फेलीग्राम ठीक है, अच्छी बात है, अपनी अपनी चॉइस होती है, बट मेरे को लगता है कि ठीक है यार। मुझे लगता है आप जितनी ज़्यादा ऐप में एक्टिव हो जाओगे ना उतना आपका दिमाग जो है ना कई बार ख़राब भी हो जाता है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। जितना कम टाइम सोशल मीडिया पे दोगे ना, एक्चुअल में जितना रियल लाइफ में फोकस करोगे वो ज़्यादा आपको यू नो बेनिफिट देने वाला है। अभी कुछ लोग कहेंगे यार हमारा तो काम ही ऑनलाइन है, हमारा तो सारा यू नो वर्क ही ऑनलाइन होता है, तो वो तो ठीक है, चलो फिर अगर आप अपने काम के पर्पज से सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो तो इट वाज अमेजिंग, गुड गुड। बट अदरवाइज अब जस्ट ऐसे नॉर्मली कुछ भी अपन कर रहे हो सोशल मीडिया पे, टाइम वेस्ट कर रहे हो, सो आई थिंक इट्स नॉट गुड यार, ये तो फिर आपकी एनर्जी खराब हो रही है। आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के नाम एक पाती लिखकर स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि 1 जुलाई से 15 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य है कि कक्षा 1 से 12वीं तक के हर बच्चे को स्कूल में जो है उसका दाखिला सुनिश्चित करना है, और साथ ही जो लोग पढ़ाई छोड़ चुके हैं, जो बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उनकी शिक्षा को दोबारा जोड़ने पर भी विशेषकर जोर दिया जाएगा। तो स्कूल चलो अभियान का जो सेकेंड चैप्टर आने वाला है ये और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, ऐसी लेटेस्ट खबरें आपको मिलती रहती हैं हमारे स्टेशन ऑफ द नेशन पे। अभी एक अमेजिंग गाना भी निकल गया है आपके रेडियो सेट पर। मैंने आपसे कहा था आप मुझे मैसेज करके बताओ कौन सी वाली ऐसी नदी है जो सबसे लंबी है, उसका नाम आपने मेरे को बताना था। मैसेज मेरे पास पहुंचा है, भैया जी ने गाड़ी में ट्यूनिंग किया है 89.6, बाहर का मौसम भी औसम हो रहा है, मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पे लिखते हैं आनंद जी सुप्रभात, सही जवाब भी दिया है आपने, थैंक यू सो मच। एंड इन्होंने लिखा है गंगा नदी उत्तराखंड की गंगोत्री। ओके आगे जो आपने लिखा है वो मैं बिल्कुल पढ़ पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच। एंड लिखते हैं मौसम बहुत ही मस्त हो रहा है भाई, बाहर का मौसम बहुत ही औसम है और मैं इस वक्त गाड़ी में घूम रहा हूँ, मौसम का मजा ले रहा हूँ। अपना नाम भी लिख दो यार, इसी बात पे मिलके हम सब साथ में करेंगे क्या मैडम जी, हाय हाय क्या बात है, ओए होए हम छम छम नाच नहीं सकते। ये भाई का नाम अभी आगे बताता हूँ क्या है इनका नाम, बाकी लोगों के मैसेज भी शामिल करूंगा, आप कहीं मैं जाइए, डोंट गो एनीवेयर, आई विल बी राइट बैक।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
3: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
4: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
5: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

यार बाहर का मौसम कैसा हो रहा है ये आप मुझे जरा बताओ, बारिश हो रही है या सिर्फ अभी बादल बादल हो रहे हैं? एक छोटी सी पिक्चर क्लिक करके जरा व्हाट्सएप करो मुझे 9837896896 पे, आई एम वेटिंग फॉर योर पिक्चर। बाहर का मौसम कैसा है आप अपने घर पे ही एक विंडो से फोटो खींच के भेजो, बाहर का मौसम आनंद ऐसा हो रहा है, मैं देखना चाहता हूँ बाहर वेदर कैसा है यार, क्योंकि मेरे स्टूडियो में कोई विंडो नहीं है, मैं बाहर का मौसम नहीं देख पा रहा हूँ यार, आप मेरी हेल्प करो ना यार।

0: कुछ काम कर रहा था यार, इसलिए म्यूजिक चल रहा था। वेलकम बैक है, गुड मॉर्निंग। मैं कहीं नहीं गया हूँ। अरे गुस्सा नहीं करने का। अभी मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसका जवाब आपने मेरे को देने का इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। लेडीज एंड जेंटलमैन,
1: अब क्या तोड़ दिया नालायक? सॉरी
2: नालायक बेटा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, क्या हाल चाल?
0: चलो अभी मेरे सवाल से जवाब देना है आपने, ठीक है? क्या करना है ना, आपने हमें यहाँ पर एक चुटकी वाला सिंदूर नहीं खेलेंगे भाजी, एक चुटकी सॉन्ग वाला गेम खेलेंगे हम। यस, वो एक चुटकी सिंदूर की कीमत बहुत बड़ा पुराना हो गया यार। अभी ना आपन क्या करेंगे ना, आपन अभी आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, आपने मेरे को व्हाट्सएप करना है 9837896896 पे मैसेज करके मेरे को जवाब देना है। बेसिकली अभी जो यहाँ पे म्यूजिक चल रहा है वो कौन से गाने का है, ठीक है? 3, 2, 1 गो, स्टार्ट, शुरू करें भाजी। आप आइडेंटिफाई करेंगे एक चुटकी सॉन्ग कौन सा है। Yes, आपको भैया यही मेरे को बताना है, जो अभी आपने सुना है गाना, ये कौन सा गाना है ये आपने आइडेंटिफाई करके मुझे बताना है। व्हाट्सएप करना है अपने नाम के साथ अपना सही जवाब। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक चुटकी सॉन्ग बज रहा है, कौन सा गाना है ये? मैसेज करिएगा, उठाइए अपना फोन, टाइप कीजिए अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही वाला जवाब, उसको सेंड करना है यार मेरे को 9837896896 पे व्हाट्सएप नंबर। बहुत ही सिंपल है, इस नंबर पे इमीडिएटली मैसेज कीजिएगा अपने नाम के साथ अपना सही जवाब और अपना नाम जरूर लिखिएगा, अपने शहर का नाम, विच सिटी, आप कहाँ से हैं। मुरादाबाद में अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मुरादाबाद में कहाँ सुन रहे हैं ये आपका काम है मेरे को बताने का। एपी डिल्लो राइट है, यो यो हनी सिंह विद मी। इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, ये है ट्यूसडे मॉर्निंग। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं यार, आपकी शांति के लिए मैं चाहता हूं आपको सही से सुनाई दे। अभी इतना पैसा में इतना ही मिलेगा अंकल, अभी आपको क्या करना है, सही जवाब देना है।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय।
3: बिंदास मॉर्निंग
0: सुनिए, बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

खुल रहा क्या है। ट्यूसडे की सुबह, मौसम एब्सोल्युटली ऑसम है। यार तुम लोगों को मुझसे प्यार हो जाएगा तो अच्छी बात है ना यार। नहीं नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। What a song यार, कमाल की फिल्म है, कमाल का गाना है, कमाल की एक्टिंग, बहुत ही अल्टीमेट मूवी थी और अल्टीमेट गाने आज भी हमारे दिलों में जगह बनाए हुए हैं इस मूवी के ट्रैक। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना लोकल वाला देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां पर बातें होती हैं दिल से दिल तक। मेरा नाम आनंद है जनाबे अली, वेलकम बैक है भाई साहब, कैसे हाल चाल है? सब बढ़िया चल रहा है। 10 बज चुके हैं स्टेशन क्लॉक में, ये सुबह के 10 बज चुके हैं, 10 वाली गुड मॉर्निंग। फिलहाल के लिए जो लोग सुबह सुबह छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होते उनको एक बिग शाउट आउट, एंड बाकी जो लोग सुबह सुबह बिट्टी मांगते हैं ना उनके लिए भैया मैं क्या बोलूं, उनके लिए मेरे पास एक अपडेट है। आई होप इसको सुन के वो थोड़ा सा हैबिट को चेंज करें। क्या आप भी सुबह उठते ही खाली पेट चाय मांगते हैं कि नहीं भैया आप उनको तो जो है बिस्तर से उतर के टी चाहिए? लेकिन आपको बता दें कुछ विशेषज्ञों के अनुसार खाली पेट चाय पीने से कुछ लोगों को एसिडिटी, गैस, पेट में जलन और बेचैनी की समस्या हो सकती है। चाय में मौजूद कैफीन खाली पेट को थोड़ा थोड़ा जो है वो प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। हालांकि ये चीज़ आपको उस टाइम पे पता नहीं लगेगी, लेकिन धीरे धीरे ये प्रॉब्लम एसिडिटी कब्ज में बदल जाती है, पेट में गैस जलन होने लगती है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि सुबह सबसे पहले आप एक या दो ग्लास पानी पीजिए, बिल्कुल फ्रेश ताज़ा ताज़ा। आप चाहें तो उसे गुनगुना भी कर सकते हैं हल्का, उसके बाद आप हल्का सा नाश्ता लें या कुछ खाएँ, उसके साथ ही आप चाय लें। चाय को कभी भी आप खाली पेट ना पिएं, क्योंकि इसका असर बहुत भयंकर होता है, धीरे धीरे आपको पता लगता है, स्टार्टिंग में तो आपको पता नहीं लगता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा चाय के क्रेजी हैं, आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, आई एम ऑल्सो टी लवर यार, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम सुबह उठते ही चाय मांगे, नहीं यार, मतलब चाय हम सभी की, हम इंडियंस की शुरुआती चाय से होती है, आई नो दैट, बट बिट्टी वो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा ख़राब हैबिट हो सकता है। तो इसलिए जब भी आप सुबह की शुरुआत करें तो गुनगुने पानी के साथ ही करें। चाय अगर आप पी रहे हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ हल्का फुल्का आप ज़रूर लें, जैसे बिस्किट, नमकीन या कुछ भी आप हल्का सा ले सकते हैं, ताकि आपको कोई इशू ना हो, है ना। तो भैया ध्यान आपको देना है, अगली बारी अगर आप सुबह सुबह चाय ले रहे हैं तो चाय के साथ आप कुछ ना कुछ ज़रूर लें, खाली पेट चाय को अवॉइड करें, क्योंकि आपकी हेल्थ का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है और आपकी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी हेल्थ को चकाचक बनाना है। तो थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों पर, थोड़ी थोड़ी चीज़ों पर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा बॉस, है ना। फिलहाल मैं भी ध्यान देता हूँ घड़ी में, घड़ी की सुइयाँ मुझे इशारा कर रही कि बेटा ज़्यादा बातें करोगी तो आपके ऊपर फाइन पड़ेगा, इसलिए इज्जत के साथ जो है कुर्सी को खाली करना। अपन को मांगता तो अपन अभी जो है जाना को मांगता, लेकिन उससे पहले अपन ने जो आपसे एक सवाल पूछा था जिसका

0: जवाब अभी तक मेरे को मिल गया है वैसे तो, लेकिन अगर अभी तक आपने नहीं दिया है अंकल, तो फिर आप क्या कर रहे हो? आपने मेरे को जवाब देने के लिए आपने मेरे को मैसेज करना है 9837896896 पर। यस, ये स्टूडियो का नंबर है। हमारे पास अभी आपके लिए एक सवाल है था, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये कौन सा गाना है यही आपने मेरे को बताना है। ओ यार मेरे बड़े भरा, बहुत बढ़िया गाना है यार, अभी तो मैसेज कर दो भाई 9837896896। यार बहुत ही अच्छा गाना है, इस अच्छे गाने पे एक और अच्छा गाना मैं आपके लिए बजा रहा हूँ, लेकिन आप मुझे मैसेज करके बताना अभी जो आपने गाना सुना है वो कौन सा वाले गाने का म्यूजिक आपने मेरे को बेसिकली बताना है। फिलहाल ज़रा आगे बढ़ते हैं, एक वॉइस नोट हमारे पास पहुँचा था, हम सोच रहे हैं उसको ज़रा प्ले कर देते हैं फटाफट से, नहीं तो फिर टाइम कम हो जाएगा यार, वैसे ही टाइम कम है।
1: नमस्कार कैसे हैं आप?
0: बहुत बढ़िया,
1: करते हैं सभी स्वस्थ और अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं फिल्म मुरादाबाद 89.6 आरजे आनंद के साथ, जिसको बजाना पड़ता है, गुनगुनाना पड़ता है, तो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो और भेजते रहो अच्छे अच्छे एसएमएस मैसेज वॉइस नोट, जैसे कि अभी मैंने भेजा है। दीवारों में दरार आती है तो दीवारें गिर जाती हैं, जबकि रिश्तों में दरार आती है तो दीवारें खड़ी हो जाती हैं। शरीर से कोई सुंदर नहीं होता अगर उसका मन सुंदर ना हो। सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वह इंसान दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। नमस्कार राधे राधे, मैं भूपी शर्मा नगर पंचायत पागबड़ा से आपके लिए लाता हूँ रोज शानदार से वॉइस नोट विचार, तो जिनको आप सुनकर अपने जीवन में उतारिए और इस संसार में अच्छे से रहकर अपना नाम कमाइए। नमस्कार राधे राधे, सुनते रहिए फिल्म मुरादाबाद 89.6 प्रोग्राम बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद। राधे राधे
0: राधे राधे जी, थैंक यू भूपी जी, थैंक यू सो मच, माइंड ब्लोइंग मैसेजेस, थैंक यू सो मच। 10:05 हो गए, लेडीज एंड जेंटलमैन आनंद के साथ हैं आप, जल्दी से मैं लौट कर आता हूँ किसी एक लकी सुपरस्टार के साथ।
2: अब क्या तोड़ दिया नालायक, सॉरी
3: माँ का नालायक बेटा।
4: हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, क्या हाल चाल?
5: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग,
6: बिंदास मॉर्निंग।
7: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
8: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
9: कॉल 8826213131।
10: आवश्यक सूचना, 400 KV बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉर्पोरेशन के मझोला 400 KV उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
11: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
12: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है,
13: लेकिन सोनिया
12: डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं,
13: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
11: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हे हाय हाउ आर यू, अभी क्या हूँ मैं यार, अभी जाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले किसी एक से बातचीत करके उसकी मॉर्निंग को लाउड बना के निकलेंगे। फिलहाल के लिए गाना आपकी मॉर्निंग को लाउड बनाने के लिए गबर इज बैक से निकल गया है आपके रेडियो सेट पे। मौसम इतना अच्छा है तो गाना भी अच्छा होना चाहिए यार। अरिजीत सिंह, पलक मुच्छल की आवाज, इसी को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं।

0: मॉर्निंग एवरीबॉडी, बहुत मजा आया यार। सच में यार मुझे कितना मजा आया है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ये गाना सभी ऑटो वाले भाई मुस्कुराते हुए सुन रहे हैं। ये देखो जनता को इधर से उधर डिलीवर कर रहे हैं। क्या बात है यार। जिन लोगों ने अभी अभी रेडियो ट्यूनिंग किया है उनको बताते हैं शो चल रहा है बिंदास मॉर्निंग। फिलहाल मेरा जाने के टाइम हो गया है, लेकिन जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था एक सवाल बेबी। मैंने कहा था बर्थडे प्रा मेरे को बताओ जरा आज जो हमने गाना प्ले किया है एक चुटकी सॉन्ग वो कौन सा गाना है, आपने मेरे को मैसेज करके बताना था। बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही अल्टीमेट सॉन्ग है। एक चुटकी बजाया था बस, मैंने एक चुटकी बज गया। Yes, यही आपने पहचानना था और यही आपने मेरे को मैसेज करके बताना था। ढेर सारे मैसेज आए यार, ओरिजिनल वाली क्लास आपके लिए, थैंक यू वेरी मच। मैं एक लकी कॉलर को शॉर्टलिस्ट करके लेकर आया हूँ। बहुत मुश्किल होता है यार किसी को शॉर्टलिस्ट करना। कौन है आज की सुबह फोन लाइन पे? हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? हेलो हेलो
1: हेलो,
0: गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप? अपना अपना नाम बताएं मैम। हेलो मैम, आपकी आवाज थोड़ी सी अटक रही है, मुझे लगता है आप बहुत एक्साइटेड हैं। आई थिंक
1: फर्स्ट बार लगी।
0: अरे वाह, अरे वाह, वेरी नाइस। क्या करती हैं आप और क्या नाम है आपका, जरा बताएं। हेलो मैम, आपकी आवाज थोड़ी सी, आप थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आ जाइए प्लीज। हेलो हेलो,
1: आई आवाज?
0: हाँ जी, अभी अभी आई है। आपका नाम बताएं और आप कहाँ से हैं?
1: मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मेरा नाम रेखा रावत।
0: रेखा रावत ट्यूशन पढ़ाती है, लाइन पार सूर्यनगर में रहती है। और इसके अलावा और क्या करती है आप रावत जी?
1: बस यही रूटीन है, करती।
0: रेडियो कब से सुन रही है रेखा जी? कैसा लगता है आपको रेडियो?
1: बहुत अच्छा लगता है, पूरे मॉर्निंग में तो मैं आपको हमेशा सुनती हूँ, खुशी जी को ही बहुत अच्छी से सुनती हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है। और हम लोग भी आपको सुनने के लिए बैठे होते हैं, तभी तो कभी कभी मौका लगता है आपसे बातचीत कर लेते हैं फिर फोन घुमा के।
1: फर्स्ट कॉलिंग पे बात हो रही है
0: जी, जी। मेरी भी पहली बार आपसे बातचीत हो रही है, इसीलिए हम दोनों बहुत ज्यादा खुश हैं। हमारा फोन हमारा साथ नहीं दे रहा क्योंकि वो हमें बात नहीं करना देना चाहता। अच्छा, तो आज जो मैंने म्यूजिक प्ले किया था वो कौन से गाने का म्यूजिक था आपको ये बताना है रावत जी, जरा मुझे बताओ। रेखा मैम, क्या बात है, जोरदार तालियां। फिलहाल तो सुबह मस्तानी होगी ना आपकी?
1: बिल्कुल,
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, सही जवाब आपने दिया है, थैंक यू सो मच। और ये जोरदार तालियां एक बार फिर से मैं आपके लिए जरूर यहाँ पर बजाऊंगा क्योंकि आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है मैम।
1: थैंक यू सो मच।
0: कुछ कहना चाहती हैं? बहुत सारे लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं रेडियो पर सुबह सुबह।
1: हाँ, क्यों नहीं, मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है इस टाइम, बहुत ही ज्यादा, अति से ज्यादा। आप अपना ख्याल रखिए, पानी पीजिए, ध्यान रखिए, आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब बॉटल आपके साथ रहना चाहिए और पानी की कमी नहीं होना चाहिए, केयर करना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और आज तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है वैसे रेखा जी।
1: आज तो बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन आगे आने का तो मौसम तक गर्मी तो होगी ना।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रेखा जी, लवली टॉकिंग टू यू, बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके, लाखों लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं, आपने बहुत अच्छा मैसेज भी दिया, थैंक यू सो मच। आप ट्यूशन पढ़ाती हैं, मैं शाम को कॉपी लेके आ रहा हूँ, मुझे भी पढ़ना है। आप क्या पढ़ाएंगी, ABCD या आसे अनार?
1: जो आपको पसंद है वो पढ़ाते।
0: ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे नई नई रेसिपी जानने में बहुत मजा आता है, तो आई थिंक आप खाना भी अच्छा बना लेती होंगी, नो डाउट। थैंक यू, मैं जरूर आपसे मिलने आऊंगा, पक्का पक्का। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। ओके मैम, बाय बाय मैम, बाय बाय, थैंक यू थैंक यू।

अभी ये बन जा रहा है, यहाँ से जा रहा है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, इतने सारे मैसेज कर दिए। आई थिंक मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा, इतने मैसेज आए हैं। आई कॉन्ट बिलीव दिस यार, इतने सारे मैसेज कैसे आ सकते हैं, मतलब इतने सारे। वेल थैंक यू सो मच यार, ये आपकी मोहब्बत है। ये शाम मस्तानी, दिस इज राइट आंसर। थैंक यू सो मच अंदील साहब मुझे मैसेज करने के लिए, मुझे आपका नाम याद आ गया है। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपना नाम याद दिला दिया। विनीत जी थैंक यू वेरी मच सही जवाब देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा सही जवाब मेरे पास पहुंचा था, गुड मॉर्निंग जी, संभल से ब्रजेश जी का। नासर हुसैन साहब जुड़े थे गली नंबर 1 से, करूला मुरादाबाद से, थैंक यू सो मच मेरे भाई। गौरव टेलर नवीन नगर से जुड़े थे मेरे साथ आज की सुबह एकदम सही जवाब के साथ। एंड मेरे पास अकबानपुर से जामा मस्जिद से अरफ खान साहब जुड़े थे अपनी फैमिली के साथ राइट आंसर के साथ। शिखा जुड़ी थी, गिनी जुड़ी थी, एंड मनमोहन जी जुड़े थे, राधिका जी सही जवाब दे रही थी, एंड ये बबली अनजान गीता कश्यप जी मेरे को सही जवाब पहुंचा रहे थे। गुड मॉर्निंग ये शाम मस्तानी, रणवीर सिंह ने सही जवाब दिया था। समीर अब्बासी सही जवाब के साथ जुड़े थे, एंड मंझोला से गीतिका, इशिका, रिचिका, एंड साथ में रीना, वंशिका, रुचि, ये सब लोग, सोनू, मोनू मेरे साथ जुड़े सही जवाब के साथ। बाप रे बाप, पूरी फैमिली का नाम। हेलो हाय गुड मॉर्निंग जी, कैसे हाल चाल है? सपना शर्मा नगर पंचायत पागवाड़ा से सही जवाब दे रही है, एंड विकी सागर जी जुड़ गए हैं राइट आंसर के साथ। साथ में यशपाल यमुनानगर हरियाणा से, टीना जी जुड़ी हैं कुंदनपुर से, एकता मंडी चौक से सही जवाब देती है, ललिता कश्यप जी ने फोटो शेयर की है, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, थैंक यू सो मच, सही जवाब भी दिया उन्होंने। साथ में मेरे पास सही जवाब पहुंचा है यहाँ पर राजा कश्यप जी का, थैंक यू सो मच। बबलू जी मुंबई महाराष्ट्र से जुड़े हैं, एंड इसके अलावा हमारे पास मैसेज पहुंचा है यहाँ पर दुर्गेश जी का, भूपी शर्मा जी नगर पंचायत पागवाड़ा से जुड़े हैं हमारे साथ जुड़।

0: हैं सुभाष जी मुजफ्फरनगर से गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। रोहित कुमार हनुमान मूर्ति से मेरे साथ जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग पहुंचा रहे हैं। गुड मॉर्निंग रामपुर से पहुंच रहा है यू वली साहब का, सहारनपुर से जोन रोजी पलवली, थैंक यू सो मच एवरीबडी, मैं थक गया हूँ, हाय हाय। चलिए अभी खुशी आ गई है, आप उसके साथ अगली कंपनी एंजॉय कीजिए, जितना प्यार मुझे देते हैं उससे कहीं ज्यादा गुरा खुशी को प्यार दीजिए।
1: राधे राधे राधे राधे जी, जो आपने म्यूजिक चलाया उसका राइट आंसर है
0: हाँ जी,
1: ये शाम सितानिया मदे हूँ किए जा,
0: वाह वाह वाह,
1: कोई ढूंढ तेरी ओ,
0: वाह वाह क्या बात है, कमाल कर दिया आपने, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया रेखा मैम, एंड थैंक यू सो मच अलका वर्मा जी, आपने भी अपना प्यारा सा वॉइस नोट शेयर किया, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच एवरीबडी हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल मैं लेता हूँ इजाजत, अब मिलेंगे हम आपसे कल सुबह वेंसडे की मॉर्निंग में, ढेर सारा ख्याल रखिए, खूब सारा पानी पीते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही पॉजिटिव रहिए, फुल ऑफ एनर्जेटिक वाइब के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए। ढेर सारे टेक्स्ट मैसेज आए थे, उन सभी का भी दिल से थैंक यू, कल मिलते हैं।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
0: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
3: अरे तुम्हारे भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
1: अरे तो परेशान क्यों होना, है ना धानिया नर्सिंग होम। यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।
4: कोई मिल गया,
1: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग मुरादाबाद, तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज ट्यूसडे का दिन है, बहुत ही खूबसूरत सा मंगलवार की सुबह और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, आसमान में बादल भी हैं और मौसम जैसे यही कह रहा है थोड़ा रुकिए, मुस्कुराइए और जिंदगी का शुक्रिया अदा कीजिए। दोस्तों अक्सर हम उसी बात का दुख मनाते रहते हैं जो हमें नहीं मिला, लेकिन कभी ठहर कर भी ये सोचिए कि जो मिला है वो किसी और के लिए एक सपना हो सकता है। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी सब कुछ पा लेने में नहीं होती दोस्तों, बल्कि जो है उसकी कद्र करने में है। जब हम शिकायतें छोड़कर शुक्रिया कहना सीख जाते हैं ना, तब हर मौसम और भी खूबसूरत लगने लगता है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ, जो आपके पास है उसकी कद्र कीजिए, जो नहीं है उसके लिए मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए, जो आप चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन जो है उसकी भी वैल्यू कीजिए, उसको मत भूलिए। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी खुशी और हाजिर हूँ आपका फेवरेट शो लेकर, मॉर्निंग मसाला, जहाँ पर आपकी बातों का कुछ मसाला लगता है, चटपटे गानों का भी। सुबह सुबह मसालेदार मॉर्निंग हम बनाते हैं आपकी, लेकिन हाँ ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है क्योंकि मुझे ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं है, हम एकदम लाइट खाना खाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि खुशी जी ये खाने की बात कहाँ से आ गई? देखिए सुबह सुबह नाश्ते में आज आपका मन कर रहा है ना कि मौसम सुहाना है, तो चलिए थोड़े से हम क्या करते हैं, पकौड़े बना लेते हैं और गर्मा गर्म चाय अदरक की। हाँ जैसे मौसम सुहाना होता नहीं कि मन में ये खुराफाती विचार आने लगते हैं, है ना? आपके मन में भी आते हैं क्या? मेरे मन में भी आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलिए अब इतना सोच ही लिया है तो बना भी लेते हैं। तो फाइनली मैंने बनाए आज कुछ न्यू सामान ट्राई किया, एंड क्या ट्राई किया है मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। दोस्तों वक्त हुआ है 10:29 और आप भी मेरे साथ इस ब्यूटीफुल शो में कनेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और आज क्या स्पेशल है? जी हाँ 30 जून की तारीख है, दिन भी मंगलवार का है और अपने आप में हर दिन बहुत स्पेशल होता है, तो आज क्या कुछ खास है सब आपको धीरे धीरे पता लगेगा। आप बने रहिए, चिपके रहिए आरजे खुशी के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। बस मैं लौट कर आती हूँ कुछ ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। अब सुबह है तो सुबह को खूबसूरत बनाना खुशी का काम है ना, चलिए लौट कर आती हूँ मैं एक अमेजिंग ट्रैक के उस पार। ये ट्रैक मैंने लिया है फ्रॉम द मूवी भूत बंगला से, बहुत ही प्यारा ट्रैक है दोस्तों, जब आप सुनोगे ना तो सुनते रह जाओगे।

हाँ जी, मुझे पता है आपने डांस कर लिया है, थोड़ा सा बैठ जाइए, थक गए होंगे आप। हाँ, गुड मॉर्निंग, आपका वेलकम है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। दोस्तों, कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जो थकने पर मजबूर कर देते हैं, तो मैंने कहा चलो आज की सुबह, मौसम भी सुहाना है, दिन भी बहुत ही खूबसूरत है और जून का लास्ट डे है, तो अपने श्रोताओं को ज्यादा

कुछ मेमोरेबल तो होना चाहिए ना, और ये मंथ भी आपके लिए यादगार रहेगा। श्रुति रैना की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में ट्रैक सुना आपने। वक्त हुआ है 10:38 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में, और आपके लगातार यहाँ पर संदेश भी आ रहे हैं, ब्यूटीफुल मैसेज आ रहे हैं, मैं उनको भी शामिल करूंगी। लेकिन उससे पहले कुछ और भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों आज 30 जून की तारीख है और आज पूरी दुनिया में मनाया जाता है सोशल मीडिया डे। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि एक छोटा सा मोबाइल और इंटरनेट कैसे पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ देता है ना। आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स, ट्विटर, यूट्यूब और जैसे प्लेटफॉर्म सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं है बल्कि सीखने, कमाने, अपनी पहचान बनाने और अपने विचार दुनिया तक पहुंचाने का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है। दोस्तों आज के टाइम में कोई इंसान ऐसा नहीं जिसके पास स्मार्टफोन ना हो, सभी के पास मोबाइल होता है। और देखिए ना, फोन कितना अच्छा है। सोशल मीडिया जब से आया है हमारी फैमिली मेंबर्स चाहे हमसे दूर हो चाहे दोस्त हो, एंड सबसे 2 मिनट में बातचीत हो जाती है, फेस टू फेस एक दूसरे को देख लेते हैं। जहां पहले घंटों हमें महीनों इंतजार करना होता था, पहले पत्र लिखते थे, फिर वो जाता था, महीनों पहुंचता था, वो खत फिर पढ़ते थे, उसके बाद उनका रिप्लाई आता था, मतलब कितना टाइम लगता था, और अब 1 सेकंड नहीं लगता है, फटाक से मैसेज भेजो, फटाक से रिप्लाई आ जाता है। दोस्तों सोशल मीडिया के फायदे भी बहुत सारे हैं। देखो, दूर बैठे अपनों से पल भर में जुड़ सकते हैं, नई नई जानकारियां और खबरें तुरंत मिल जाती हैं, एंड एजुकेशन और ऑनलाइन लर्निंग आसान हो गई है। छोटे बिजनेस और जो टैलेंट को, जो अपने अंदर स्किल है, टैलेंट है, वो पूरी दुनिया तक आपको पहुँचाने का मौका मिलता है। इमरजेंसी में मदद और अवेयरनेस स्प्रेड करने का सबसे सुपर फास्ट माध्यम है। और दोस्तों इंटरटेनमेंट, म्यूजिक, वीडियो और क्रिएटिविटी शेयर करने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म भी है। लेकिन कहते हैं ना कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अच्छा भी है तो नुकसान भी बहुत सारे होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कोई भी चीज़ जब आप यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया पर तो उसे पूरी जानकारी के साथ ही आप चलाएं, क्योंकि दोस्तों सोशल मीडिया की लत, एडिक्शन ज़्यादा ठीक नहीं है। सोशल मीडिया चलाओ ठीक है, एक लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ लिमिट से ज़्यादा हमेशा फ़ायदेमंद नहीं होती है, वो ख़राब ही होती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो चलाओ, फ़ोन मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ एक दायरे में। और कभी कभी फेक न्यूज़ भी आ जाती हैं, गलत जानकारियां भी आ जाती हैं, तो उन्हें बिना वजह, किसी से जाने बिना आप एक दूसरे को शेयर ना करें। एंड बाकी और भी बातें हम बहुत सारी करने वाले हैं, इसी से जुड़ा एक सवाल भी हम आपसे मालूम करेंगे। क्या क्वेश्चन है मेरा, अभी मालूम कर लूँ या पहले आपके मैसेज पढ़ लूँ? अब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ क्या करना चाहिए मुझे। पर देखो, मेरा जो दिल है वो कह रहा है कि पहले मैसेज पढ़ो, और जो दिमाग है वो कह रहा है कि नहीं पहले सवाल करो, तो मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा चलो, दिल की बात मान लेते हैं, अभी आपके मैसेज पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम सवाल भी कर लेंगे। अच्छा, आप किसकी ज़्यादा बात मानते हो, दिमाग की या दिल की? हाँ, दोनों की सुनते हो ना, तो मैं भी देखो दोनों की सुन रही हूँ, लेकिन पहले अपने दिल की सुन रही हूँ, और मेरा दिल कह रहा है कि पहले मैसेज पढ़ लो, क्योंकि सारे श्रोता इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैसेज हमें पहुँचाते हैं खुशी मैडम जी को, हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, आज की सुबह नमस्कार, आपको भी नमस्कार। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं अगवानपुर से, जामा मस्जिद अगवानपुर से मोहम्मद आरिफ खान जी। साथ में इनकी मैसेज है निखत परवीन, और इनका बेटा भी है रुहान खान। एंड अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है कश्मीर से महराजुद्दीन जी का, और ये कहते हैं खुशी जी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग सर, आई एम फाइन, बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट मैसेज मुझे मिला है यहाँ पर दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से, मोहम्मद यासीन अनजान जी का,
और ये अपना आदाब हमें पहुंचाते हैं, आपको भी आदाब। नेक्स्ट मैसेज मुझे मिला है यहाँ पर विकी सागर जी का मुरादाबाद से, कहते हैं खुशी जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए दोस्तों आज तो मौसम सुहाना हो रहा है। कैसा लग रहा है आज मौसम? बहुत प्यारा है तो अच्छा फील हो रहा है ना। तो खुशी यहाँ पर अच्छे गाने भी आपके लिए लेकर आई है, और आप भी कोई अगर अच्छा गाना सुनना चाहते हो जो आपकी सुबह को बेहतर से बेहतरीन बनाए तो हमें फटाफट से मैसेज करो। नंबर है 9837896896। ये है आपके शहर का अपना फर्स्ट सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मैं लौट कर आती हूँ एक अमेजिंग ट्रैक इस पर, आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए। और आज सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में आपने क्या खाया है बताइए। ओहो कुछ श्रोता तो बोल रहे हैं खुशी जी अभी हमने नाश्ता ही नहीं किया है, और कुछ अभी बोल रहे हैं कि हम तो मैडम जी पेट फुल करके बैठे हैं, रेडियो सुन रहे हैं आपका। चलिए सुनते रहिए और ये गाना आप सभी के लिए है।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, गला तो मैंने भी करनी है आपके नाल, बहुत सारी बातें करनी है। और आप सभी का आरजी खुशी फिर से दिल से स्वागत करती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। वक्त हुआ है 10:52 और कुछ पंजाबी गाने सुन के ना ओए होए दिन बड़ा ही सोना हो जाना है। तो दोस्तों, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सोशल मीडिया डे। तो इसी से कनेक्टेड एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है, तो मैंने कहा चलो अपने श्रोताओं से, अपने प्यारे प्यारे लिसनर्स से हम मालूम कर ही लेते हैं। तो दोस्तों, आप तैयार हैं ना? वेरी गुड। तो दोस्तों, अगर आपको पूरे एक दिन के लिए सोशल मीडिया से दूर रहना पड़े तो आप सबसे ज्यादा किस चीज की कमी महसूस होगी आपको? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पूरे एक दिन के लिए सोशल मीडिया से दूर रहना पड़े तो आप सबसे ज्यादा किस चीज की कमी महसूस करोगे? बताओ। हाँ, किस चीज की कमी आपको महसूस होगी सबसे ज्यादा अगर एक दिन के लिए आपको सोशल मीडिया से दूर रखा जाए तो? अपना फटाफट से क्विकली मैसेज पहुंचाओ, नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837896896 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। एंड आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, वॉइस नोट भी पहुंचा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, आप जैसा चाहो। अब इतना मत सोचिए, मोबाइल आपके हाथ में है। अगर एक दिन के लिए आपको सोशल मीडिया से दूर रखा जाए तो आप सबसे ज्यादा किस चीज की कमी महसूस करोगे? जी हाँ, किस चीज की कमी आपको महसूस होगी बताइएगा। जब तक आप अपने क्रिएटिव से आंसर यहाँ पर पहुंचाते हैं, तब तक मैं आपके संदेशों को शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है दुर्गेश सैनी जी का, कल्याणपुर मुरादाबाद से। कहते हैं, खुशी जी जय श्री राम, आपको भी जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है, थम के बरस, जरा थम के बरस। बारिश हो रही है, बताओ बाहर दोस्तों, बारिश हो रही है या नहीं हो रही है? बारिश को थोड़ा सा होने दीजिए सर, थम के बरस। अगर अभी से हम ऐसे बारिश को बोलने लग जाएंगे तो फिर बड़ी मुश्किलों से तो बारिश आई है, इतनी गर्मी थी, थोड़ी राहत मिली है, तो बोलिए कि बारिश को थम के नहीं, अभी जोर से बरसना है। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है राशिद हुसैन अंसारी जी का, नसरीन अंसारी जी का। और ये हमें मैसेज पहुँचाते हैं, गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। बहुत सारे श्रोता हमें सुनते हैं, आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। नईमूल अकरम जी का सिरसवा दोराहा से अपने प्यारा सा संदेश पहुंचाते हैं। एंड उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया है, हेलो खुशी जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ये मैसेज हमें पहुँचाती है एकता फ्रॉम मंडी चौक मुरादाबाद से। हेलो जी, कैसी हैं एकता मैम, बताइए आप, लॉन्ग टाइम के बाद आज आप शो में जुड़े हो, लगता है आज आप फ्री हैं। हाँ, और इन्होंने भी एक प्यारे से बारिश की रिक्वेस्ट हमें भेजी है, बिल्कुल सुनवाएंगे आपको। सुहाने मौसम में सुहाने गाने जब हम सुनते हैं ना तो दिन और दिल दोनों खुश हो जाते हैं, है ना? तो चलो एक प्यारा सा गाना अभी सुनते हैं। इस गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है झारखंड से, फ्रॉम द मूवी राजा हिंदुस्तानी से, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी करे देखती रहूं। तो देखो, मैं फिलहाल तो अभी मेरे आसपास तो माइक है, मैं इसी को निहार रही हूँ टुक टुक, जिससे मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है। तो चलो ये प्यारा सा गाना सुनो, मैं बस आती हूँ अभी।

0: जोकर।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: हाय दयन जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
1: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
6: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है,
1: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
6: कॉल 9045912348।
7: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
1: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग. आप सभी का वेलकम है आपके अपने प्यारे से रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. दोस्तों 11:05 हो गए हैं स्टूडियो की घड़ी में राइट नाउ टाइम, और अभी हम आपसे जानने वाले हैं. एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, आपको याद है? आप भूल गए. अच्छा, याद है, ओके, थैंक यू, आपने याद रखा. दोस्तों मैंने आपसे मालूम किया था कि सोशल मीडिया से, अगर आपको पूरे एक दिन के लिए सोशल मीडिया से दूर रहना पड़े तो आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ की कमी महसूस करोगे. जी हाँ, किस चीज़ की कमी आपको सबसे ज़्यादा महसूस होगी. तो हमारे पास यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन. और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले जो मैसेज हमें पहुँचाया है ये किन का है, ज़रा रीड कर लेते हैं क्योंकि सब बहुत शिद्दत से मैसेज पहुँचाते हैं. एंड हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, हेलो खुशी जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, मौसम बहुत ही अच्छा है, दाल खा लीजिएगा, आज हम प्रकाश नगर पर ही हैं. ओके, थैंक यू सो मच, आपने हमें कहा, दिल से शुक्रिया. कहते हैं कि ब्रेकफास्ट में मुरादाबादी दाल ज़्यादा खाई जाती है. तो आप भी सुबह सुबह सुहाने से मौसम में, ब्यूटीफुल मौसम में दाल का आनंद ले रहे हैं. हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है सब. एंड हमारे पास नेक्स्ट मैसेज आया है यहाँ पर नवीन नगर मुरादाबाद से, गौरव टेलर जी का. और ये हमें कहते हैं, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, आपकी ब्लेसिंग्स हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं. उम्मीद करते हैं कि आप भी अच्छे ही होंगे. और इन्होंने आगे बड़ी प्यारी सी एक थॉट हमारे साथ शेयर किया है. कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा वज़नदार चीज़ है तो वो है मतलब. ये निकलते ही सबसे सब बड़े बड़े रिश्ते हल्के पड़ जाते हैं. बात तो है आजकल की लाइफ में, लेकिन सबको नहीं बोल सकते हैं. हाँ कुछ लोग होते हैं जो सेल्फिश होते हैं, सिर्फ मतलब के लिए रिश्ता रखते हैं. जब उनका कोई भी काम कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो दूर हो जाते हैं. लेकिन अगर कोई सेल्फिशपन कोई मतलब से रिश्ता जोड़ते हैं ना, तो वो रिश्ता ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाता है. क्योंकि जो इंसान ईमानदारी से रिश्ता निभाता है वो रिश्ता हमेशा लॉन्ग टाइम चलता है. और जिस रिश्ते में कोई इंसान छल करता है ना, तो वो रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं रुक पाता है, नहीं टिक पाता है. इसीलिए हम आपसे कहते हैं दोस्तों कि अगर कोई भी रिश्ता आप सच्चाई की नींव पर बनाते हैं तो वो रिश्ता हमेशा स्ट्रांग रहता है एंड लंबे समय तक चलता है. नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है किनका, मैं देख लेती हूँ. अगला मैसेज हमें पहुँचाते हैं यहाँ पर. ये मैसेज हमें मिला है रानी नांगल से, रिहाना जी का. और रिहाना जी कहते हैं, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, अच्छा लगता है जब आप इतने प्यार से गुड मॉर्निंग विश करते हैं, मेरा दिल तो यहीं फिसल जाता है. नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं धनुरी तीली वाला उत्तराखंड से, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बीबी आलिया. कहते हैं मैम आप हमें किसी भी गीत में शामिल कर लीजिएगा. बिल्कुल सर. और हमारे पास एक प्यारा सा वॉइस नोट भी आया है, तो आइए दोस्तों उसको हम जल्दी से बिना किसी देरी के सुन लेते हैं कि सर ने आज क्या पहुंचाया है एंड उनकी मधुर सी आवाज में.
1: नमस्कार राधे राधे, सुन रहे हैं मॉर्निंग मसाला आरजे खुशी के साथ, और मैं आपका दोस्त गोपी शर्मा, नगर पंचायत बागबड़ा से. बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है. वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं. हम लोगों के जीवन में कमाई की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती. परवाह करने वाला दोस्त, दर्द समझने वाला परिवार और इज्जत करने वाला रिश्तेदार, ये सभी कमाई के ही तो रूप हैं. इसलिए जिंदगी में मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और हाँ, मौसम परिवर्तन जरूर हुआ है, बदला नहीं, इसलिए पानी की बोतल साथ रखें, गमछा साथ रखें, अपना ख्याल रखें। ये ना हो कि मौसम ठंडा लगे तो मौसम की चिंता या अपनी सेहत की परवाह करना छोड़ दें। नमस्कार, राधे राधे, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, बजाते रहो, गुनगुनाते रहो। और मैं आपका दोस्त भूपी शर्मा, नगर पंचायत पागपड़ा से, लाता रहूंगा आपके लिए अच्छे अच्छे वॉइस नोट और विचार। नमस्कार, राधे राधे।
0: आपको भी नमस्कार, राधे राधे भूपी शर्मा जी। थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यारा मैसेज अपना पहुंचाया है और पॉजिटिव थॉट के साथ आपने जो हेल्थ के बारे में बताया है कि मौसम भले ही सुहाना हो गया है लेकिन मौसम में परिवर्तन तो आना बहुत ज़रूरी है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एंड सर ने बोला है कि पानी की बॉटल हमेशा साथ रखना, पानी पीते रहिए। मुझे याद आया कि मेरे पास भी एक पानी की बॉटल है, मैं भूल गई थी, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये मैसेज हमें पहुंचाती हैं कौन, प्रिया का मैसेज हमारे पास आया है विकास नगर से और ये हमें कहती हैं गुड मॉर्निंग खुशी मैम। देखिए मैं तो सोशल मीडिया से दूर रह ही नहीं पाती हूँ, एक्चुअली अगर मैं एक घंटे के लिए भी फ़ोन से दूर हो जाती हूँ ना तो ऐसे लगता है कि कुछ तो लाइफ में अधूरा है। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहती हूँ, फ़ोन चलाइए लेकिन इतना मत चलाइए कि उसकी आपको ज़्यादा लत लग जाए। बाकी मैं आपको सुनवाती हूँ कुछ खूबसूरत ट्रैक, उसके बाद हम करेंगे आपसे और भी बातें। एंड विनीत जी ने हमें मैसेज पहुँचाया, थैंक यू सो मच सर। तो चलिए दोस्तों सुन लेते हैं एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक। एंड इस गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है गौरव टीलर जी ने नवीन नगर मुरादाबाद से, श्रेया घोषाल जी की बहुत ही प्यारी सी आवाज में, प्यारा सा ट्रैक जो आपकी मॉर्निंग को बनाएगा और भी ज्यादा खूबसूरत।

नमस्कार श्रोताओ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुपर हिट ट्रैक सुना अलका याग्निक जी की बहुत प्यारी सी आवाज़ में, प्यारा सा ट्रैक थम के बरस। देखिए थम के बरस रहा है बाहर, कैसा मौसम है ये तो मुझे आप बताएंगी श्रोताओ कि अभी राइट नाउ मुरादाबाद का कैसा मौसम है। समय हुआ है 11:22। दोस्तों आज हम नमन करते हैं भारत की उस वीरांगना को जिन्होंने साहस, अभिमान और देशभक्ति की ऐसी मिसाल पेश की है जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। आज है वीरांगना उदा देवी पासी जी की जयंती। जी हाँ दोस्तों, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जब अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई छिड़ी तब उदा देवी पासी जी ने अपने वीरता का परिचय दिया। उन्होंने निडर होकर मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उनका साहस हमें ये

सिखाता है कि देश प्रेम और हिम्मत किसी पहचान या परिस्थिति की मोहताज नहीं होती। ज़िंदगी में मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हों, अगर इरादे मजबूत हों तो इतिहास लिखा जा सकता है। उदा देवी पासी जी का जीवन हमें ये प्रेरणा देता है कि साहस, आत्मविश्वास और देश के प्रति समर्पण इंसान को अमर बना देता है। तो दोस्तों, हौसले की उड़ान कभी झुकती नहीं, हौसले की उड़ान कभी झुकती नहीं, देशभक्ति की लौ कभी बुझती नहीं। जो मातृभूमि के लिए जीते हैं और बलिदान देते हैं, उनकी कहानी कभी मिटती नहीं। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, अभी हम आज वीरांगना उदा देवी पासी जी की जी को हम शशत नमन करते हैं, उनके साहस, त्याग और देशभक्ति से प्रेरणा की लौ जलाते हैं और कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाएंगे। आपके जो संदेश आए हैं उनको भी हम शामिल करेंगे, लेकिन हम आपको समय भी बता देते हैं साथियों। वक्त हुआ है 11:24 स्टूडियो की घड़ी में, और आप भी अपनी घड़ियाँ मिला लीजिए। वैसे तो वॉच सब पहनते हैं, लेकिन टाइम मोबाइल में ही देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत से मैसेज आया है मुरादाबाद से रणवीर सिंह जी का, और ये कहते हैं आपको मंगलवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सुबह जितनी खूबसूरत है, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका और एफएम मुरादाबाद सुनने वालों का उतना ही खूबसूरत हर पल हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना प्यारा संदेश हमें पहुंचाया है। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, जय श्री राम। खुशी मैम, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ सर। एंड इन्होंने एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है, हम पूरी कोशिश करेंगे सर इसको प्ले करने की, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। अगला मैसेज हमारे पास आया है खुशी मैडम जी को, हेलो गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। ये मैसेज हमें पहुँचाती हैं बबली अनजान जी, गीता कृष्ण जी। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, जय श्री राम, राधे राधे, आपको भी राधे राधे। ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं अजीत कसाना जी, माया देवी जी, ऋतिक जी और साथ में आदिति कसाना जी, कांट रोड लद्दावली से अपना मैसेज पहुंचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना संदेश हमें पहुंचाया है। श्रोताओं, आप भी मुझे अपने मैसेज पहुंचा सकते हैं, नंबर हमारा है 9837896896। और नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है नवीन नगर मुरादाबाद से ललिता कश्यप जी का, और ये कहती हैं गुड मॉर्निंग खुशी मैम, आप कैसी हैं? आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को तो हमारी आवाज़ फाइनली पसंद आती है। और ये आगे लिखती हैं कि मैम हमने नाश्ता कर लिया है, गर्मा गर्म आलू के पराठे एंड आम की चटनी, और इन्होंने क्या लिखा है, भिंडी की सब्जी। ओहो क्या बात है भाई, इतना टेस्टी खाना आप सुबह सुबह खा रहे हो। हाँ मैंने बुला लो जी, बुला लो, मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ, तुम मैंने बुला दी नहीं हो। हाँ जी, ओहो ललिता जी बड़ा हंसने लगी हैं, क्या बात है, चलिए ऐसे ही हमेशा मुस्कुराती रहिए। और आगे ये कहती हैं मुझे कि खुशी मैम मौसम बहुत ही सुहाना है, और अब हमने नाश्ता कर लिया है, नाश्ता करके आराम से बैठकर आपको सुन रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है जी, शुक्रिया। इन्होंने भी एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है। ये कहती हैं कि मैम आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर मैं आपको बताना चाहूंगी, किसी भी चीज़ की नहीं कमी होती है हमें। एक्चुअली जब हम मोबाइल से दूर रहते हैं तो हम एफएम रेडियो ऑन कर लेते हैं और इसको सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और जब मोबाइल हम चलाते हैं तो सबसे पहले एफएम मुरादाबाद 89.6 पर मैसेज पहुंचाते हैं। अरे वाह क्या बात है, थैंक यू सो मच। तो चलो दोस्तों, सुनते हैं एक और बेहतरीन ट्रैक, और ये गाना सुनने वाले हैं हम ललिता जी की रिक्वेस्ट पर, तो सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे और भी गुफ्तगू करेंगी।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
4: कॉल 8826213131।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। दोस्तों, सभी की धड़कन बन चुका है एफएम मुरादाबाद 89.6। मैं जानती हूँ सुबह उठते ही 6 बजे जैसे आपकी आंखें खुलती हैं, तुरंत सबसे पहले आप रेडियो ऑन करते हैं, क्योंकि इसके बिना तो लगता है कि कुछ अधूरा रह गया, अभी हमारी मॉर्निंग स्टार्ट ही नहीं हुई है। जब भजन चलते हैं उसके बाद आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं, है ना। आपकी दिल की बात खुशी जान लेती है, क्योंकि दिल से दिल का रिश्ता है आपका और हमारा। दोस्तों, आस्था, श्रद्धा और परंपरा का ऐसा अद्भुत संगम शायद ही कहीं और देखने को मिले। जी हाँ, उड़ीसा के पवित्र तीर्थ पुरी में देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर महाप्रभु जगन्नाथ जी, बड़े भाई बलभद्र जी और बहन देवी सुभद्रा जी का भव्य स्नान उत्सव पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। इस खास अवसर पर तीनों देव विग्रहों को गर्भगृह से भव्य पहाड़ी जुलूस के माध्यम से स्नान मंडप तक लाया गया। इसके बाद सुगंधित जड़ी बूटियां, चंदन और कपूर से युक्त 108 पवित्र कलशों के जल से उनका दिव्य अभिषेक किया गया। स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ और बलभद्र जी को मनमोहक हाथी वेश, गजानन वेश से सजाया गया। इस अलौकिक स्वरूप के दर्शन के लिए देश विदेशों से लोग आए, लाखों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। एंड मान्यता के इस शाही स्नान के बाद भगवान के ज्वर बुखार आ जाता है, इसलिए वे अगले 15 दिन तक अनासर काल में एकांत में मतलब वो रहते हैं एंड एकांतवास करते हैं। इस दौरान भक्तों को उनके दर्शन नहीं होते। इसके बाद भगवान सीधे विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के दिन भक्तों को दर्शन देते हैं। दोस्तों, ये परंपरा हमें सिखाती है कि ईश्वर भी अपने भक्तों के साथ मानवीय भावों से जुड़े हैं। यही हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और मेरा भी बहुत मन है जगन्नाथ जी के दर्शन करने का, जगन्नाथ जाने का, जगन्नाथ पुरी जाने का, बट मुझे यकीन है कि मैं ज़रूर जाऊँगी। और दोस्तों, मैं आपको टाइम बता देती हूँ, वक्त हुआ है अभी 11:41, 11:41 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। आप भी अपनी घड़ियाँ मिला लीजिए। और यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे संदेश आए हैं, तो मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, खुशी जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं उमेश कुमार प्रजापति जी लोधीपुर मुरादाबाद से। नेक्स्ट मैसेज हमें मिले हैं यहाँ पर राधिका का, और ये हमें गुड मॉर्निंग विश करती हैं, वेरी गुड मॉर्निंग राधिका आपको भी। उसके अलावा एक और मैसेज हमें मिला है, हेलो खुशी मैम गुड मॉर्निंग, आई एम शाजिद मुरादाबाद से, मुरादाबाद आजाद नगर से ये अपना मैसेज हमें पहुँचाते हैं। और ये कहते हैं कि खुशी जी आज हमें एक ट्रैक सुनवा दीजिएगा, आज मौसम बड़ा बेईमान है। ओहो हो, मौसम को आप ऐसा बोलोगे ना तो वो नाराज़ हो जाएगा, और फिर वो नाराज़ हो जाएगा तो फिर गर्मी हो जाएगी तो फिर सबको दिक्कत होगी। तो मौसम को ऐसा ना बोलो तुसी। वैसे गाना सुन रहे हो, मैं जान लेती हूँ, लेकिन खुशी थोड़ा सा जोक सपाट करती है, थोड़ी सी मजाक मस्ती कर लेती है, ये लड़की नटखट सी है, क्या करें, इसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट समझ जाती है, अच्छी बच्ची है। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है संदीप सागर जी का, ग्राम जिला मुरादाबाद से मैसेज हमें पहुँचाते हैं, गुड मॉर्निंग खुशी मैम कैसे हैं आप, वेरी गुड मॉर्निंग, हम बहुत अच्छे हैं। और अगला मैसेज हमारे पास कहाँ से आया है, किन का आया है, वो हम अभी आकर शामिल करेंगे, सारी बातें एक साथ नहीं करते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा आप। एंड एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक यहाँ पर हम सुनवाने वाले हैं, और इस गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है रिहाना जी ने, राहत फतेह अली खान जी की बहुत ही प्यारी सी आवाज़ में, प्यारा सा ट्रैक आप सब सुनिएगा। बस मैं आती हूँ अभी।

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद
2: कॉल 8826213131
3: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है
4: वो भी क्यों ना भाभी राज कलेक्शन ने जो सजाया है आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद
6: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद कॉल नाउ 9412211111
7: कोई मिल गया
8: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने बातें होती हैं दिल से दिल तक यादों का सितारा गीतों का सहारा मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए

हेलो हाय एवरीवन, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है और शो चल रहा है मॉर्निंग मसाला। और दोस्तों, समय हुआ है 11:53। दोस्तों, कहते हैं ना कि एक अच्छा नेता सिर्फ फैसले नहीं लेता बल्कि लोगों की जिंदगी में बदलाव भी लाता है। ऐसी ही एक कहानी दिल को छू लेने वाली एक कहानी सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, करीबन एक साल पहले एक छोटी सी बच्ची वाची अपने पिता के साथ मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के जनता दर्शन में पहुंची थी। परिवार की बस एक ही इच्छा थी कि बेटी का स्कूल में एडमिशन हो जाए। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कुछ ही घंटों में वाची का एडमिशन हो गया और अब ठीक एक साल बाद वाची फिर मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ नजर आई। लेकिन इस बार एक खास भूमिका में मुरादाबाद में नव निर्माता श्री राम वाटिका का लोकार्पण किसी मंत्री या अधिकारी से नहीं बल्कि वाची और उसकी छोटी बहन आची के हाथों से कराया गया। ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था बल्कि एक खूबसूरत संदेश था। बेटियां मान की हकदार हैं, उन्हें अवसर दिया जाए, विश्वास दिया जाए, क्योंकि आज की बेटियां ही कल का उज्जवल भविष्य हैं। दोस्तों, एक छोटी सी कोशिश कीजिए, किसी बच्ची की जिंदगी बदल सकती है। तो सोचिए, अगर हम सब मिलकर बेटियों को पढ़ने, आगे बढ़ने और अपने सपने पूरे करने का मौका दें तो हमारा समाज कितना खूबसूरत बन सकता है ना। तो दोस्तों, याद रखिए, बेटियों को सिर्फ पंख नहीं उड़ने का हौसला भी दीजिए, क्योंकि जब बेटियां आगे बढ़ेंगी तब पूरा देश आगे बढ़ेगा। इसी खूबसूरत अपडेट के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज भी आए हैं और ये मैसेज हमें पहुँचाया है अफरोज फातिमा जी ने। अफरोज जी, काफ़ी समय के बाद आज आपने अपना मैसेज पहुँचाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्होंने बड़ी प्यारी सी एक शायरी लिखी है कि बेदर्द ज़माना क्या जाने दर्द की कसरत होती है दिल दे के हमें मालूम हुआ क्या चीज मोहब्बत होती है। ओए होए होए, क्या बात है भाई, आप जो शायरियां करती हो ना वो अलग ही लेवल की होती है यार। बट थैंक यू सो मच, आपने अपना मैसेज पहुंचाया। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का। साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं, शहीद शारिक अली जी, महराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी। एंड ये कहते हैं, गुड मॉर्निंग खुशी जी। वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर, आपका शो मॉर्निंग मसाला सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। इन्होंने भी गाने की रिक्वेस्ट भेजी है, तुझे ना देखूँ तो चैन मुझे आता नहीं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर मिस्टी का आया है और मिस्टी कहती हैं, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, आप कैसी हैं? आपकी प्यारी सी आवाज़ सुनकर हमारा दिल और दिन दोनों ही खूबसूरत हो जाते हैं। अरे थैंक यू सो मच, इतने प्यार के लिए, इतनी मोहब्बत के लिए दिल से शुक्रिया। अब रुलाओगे क्या इतनी तारीफ करके? हाँ, ये लड़की बहुत इमोशनल है, रो भी जाती है। और हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज आया है सूरज जी का, ये मुरादाबाद से मैसेज हमें पहुँचाते हैं। कहते हैं कि खुशी मैम, मुझे ना सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप की कमी महसूस होगी। घर वालों और दोस्तों से बात करने की आदत है, लेकिन एक दिन बिना सोशल मीडिया के रहना शायद मन को थोड़ा सुकून भी दे सकता है। तो एक दिन के लिए अगर मुझे सोशल मीडिया से दूर रहना पड़े तो मैं व्हाट्सएप को मिस करूँगा। ओहो, क्या करें दोस्तों, ये हमारी अब रूटीन में शामिल हो गया है ना। सुबह उठते ही पहले फ़ोन चेक करते हैं आप, देखते हैं किसका नोटिफिकेशन आया है, किसी का कॉल आया है या क्या मैसेज आया है, किसने गुड मॉर्निंग विश किया है, फिर सबको गुड मॉर्निंग विश

कि बाहर की दुनिया को देख ही नहीं पाते हैं। तो इसीलिए कहती हूँ कि कुछ वक्त के लिए फोन को भी थोड़ा सा गैप दिया करो, उससे थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करके रखा करो। हर समय फोन को कभी पॉकेट में लेकर घूमते हो, कभी हाथ में लेकर घूमते हो, हाँ उसको थोड़ा सा दूर रखा करो यार। रियल लाइफ में, रियल की लाइफ से ना रियल लाइफ में भी आकर देखो, बहुत खूबसूरत है दोनों चीजें, ठीक है। लेकिन सोशल मीडिया ठीक है अपनी जगह, पर रियल लाइफ बहुत अच्छी है। चलो बहुत सारी बातें खुशी ने अब कर ली है, अब खुशी के जाने का समय हो गया है। जाते जाते बस खुशी यही कहेगी कि हमेशा खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए, अपनों का ख्याल रखिए और साथ साथ अपना भी ख्याल रखिए। हाँ, सबका ख्याल रखते रखते ना अक्सर आप अपने ख्याल रखना भूल जाती हैं, तो प्लीज मैम मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अपना ध्यान भी रखिए। जब आप अपना ख्याल रखेंगी ना तो तभी तो आप पूरे परिवार का अच्छे से ख्याल रख पाएंगी। देखिए अभी कैसे मुस्कुरा रही है। चलिए ऐसे ही हमेशा ऑलवेज खुश रहिए आप सब। बाय बाय, टेक केयर, सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मैं मिलूंगी आपको बहुत जल्द 3 से 5। मुझे पता है आप मुझे मिस करने वाले हो, वैसे मैं भी आपको बहुत मिस करती हूँ, यकीन नहीं होता है। देखिए ठीक 3 बजे खुशी आ जाएगी, ये आपसे प्रॉमिस कर रही है। थोड़ा सा डिस्टेंस भी मेंटेन करना जरूरी होता है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर मिलेंगे आपको 3 से 5। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर।

0: अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। वे प्रभावित किसानों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर राहत कार्यों का जायजा लेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से इस्तीफा देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि 4 दशकों से अधिक समय तक भारतीय सेना में सेवा करना उनके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है।
1: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए UPI सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक स्तर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी

चिंता की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। विश्व के कई नेता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। तालिबान के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरन ने बताया कि हवाई हमलों में 36 नागरिक मारे गए हैं और 163 अन्य घायल हो गए हैं, साथ ही 3 आवासीय मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए। हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतेरेश ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया, सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भारत ने अपना मानवीय सहायता अभियान और तेज कर दिया है। इस अभियान के अंतर्गत प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता, आपात राहत सामग्री और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी नोटिस का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि निजी पेट्रोलियम कंपनियां विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के लोगों वाले इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेच रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में IOCL ने कहा कि ये दावा फर्जी है और निगम ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। घरेलू शेयर बाजार के आज के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 38 अंक गिरकर 76,690 और निफ्टी 13 अंक गिरकर 23,933 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर। चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: अरे सुन सुन।
1: यस माँ।
0: एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, ये फोटो देख ले, मुझे तो लड़की बहुत पसंद है।
1: माँ मैं बाद में देख लूँ।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूं आपकी दोस्त आरजेरीना। और आज की बात थोड़ी अलग है, क्योंकि आज हम जिस बीमारी की बात करने जा रहे हैं वो शोर नहीं करती, कोई चेतावनी नहीं देती, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को धीरे धीरे कमजोर कर रही है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन। और खास बात ये है कि हर साल 17 मई को पूरी दुनिया में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है, ताकि हम सरता है रोजमर्रा का काम करता है और उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके बहुत डराने वाली बात है। सेहतिया जी,
1: बिल्कुल यही इसकी सबसे खतरनाक बात है। आज दुनिया भर में लगभग 1.4 अरब लोग हाई ब्लड प्रेशर से प्रभावित हैं, लेकिन इनमें से बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिन्हें यह पता ही नहीं है कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। और जो लोग जानते भी हैं, उनमें से भी बहुत कम लोग इसे सही तरीके से नियंत्रण कर पाते हैं। इसका कारण है नियमित जाँच का अभाव, दवाइयों को बीच में छोड़ देना और जीवन शैली में जरूरी बदलाव ना करना।
0: सेहतिया जी, अगर हम अपने देश की बात करें तो भारत में स्थिति कैसी है? क्या यहाँ भी हालत इतनी ही गंभीर है या उससे भी ज्यादा चिंताजनक है?
1: भारत में भी स्थिति काफी चिंताजनक है अर्जरीना। यहाँ हर तीसरा वासी किसी न किसी रूप में हाई ब्लड प्रेशर से प्रभावित है। पहले यह माना जाता था कि यह बीमारी केवल शहरों या अमीर लोगों तक सीमित है, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। गांव में भी यह तेजी से फैल रहा है। आज किसान, मजदूर, दुकानदार, महिलाएं, हर वर्ग के लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। इसका कारण है बदलती जीवन शैली, खान पान में बदलाव, शारीरिक गतिविधियों की कमी और बढ़ता तनाव।
0: तो मतलब अब यह सिर्फ उम्र या पैसे से जुड़ी बीमारी नहीं है, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनती जा रही है।
1: बिल्कुल सही समझा आपने आरजेरीना। अब यह बीमारी सीधे तौर पर हमारी जीवन शैली से जुड़ चुकी है, जैसे ज्यादा नमक सेवन करना, पैकेट वाले और प्रोसेस्ड खाने की आदत, दिन भर बैठकर काम करना, शारीरिक मेहनत कम होना, तनाव लेना और पर्याप्त नींद ना लेना, ये सभी कारण हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए इसे लाइफस्टाइल डिजीज भी कहा जाता है।
0: आपने इसे साइलेंट किलर कहा। जरा हमारे श्रोताओं को और अच्छे से समझाइए कि आखिर ये इतना खतरनाक क्यों है, क्योंकि जब लक्षण ही नहीं होते तो लोग इसे गंभीरता से कैसे ले।
1: देखिए आरजेरीना, जब ब्लड प्रेशर लगातार ज्यादा बना रहता है तो यह धीरे धीरे शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। दिल पर इसका सीधा असर पड़ता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। दिमाग पर भी असर पड़ता है, जिससे स्ट्रोक हो सकता है। किडनी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और आंखों की रोशनी पर भी असर पड़ सकता है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि यह सब कुछ धीरे धीरे और बिना किसी चेतावनी के होता रहता है, इसीलिए लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। और जब तक गंभीर लक्षण सामने आते हैं, तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है।
0: मतलब खतरा चुपचाप बढ़ता है और इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना व्यस्त रहता है कि उसे इसका अंदाजा ही नहीं होता। यह सोचकर ही डर लगता है कि एक ऐसी बीमारी जो दिखती नहीं है, महसूस नहीं होती, वही सबसे ज्यादा नुकसान करती है। इसीलिए शायद आज की इस बातचीत का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमें जागरूक होना होगा और समय रहते अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। तो इसका सबसे बड़ा उपाय क्या है सेहतिया भैया? अगर कोई व्यक्ति यह सोच रहा हो कि वह इस साइलेंट किलर से खुद को कैसे बचा सकता है, तो उसे सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए?
1: देखिए आरजेरीना, सबसे पहले जरूरी कदम यह है कि नियमित ब्लड प्रेशर की जाँच कराना। यह एक बहुत ही सरल है लेकिन बेहद ही प्रभावी तरीका है। हर व्यक्ति को, चाहे वह बिल्कुल स्वस्थ क्यों ना हो और क्यों ना महसूस करता हो, अपना ब्लड प्रेशर समय समय पर चेक कराना चाहिए, क्योंकि जैसा हमने पहले कहा, यह बीमारी बिना लक्षण के भी हो सकती है। इसीलिए केवल मैं ठीक हूँ महसूस करना काफी नहीं है, जानकारी ही बचाव का पहला कदम है।
0: और ये जांच कहाँ करवाई जा सकती है? क्योंकि कई लोग यह सोचते हैं कि इसके लिए बड़े अस्पताल जाना पड़ेगा या खर्चा ज्यादा होगा।
1: नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है आरजेरीना। आजकल सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और विभिन्न स्वास्थ्य कैंपों में ब्लड प्रेशर की जांच बहुत ही आसानी से और कई बार मुफ्त में भी उपलब्ध होती है। इसके अलावा आशा कार्यकर्ता, ANM और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी भी गांव-गांव जाकर यह जाँच करते हैं। कई जगहों पर तो छोटे क्लिनिक या मेडिकल स्टोर पर भी मशीन उपलब्ध होती है। मतलब अब जाँच करवाना मुश्किल नहीं, बस हमें खुद की पहल करनी होगी।
0: तो सेहतिया जी, अगर कोई व्यक्ति सच में अपने आप को इस बीमारी से बचाना चाहता है तो उसे अपने रोजमर्रा के जीवन में क्या क्या बदलाव करने चाहिए?
1: बहुत कठिन नहीं है आरजी रीना, लेकिन जरूरी ये है कि हम नियमित रूप से अपनाएं। सबसे पहले नमक का सेवन हमें कम करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा नमक सीधा ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। इसके साथ ही पैकेट वाले और प्रीपेड खाने को कम कर देना चाहिए। हम अपने भोजन में ताजे फल और हरी सब्जियों को शामिल करें। रोजाना थोड़ा बहुत चलना फिरना, जैसे सुबह या शाम की सैर करना बहुत फायदेमंद होता है। तनाव को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वह ध्यान हो, मेडिटेशन हो, या परिवार के साथ समय बिताना हो, या कोई अपना एक पसंदीदा काम जरूर करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, तंबाकू और शराब से बेहद ही दूरी बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों ही ब्लड प्रेशर को बिगाड़ते हैं।
0: मतलब छोटी छोटी आदतें जो हम रोज करते हैं वही हमारे स्वास्थ्य पर इतना बड़ा असर डालती हैं।
1: बिल्कुल, यही छोटी छोटी आदतें मिलकर एक बड़ा फर्क पैदा करती हैं। और अगर किसी व्यक्ति को डॉक्टर दवा देता है तो उसे नियमित रूप से लेना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग यह गलती करते हैं, जैसे ही उन्हें थोड़ा सा आराम महसूस होता है वो ना दवा लेते हैं और ना ही दवा लेना चाहते हैं, बिल्कुल बंद कर देते हैं। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर का इलाज एक लंबी प्रक्रिया है, इसे लगातार नियंत्रण रखना पड़ता है। दवा बीच में छोड़ देना स्थिति और खराब हो सकती है।
0: अगर ब्लड प्रेशर नियंत्रण में ना रहे तो क्या शरीर कुछ संकेत देता है? क्या ऐसे में लक्षण होते हैं जिन्हें देखकर हमें तुरंत सावधान हो जाना चाहिए?
1: बिल्कुल जी हाँ आरजेरीना, जब स्थिति गंभीर हो जाती है तो कुछ संकेत सामने आ सकते हैं, जैसे अचानक शरीर के एक हिस्से में कमजोरी महसूस होना, बहुत तेज सर दर्द होना, सीने में दर्द होना या भारीपन महसूस होना, या जैसे सांस का फूलना या आंखों के सामने धुंधला दिखना। ये सभी संकेत खतरनाक हो सकते हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे में तुरंत डॉक्टर के पास जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि समय पर इलाज ही जीवन को बचा सकता है।
0: सेहतिया जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई, लेकिन कई बार लोग तब तक नहीं समझते जब तक वो किसी असली घटना से ना जुड़े। क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो हमारे श्रोताओं को यह एहसास करा सके कि यह समस्या कितनी गंभीर है और समय पर ध्यान देना कितना जरूरी है?
1: हाँ अर्जिरीना, एक कहानी है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। हमारे ही एक गांव में रामप्रसाद जी रहते थे। उनकी उम्र लगभग 45 साल है। मेहनती किसान, दिन भर खेतों में काम करते थे। देखने में बिल्कुल स्वस्थ, मजबूत शरीर और हमेशा मुस्कुराते रहते थे। उन्हें कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई थी, इसीलिए वो खुद को पूरी तरह ठीक मानते थे। गांव में जब भी स्वास्थ्य कैंप लगता था तो उन्हें लोग कहते थे, रामप्रसाद जी तुम भी चलो जांच करवा लो, लेकिन वो हंसकर टाल देते, अरे मुझे क्या होगा, मैं तो रोज ही मेहनत करता हूँ, मुझे कैसे बीमारी हो सकती है। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन एक दिन अचानक खेत में काम करते करते उन्हें चक्कर आ गया और वो गिर पड़े। परिवार वाले घबरा गए, तुरंत अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने जांच की और जो बात सामने आई उसने सबका दिल हिला दिया। राम प्रसाद का ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा था, इतना ज्यादा कि उनके दिमाग की नसों पर असर पड़ चुका था। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि समस्या अचानक नहीं हुई है, ये कई सालों से धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन कभी जांच ना कराने की वजह से पता ही नहीं चला। परिवार के लिए ये बेहद ही दुखद झट था। उनकी पत्नी रोते हुए कह रही थी, अगर हम पहले जांच करवा लेते तो शायद ये दिन देखना ही ना पड़ता। कई दिनों तक अस्पताल में इलाज चला, हालत धीरे धीरे सुधरी, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में बहुत समय लगा। इस घटना के बाद रामप्रसाद की जिंदगी बदल गई। आज वही रामप्रसाद गांव-गांव जाकर लोगों को समझाते हैं, भाई गलती मत करना जो मैंने करी है, बीमारी आने का इंतजार मत करो, समय पर जांच कराओ। वो अब हर महीने अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं, दवा लेते हैं और अपने खाने पीने का खास ख्याल रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, अब वो अपनी ही नहीं बल्कि अपने पूरे गांव की भी चिंता करते हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हम खुद को जितना मजबूत समझते हैं उतने होते नहीं हैं, और एक छोटी सी लापरवाही हमें बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। आरजे रीना
0: सिहतिया जी, आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर कोई छोटी या साधारण समस्या नहीं है। ये चुपचाप शरीर के अंदर अपना असर दिखाता रहता है, और जब तक हमें इसका पता चलता है तब तक कई बार नुकसान काफी बढ़ चुका होता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर हम समय रहते जागरूक हो जाए, अपने शरीर के संकेतों को समझ सके और छोटी छोटी सावधानियां अपनाएं, तो इस खतरे से काफी हद तक बचा जा सकता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने आरजे रीना। मैं भी हमारे श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि अपने स्वास्थ्य को हल्के में ना लें, नियमित रूप से अपना ब्लड प्रेशर की जांच कराते रहें, क्योंकि यही सबसे पहला और जरूरी कदम है। अपने खाने में नमक की मात्रा कम कीजिए, ज्यादा तला भुना और पैकेट वाले खाने थोड़े कम कर दीजिए, और जितना हो सके अपने दिनचर्या में शारीरिक गतिविधियों को शामिल कीजिए, चाहे वो रोज थोड़ी देर टहलना ही क्यों ना हो। अगर डॉक्टर ने दवा दी है उसे बीच में कभी ना छोड़ें। कई बार हमें लगता है कि अब हम ठीक हो गए हैं, लेकिन यही बीमारी ऐसी है जिसे लगातार नियंत्रण रखना पड़ता है।
0: साथियों, आज का हमारा संदेश बहुत सीधा और बहुत जरूरी है। खामोश है ये बीमारी, पर असर इसका है भारी। अगर समय पर ध्यान न दिया तो पड़ सकती है जिंदगी पर ये भारी। इसीलिए आज ही संकल्प लीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, अपने परिवार का ध्यान रखेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करेंगे।
1: बिल्कुल सही कहा अर्जी रीना। तो याद रखिए, स्वस्थ रहना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आपके परिवार और पूरे समाज की भी सुरक्षा है। जब हम खुद का ख्याल रखते हैं तो हम अपनों का और अपने परिवार का भी सुरक्षित ख्याल रखते हैं।
0: इसी के साथ हम अपना आज प्रोग्राम यही खत्म करते हैं, पर जाने से पहले हम सब मिलकर लेते हैं शपथ, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
0: महिला, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। तो सेहत सही तो लाभ कई।
0: मैं आपकी दोस्त आरजे रीना और अब लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत, लेकिन जाते जाते बस इतना कहना चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और नियमित जांच करवाते रहिए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में सेहत सही लाभ कई, एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6।
2: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
6: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो सेहत सही लाभ कई और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बहुत जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, किशोरियों का यौन और प्रजनन स्वास्थ्य। 10 से 19 साल की उम्र में न सिर्फ शरीर बदलता है बल्कि मन में भी कई सवाल उठते हैं, ऐसे में सही जानकारी मिलना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि इस उम्र में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सुविधाएं मिलती हैं और किस तरह माता पिता, स्कूल, समाज और सरकार मिलकर बच्चों की मदद कर सकते हैं। इन सभी मुद्दों पर आज हमारे साथ बात करने के लिए सेहतिया भैया जी हैं।
1: नमस्कार खुशी जी। जैसे किसी बगीचे में सही समय पर पानी और खाद ना मिले तो पौधा सूख जाता है, वैसे ही किशोर उम्र में अगर सही जानकारी और सलाह न मिले तो बच्चा उलझ सकता है, इसलिए सही बातें जानना और समझना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। वैसे पूर्वावस्था के दौरान शरीर और मन में क्या बदलाव आते हैं?
1: जब बच्चा 10-11 साल का होता है तब से उसके शरीर में धीरे धीरे बदलाव शुरू हो जाते हैं, जैसे लड़कों की आवाज भारी होने लगती है, उनका कद एकदम तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है, लड़कियों में मासिक धर्म यानी पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। शरीर बदलेगा तो इसका असर मन पर भी पड़ेगा, कभी गुस्सा आएगा, कभी बिना बात के मन उदास हो जाएगा या अकेलापन लगेगा, ये सब एकदम नॉर्मल है, डरने की बात नहीं है।
0: भैया जब हम यौन और प्रजनन स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या बातें आती हैं?
1: देखो जी, कई बातें हैं जिनके बारे में खुलकर बात करना जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि महावारी यानी पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हर लड़की और औरत के शरीर में होती है। इसके बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि किसी को शर्म या डर न लगे। अब बात आती है गर्भ ठहरने की यानी बच्चे होने की बात। आजकल ये जरूरी है कि लड़का और लड़की दोनों ये समझे कि बिना सोचे समझे जल्दी माता पिता बन जाना मुश्किलें बढ़ा सकता है, इसलिए बचाव के तरीके जैसे गर्भ निरोधक उपाय की जानकारी सबको होनी चाहिए। और सबसे अहम बात, किसी भी संबंध का फैसला सोच समझकर होना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को ना कहने का हक है और अपने शरीर के बारे में फैसला लेने का अधिकार भी है, ये समझना ही असली समझदारी है।
0: अगर किसी किशोर को डर लगे, शर्म आए या मन में कोई सवाल हो तो उसे कैसे क्या करना चाहिए?
1: सवाल उठाना तो अच्छी बात है, ऐसे में संकोच नहीं करना चाहिए। अपने घर में माता पिता से, स्कूल में टीचर से या किसी ऐसे बड़े से बात करनी चाहिए जिस पर भरोसा हो। अगर डॉक्टर या काउंसलर से बात करने का मौका मिले तो बिना हिचक अपने सारे संदेह पूछ लेने चाहिए।
0: सेहतिया भैया, जब हम किशोरों की यौन और प्रजनन सेहत की बात करते हैं तो कई बार समाज की पुरानी सोच और परंपराएं ही रुकावट बन जाती है, जैसे लड़कियों पर जल्दी शादी करने का दबाव और लड़कों पर हमेशा रो मत मर्द बन। ऐसे माहौल में सही जानकारी और सही सुविधाएं कितनी जरूरी हैं?
1: बिल्कुल आरजे खुशी, चाहे गांव हो या शहर, ऐसी सोच हर जगह मिलती है। लड़की बड़ी हो गई तो लोग कहते हैं कि बोझ बन गई है, लड़कों से कहा जाता है कि अब घलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब ऐसे ताने मिलेंगे तो बच्चे कैसे खुलकर बात करेंगे, इसलिए जरूरी है कि किशोरों को सही जानकारी दी जाए, अच्छे से समझाया जाए और उनकी बात सुनी जाए। किशोरों को डांटना नहीं है, उन्हें प्यार से समझाना है, उनकी बात सुननी है और उनका साथ देना है।
0: सेहतिया भैया, हम देख रहे हैं कि कई जगह बहुत छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है, ऐसी करने से उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है और अगर किशोरी गर्भवती हो जाए तो ये खतरनाक हो सकता है ना?
1: बिल्कुल, ये चिंता की बात है। शादी से लड़की के ऊपर बहुत बोझ आ जाता है, शरीर पर भी और मन पर भी। अगर कम उम्र में वो गर्भवती हो जाए तो माँ बच्चे की जान जाने का खतरा भी हो सकता है, फिर लड़के की पढ़ाई, करियर, सपने सब पीछे छूट जाते हैं, जिंदगी बस घर गृहस्थी तक ही सिमट जाती है।
0: अगर कोई लड़की गलती से गर्भवती हो जाए तो डर की वजह से चोरी छुपके गर्भपात करवा लेती है, ये कितना खतरनाक है?
1: जब किसी किशोरी को डर लगता है, शर्म आती है या सही जानकारी नहीं होती तो वो चुपचाप गलत जगह जाकर डॉक्टर की सलाह गर्भपात करवा लेती है, ऐसे में उसे नुकसान हो सकता है, जैसे इन्फेक्शन हो जाना, बहुत खून बहना, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है, इसलिए सही जानकारी जरूरी है। अगर लड़की को सही सलाह और सुरक्षित इलाज मिले तो ऐसे हालात से बचा जा सकता है।
0: ठीक कहा आपने। अब एक दूसरी समस्या पर आते हैं। आजकल किशोरों में यौन संक्रमण और HIV जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है।
1: किशोरावस्था में शरीर और मन में कई बदलाव आते हैं, वे बहुत ही नई बातों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें जरूरी जानकारी नहीं मिलती, जैसे कि सुरक्षित यौन संबंध क्या है या कॉन्डम का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो वह कभी कभी ऐसे काम कर सकते हैं जो सेहत के लिए ठीक नहीं होते हैं। HIV और बाकी यौन संक्रमण असुरक्षित यौन संबंधों से फैलता है। अगर किशोरों को ये नहीं पता कि इन बीमारियों से कैसे बचा जाए, तो वह अपनी सेहत को खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि उन्हें खुलकर सही और साफ जानकारी दी जाए।
0: सेहतिया जी, हमने किशोरों की शारीरिक सेहत और यौन स्वास्थ्य की बात की है, लेकिन एक बात जो अक्सर पीछे छूट जाती है वो है मानसिक स्वास्थ्य। आजकल किशोरों में डिप्रेशन, चिंता और तनाव की दिक्कत क्यों बढ़ रही है?
1: देखिए, किशोर नए माहौल में जाते हैं, दोस्त बनाते हैं, पढ़ाई का दबाव होता है, शरीर में बदलाव आता है, और ऊपर से समाज की उम्मीद की तू लड़का है रो नहीं सकता, तू लड़की है समझदारी से चल, ये बातें दिमाग पर बोझ डालती हैं। कोई लड़का या लड़की किसी बात को लेकर परेशान है, लेकिन उसे बोलने की इजाज़त नहीं है, तो क्या होगा, सब कुछ अपने अंदर छुपाएगा। धीरे धीरे ये चीजें तनाव, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन की वजह बन सकती है। कई बार किशोर रिश्तों को लेकर डरते रहते हैं और कोई उनकी बात नहीं सुनता, उल्टा लोग कहते हैं कि चुप रह, ऐसी बातें मत कर, इसलिए किशोर को सुनने और समझने की जरूरत है। अगर वो मदद लेते हैं तो वो कमजोर नहीं है, एक समझदारी वाला काम है। स्कूलों में काउंसलर हो, घर में प्यार से बात हो और हेल्थ सेंटर में उचित सलाह मिले, तो बहुत कुछ सुधर सकता है।
0: किशोरों के सामने बहुत सवाल होते हैं, जैसे शरीर में हो रहे बदलाव, रिश्तों की समझ और सही गलत का फर्क। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे वे अपने फैसले समझदारी से ले सके?
1: सबसे बढ़िया तरीका है कि बच्चों को समग्र यौन शिक्षा दी जाए। अब नाम सुनकर कुछ लोग सोचते होंगे इसमें सिर्फ सेक्स की बातें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें बच्चों को ये समझाया जाता है कि उनका शरीर कैसे बदलता है, उनके अधिकार क्या होते हैं और रिश्तों में कैसी समझदारी और जिम्मेदारी से फैसले लेने चाहिए। जैसे अगर किसी लड़की को स्कूल में बताया जाए कि पीरियड्स बिल्कुल सामान्य चीज है और इसे लेकर शर्माने की जरूरत नहीं है, या किसी लड़के को सिखाया जाए कि अगर कोई न कहे तो उसे मानना चाहिए, तो दोनों आगे चलकर ज्यादा समझदारी और इज्जत से रिश्ते निभाएंगे।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, किशोरों को सही जानकारी और सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या गर्भ से बचने के लिए उपाय यानी गर्भ निरोधक की जानकारी भी दी जानी चाहिए?
1: एकदम दी जानी चाहिए। जब कोई किशोर या किशोरी यौन संबंध के बारे में सोचने लगे तो उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी देना बहुत जरूरी है। गर्भ निरोधक साधन इस जानकारी का अहम हिस्सा है। अगर किसी को कुछ पता ही नहीं हो तो वो किसी रिश्ते में शारीरिक रूप से जुड़ जाए, फिर अगर अनचाही प्रेगनेंसी हो जाए तो उसकी पढ़ाई, करियर, पूरा भविष्य बिगड़ सकता है, उस लड़की की सेहत पर भी खतरा पड़ सकता है। अब अगर पहले से उसे पता हो कि कॉन्डम क्या होता है, गर्भ निरोधक गोली क्या होती है, कैसे काम करती है, या फिर इमरजेंसी पिल कब लेनी चाहिए, इन बातों की जानकारी से फैसला समझदारी भरा होता है।
0: लेकिन एक बात बताइए सिहतिया जी, कुछ लोग कहते हैं कि अगर किशोरों को ये सब सिखाया बताया वे गलत रास्ते पर ना चल पड़े।
1: यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। जानकारी देना कोई गलत रास्ता दिखाना नहीं होता है, बल्कि समझदार और जिम्मेदार बनाना होता है। अगर किशोरों को कुछ बताया ही नहीं गया तो वे कहीं और से, इंटरनेट या दोस्तों से अधूरी या गलत जानकारी लेकर उलझ सकते हैं। लेकिन अगर स्कूल, घर या हेल्थ सेंटर में खुले मन से बात हो तो वे खुद और दूसरों को भी सुरक्षित रख पाएंगे।
0: सिहतिया जी, आपने बताया कि किशोरों को सही जानकारी और सही माहौल देना जरूरी है, लेकिन क्या सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा ही पहल हुई है?
1: बिल्कुल जी, सरकार ने इस पर काफी काम किया है। देखिए, एक योजना है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RKSK। इसके तहत किशोरों को सेहत, पोषण, मानसिक तनाव, यौन स्वास्थ्य और नशे से बचाव जैसी चीजों पर जानकारी दी जाती है।
0: आखिर इस योजना में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? यदि कोई किशोर या किशोरी हेल्प लेना चाहे तो उसके पास क्या क्या विकल्प होते हैं?
1: RKSK बहुत ही काम की चीज है। सरकार ने इसे खास तौर पर 10 से 19 साल के किशोरों के लिए शुरू किया है। इस योजना के कई हिस्से हैं। पहला है किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक। ये सरकारी अस्पतालों में बनाए गए हैं जहां किशोर अपनी समस्याएं खुलकर डॉक्टर या काउंसलर से कह सकते हैं। क्लिनिक में उन्हें उचित सलाह मिलती है। दूसरा है अनुपूरण कार्यक्रम। इसके तहत लड़के और लड़कियों को हफ्ते में एक बार आयरन की गोली दी जाती है ताकि उनमें खून की कमी न हो। तीसरा है सहकर्मी शिक्षक योजना। इसमें गाँव के ही कुछ लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने जैसे बाकी बच्चों को सेहत के बारे में बता सके।
0: अच्छा सेहतिया जी, ऐसा क्या है?
1: हाँ, अब जैसे मेरे गाँव की है, वो कक्षा 2 में पढ़ती है। RKSK से जुड़ने के बाद सीमा अपनी सहेलियों को मासिक धर्म, साफ सफाई और सुरक्षित यौन व्यवहार पर खुलकर बात करना सिखाती है। जानकारी देती है। सहेलियां भी अपनी बात बिना झिझके सीमा से साझा करती हैं। चौथा है मासिक धर्म स्वच्छता योजना। इसमें सरकार सैनिटरी पैड्स खरीदने के लिए पैसे देती है ताकि गांव की लड़कियां साफ सफाई से पीरियड संभाल सकें। पहले कई लड़कियां कपड़े का इस्तेमाल करती थी जिससे इन्फेक्शन हो जाते थे, अब ये स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। RKSK सिर्फ आम किशोर के लिए ही नहीं बल्कि LGBTQ बच्चों जैसे लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर के लिए भी है। डॉक्टर ANM काउंसलर सबको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वह सभी की मदद बिना भेदभाव के कर सके।
0: सिहतिया जी, अगर RKSK जैसे प्रोग्राम हर गांव, हर स्कूल तक पहुंच जाएं, तो किशोर सिर्फ तंदुरुस्त नहीं होंगे बल्कि कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे।
1: देखिए जी, एक और बढ़िया योजना है अर्श। इसका मतलब है एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, यानी किशोरों को उनकी उम्र के हिसाब से शरीर और सेहत से जुड़ी जरूरी बातें समझाना, जैसे कि शरीर में बदलाव क्यों होते हैं, पीरियड्स और यौन व प्रजनन से जुड़ी बातें क्या हैं। इन बातों को धीरे धीरे प्यार से खुलकर समझाया जाता है।
0: ये तो बहुत ही बढ़िया बात है सिहतिया जी।
1: हाँ, अब सरिता की आप बीती आपको सुनाता हूँ। 14 साल की सरिता पढ़ाई में बहुत तेज है। पहले जब कोई पीरियड्स या शरीर के बदलाव की बात करता था तो सरिता और उसकी सहेलियां नजरें चुराने शुरू कर देती थी, शर्मा जाती थी। फिर एक दिन गांव में RKS की योजना के तहत किशोर स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। उस दिन ANM दीदी भी आई। उन्होंने लड़कियों से प्यार से बात की, बोली कि पीरियड्स आना कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो शरीर का एक सामान्य हिस्सा है। फिर उन्होंने बताया कि कैसे साफ सफाई रखनी है, कौन सी आदतें अपनानी है। उस दिन की बातें सरिता के दिल और दिमाग में घर कर गयी। अब सरिता खुलकर बोलती है, अपनी सहेलियों को भी समझाती है।
0: बिल्कुल सहेतिया जी, जब कोई इतनी गंभीर बात हो खासकर सेहत को लेकर, तो बात खुलकर ही करनी चाहिए। इसमें डर और शर्म करके अपना ही नहीं दूसरों का भी नुकसान होता है।
1: सरिता की सहेली गीता कई दिनों से थकी सी रहती थी, कुछ खाने का मन नहीं करता था, चक्कर आ जाते थे। फिर वह आंगनवाड़ी केंद्र गई और वहाँ मौजूद ANM रेखा दीदी ने गीता से बात की, फिर उसकी जांच करवाई। पता चला कि उसे खून की कमी यानी एनीमिया है। अगर समय रहते पता न चलता तो परेशानी बढ़ सकती थी, लेकिन समय पर इलाज मिला और गीता स्वस्थ हो गई।
0: मतलब ये योजना सच में जमीन पर असर कर रही है।
1: और सुनिए, सबसे प्रेरणादायक बात तो ये है कि पास के गाँव की रीना की कहानी। रीना बहुत होनहार लड़की थी। 8वीं में पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा अंक लाए थे उसने, लेकिन जब वो 16 साल की हुई तो घर वालों ने उसकी शादी करवा दी। बोली, अब ज्यादा पढ़ाई का फायदा नहीं है, लड़की तो घर ही संभालेगी। रीना ने हिम्मत जुटाई और अपनी आंगनवाड़ी दीदी और स्कूल की शिक्षिका से बात की। उन्होंने उसके माता पिता को समझाया कि 18 साल के पहले शादी करना ना सिर्फ कानूनी गलत है बल्कि लड़की की सेहत और भविष्य के लिए भी नुकसानदेह है। उन्होंने यह भी बताया कि अब सरकार लड़कियों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति और स्किल ट्रेनिंग दे रही है। धीरे धीरे परिवार मान गया। आज रीना इंटर की पढ़ाई कर रही है और आंगनवाड़ी में छोटे बच्चों को पढ़ाने में मदद भी करती है।
0: अरे वाह सिहतिया जी, जब सही जानकारी सही समय पर सही तरीके से मिल जाए तो किशोर अपने फैसले खुद लेने लगते हैं।
1: किशोर छोटे बच्चे नहीं होते और ना ही वो पूरी तरह बड़े हो जाते हैं, वे बीच का सफर तय कर रहे होते हैं। ऐसे में उन्हें सुना जाना और साथ दिया जाना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कहा सिहतिया जी। दोस्तों, ये ठान लें कि हम किशोरों को टोकेंगे नहीं, उन्हें समझाएंगे, सुनेंगे और उनका साथ देंगे, क्योंकि जब जानकारी सही होगी, सोच खुलेगी, तभी सेहत भी अच्छी होगी। इसी उम्मीद के साथ मुझे इजाजत दीजिए, मुझे अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई में। तब तक के लिए सुनते रहिए, फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले एपिसोड में। पर जाने से पहले अपनी सेहत की शपथ लेते हैं, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजना का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी सेहत के लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
0: बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही तो लाभ कई। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। धन्यवाद।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
2: कॉल 8826213131।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था, जिसके बाद सरकार ने अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई निर्धारित की थी। सरकार ने करदाताओं को भी सलाह दी है कि वे समय रहते ही अपील दायर कर दें और अंतिम तिथि का इंतजार न करें। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सोशल मीडिया पर वायरल उस फर्जी नोटिस का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि निजी पेट्रोलियम कंपनियां विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के लोगों वाले एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बेच रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में कॉरपोरेशन ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और निगम ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए भी गंभीर खतरा है। विश्व के कई नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। जर्मनी विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा।
3: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
5: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। एक बार फिर से मैं आनंद हाजिर हूँ लेकर आपका फेवरेट प्रोग्राम, जिसको आप सुनते हैं हमेशा मुरादाबाद 89.6 पर। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, अगर आप अपनी सोच बदलोगे तो हमारा समाज और हमारा देश कैसे तरक्की करेगा, ये आप और मैं सोच भी नहीं सकते। और आज इस प्रोग्राम को लेकर मैं अकेला हाजिर नहीं हूँ, मेरे साथ इस प्रोग्राम में मेरा साथ दे रही है मेरी प्यारी सी दोस्त प्राची, प्राची बहुत बहुत अगेन स्वागत।

0: थे स्टूडियो में और हमारे प्रोग्राम में आपका स्पेशली स्वागत है। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो, तो आपका भी स्वागत है इस प्रोग्राम में।
1: धन्यवाद
0: जी। प्राची कैसा लग रहा है, पहले तू बताओ हमारे प्रोग्राम का नाम कैसा लगा तुम्हें?
1: नाम तो बहुत अच्छा, और ऐसा लगता है कि ये हमारे श्रोताओं को सोच बदलने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित करेगा।
0: एब्सोल्युटली, इसीलिए हमने अपने युवाओं को ध्यान में रखते हुए, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को, अपने सारे जितने भी हमारे लिसनर हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को डिजाइन किया है, सोच बदलो। और मुझे लगता है कि आज के जमाने में ना लोगों को सोच बदलने की बहुत जरूरत है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: तो दोस्तों, मैं और प्राची इस प्रोग्राम में काफी सारी बातचीत करेंगे, और आज का हमारा स्पेशल मुद्दा है वो ये है कि बता दें या फिर प्राची थोड़ा सा ब्रेक लें अभी? क्या लगता है आपको, ब्रेक लेना चाहिए या श्रोताओं को बताना चाहिए?
1: मुझे लगता है कि हमें हमारी श्रोताओं को बता देना चाहिए।
0: अच्छा, ताकि वो कहीं और जाए ना, है ना? बहुत बढ़िया। तो प्राची, आज हम बात करने वाले हैं अपने श्रोताओं से ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में। कई बारी होता है ना, तुमने देखा होगा बहुत सारी एप्स एंड वेबसाइट्स आ जाती हैं जहां पर हमें दिखाई देता है कि भैया आप इतने पैसे लगाओ आपको उसके डबल मिल जाएंगे। बहुत सारी ऑनलाइन एप्लीकेशंस आ गई हैं आजकल मार्केट में, समझ ही नहीं आता ओरिजिनल कौन सी है, लोकल कौन सी है।
1: हाँ, ये तो आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है, और मुझे लगता है कि हमें इस पे बात करने की बहुत बहुत जरूरत है।
0: एब्सोल्युटली, स्पेशली इस डिजिटल टाइम में ना।
1: हाँ, बिल्कुल, जब तो, हर किसी का रुख डिजिटल की तरफ पड़ा है।
0: करेक्ट। तो श्रोताओं, आप कहीं मत जाइए, प्राची और आनंद के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो, और आपके लिए अभी एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद वापस आएंगे मैं और प्राची, तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।

0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने शहर के सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पर। आनंद और प्राची के साथ आप सुन रहे हैं प्रोग्राम
1: सोच बदलो श्रोताओं।
0: बिल्कुल, और सोच बदलेगी तभी हमारा समाज बदलेगा।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने।
0: तो आज का हमारा मुद्दा है श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में। अच्छा प्राची, कई बार तुम्हारे पास भी ऐसे बहुत सारे लिंक्स आते होंगे फ्रेंड्स के थ्रू, या कुछ एड्स आ जाती होंगी व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, कि आप जो है ये ऐप डाउनलोड करो, इसमें आप इतने पैसे लगाओगे तो आपको इतने मिल जाएंगे, या फिर अगर आप इतने रुपए जमा करते हो तो इसका इतना मिल जाएगा आपको। इस तरीके के बहुत सारे ऐप्स आते हैं, बहुत सारे लिंक्स आते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स पे हमें दिखाया जाता है। ऐसा कभी तुम्हारे सामने कोई सीन हो आया हो कभी?
1: हाँ हाँ, मेरे पास तो ऐसे बहुत आते हैं और मुझे लगता है कि सभी के फोन पे आते हैं और हमें इससे सावधान रहने की बहुत जरूरत है।
0: करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मैं आपको कुछ बताता हूँ कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड कैसे काम करता है। सोशल मीडिया एड्स व्हाट्सएप से ये संपर्क करते हैं, उसके बाद हाई रिटर्न का आपको लालच देंगे। जैसे अगर आप 10,000 जमा करोगे तो आपको 1,00,000 रुपया देंगे। उसके बाद ये फेक एप्स और कुछ वेबसाइट जो है बनाते हैं जिसपे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। शुरुआत में आपको ये फेक पोर्टफोलियो दिखाते हैं अपना, मतलब एक प्रोफाइल बनाते हैं फेक जिसपे आपको बड़ा जेन्युइन लगेगा सारी चीजें। एंड उसके बाद ये एक बड़ा अमाउंट जैसे ही मतलब आप उनके पास डालो, सपोज आपने 10,000 डाला, उन्होंने बोला हम आपको 1,00,000 देंगे इसके बदले में, आप 10,000 जमा करोगे, विड्रॉल का ऑप्शन ही बंद हो जाएगा वहां से। तो इस तरह की जो चीजें ये लोग डिजाइन करते हैं, इसे हम कहते हैं ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड।
1: बिल्कुल आनंद, आपने बिल्कुल ठीक जानकारी दी हमारी श्रोताओं को। और ये इतना जेन्युइन अपना पोर्टफोलियो दिखाते हैं कि बहुत अपने बहुत लोगों के फीडबैक भी रखते हैं, तो जैसे देखकर जो हम होते हैं हमारे मन में ऐसा हमें लगता है कि ये बहुत जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, पर अक्सर ऐसा होता नहीं है।
0: एग्जैक्टली श्रोताओं, इसी पर और बहुत सारी बातचीत मैं और प्राची करते रहेंगे, लेकिन आइए जरा एक खास इन्फॉर्मेशन आपको सुनवाते हैं इसी प्रोग्राम के अंतर्गत। आप सुन रहे हैं सोच बदलो, सोच बदलेगा तो समाज बदलेगा, और आज हम सोच बदलो प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में। क्योंकि देखिए, अगर हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे हर चीज पे, अगर हम लगेगा कि यार डिजिटली करना है तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है। इसीलिए सिर्फ सोच को बदलने की जरूरत है, क्योंकि एक छोटी सी आपकी थॉट प्रोसेस आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। आप सोच बदलो, आपकी चीजें बदल जाएंगी, कहीं ना कहीं अल्टीमेटली कनेक्टेड है चीजें। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से सोच बदलने का क्या सीन है, तो मैं ये भी आपके लिए यहां पर क्लियर कर देता हूं। क्या होता है ना, हमारी सोच ये हो गई है आज के समय में प्राची, कि हमें हर चीज बैठे बिठाए करनी है, हर चीज हमें अपने फोन से करनी है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने।
0: हमें शॉपिंग करनी है अपने फोन से करनी है, हमें सब्जियां मंगानी है अपने फोन से मंगानी है, हमें ना हर चीज बैठे बिठाए चाहिए प्राची। तो कहीं ना कहीं हमारी सोच ही तो है जो हम ऑनलाइन पूरी तरीके से हम जो है निर्भर हो गए हैं। हाँ। है ना, तो कहीं ना कहीं दोस्तों, बस कहने का मुद्दा सिर्फ इतना सा है मेरा और प्राची का आज इस प्रोग्राम के जरिए, कि अगर हम अपनी सोच को बदले, हमें क्यों सोचना है कि हमें एक का डबल चाहिए। भाई अगर हमें इस तरह की कोई पॉलिसी देखनी है तो हम फिजिकली अपने पैसे को सेफ और अच्छी जगह लगाएंगे ना, हम अपने आसपास में जाएंगे, बहुत सारे इंश्योरेंस हैं, बहुत सारे बैंक हैं हमारे नियर बाय, हम वहां जाके कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तमाम ऑप्शन हैं। ऑनलाइन ही क्यों करना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऑनलाइन मत करिए श्रोताओं, ऑनलाइन करिए बहुत जरूरी है, लेकिन सोच समझ के सही चीजों का इस्तेमाल करिए ना।
1: हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने आनंद।
0: तो इसी पर देखिए, हमारे पास एक और खास बातचीत है जो स्पेशली हम अभी आपको सुनवा रहे हैं, शायद आपको कुछ समझ में आ जाए। तो मैं और प्राची लौटेंगे बस इसी देर में, जरा ये सुनिए, उसके बाद हम

0: डाला, मतलब पैसे लगाओ और 10 मिनट में दोगुने करके वापस पाओ। हाँ जी,
1: आखिर निवेश घोटाला क्या है? श्रोताओ, निवेश घोटाला वह धोखाधड़ी है जिसमें ठग बहुत ज्यादा मुनाफे का लालच देता है, कहते हैं कोई जोखिम नहीं है, गारंटी रिटर्न का वादा करते हैं। वह लोगों को फर्जी ट्रेडिंग ऐप, नकली वेबसाइट, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए निवेश के लिए उकसाते हैं। चलिए आपको एक ड्रामे के जरिए मैं सारी बातें समझाने की कोशिश करता हूँ। अरे, इस ग्रुप में लिखा है हर दिन 5% मुनाफा बिना किसी जोखिम के। इतना मुनाफा? कहीं धोखा तो नहीं? नहीं यार, देखो स्क्रीनशॉट भी है, सब लोग मुनाफा कमा रहे हैं। पहले 10,000 लगाए हैं, अरे वाह, ऐप में तो मुनाफा दिखाई दे रहा है, अब तो 50,000 रुपए लगा देता हूँ। मैं पैसे निकालना चाहता हूँ, निकासी से पहले वेरिफिकेशन फीस जमा करनी होगी। कुछ देर बाद ऐप गायब हो जाता है और समझ जाता है कि वह निवेश घोटाले का शिकार हो चुका है। निवेश घोटाले इतने खतरनाक क्यों हैं? श्रोताओ, निवेश घोटाले इसलिए खतरनाक हैं क्योंकि ये लालच का फायदा उठाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी फंस जाते हैं, लोग अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देते हैं, कई मामलों में रिटायरमेंट का पैसा चला जाता है, कर्ज लेकर निवेश किया जाता है, परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। निवेश घोटाले से रिलेटेड चलिए मैं आपको बताता हूँ रेड फ्लैग। गारंटेड मुनाफा दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि शायद यहाँ पर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। बिना जोखिम के निवेश, हाँ जी, आप कहीं पर अगर निवेश कर रहे हैं तो पहले वहाँ पर देखिए कि कितना जोखिम है कितना नहीं। आज आखिरी मौका है, जब आपके साथ या फिर आपसे कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि अभी निवेश करो, आज आखिरी मौका है, तो आप समझ सकते हैं कि शायद आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अनजान व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप, किसी भी वजह से, किसी भी कारण, किसी भी ऐसे ग्रुप में अगर आप ऐड होते हैं और ग्रुप में ऐड होने के बाद आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ऐप या कंपनी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। हाँ, अगर आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और वहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। क्या सच में वो ऐप वेरीफाइड है या फिर नहीं है, इन बातों का ध्यान भी रखना होता है। याद रखिए, असली निवेश में जोखिम होता है, ज्यादा मुनाफा मतलब ज्यादा जोखिम। निवेश करने से पहले क्या करें? निवेश से पहले ये बातें जरूर जांचें कि कंपनी या प्लेटफॉर्म सरकारी रजिस्टर्ड में दर्ज है या फिर नहीं है। किसी अधिकृत वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। इंटरनेट पर रिव्यू और जानकारी खोजें। अनजान लोगों बातों में ना आए। कभी भी बैंक लॉगिन, ओटीपी, यूपीआई पिन साझा बिल्कुल ना करें। बुजुर्गों और नए निवेशकों के लिए मैं एक संदेश देना चाहूँगा। श्रोताओं, निवेश घोटालों के शिकार अक्सर बुजुर्ग, रिटायर्ड कर्मचारी, पहली बार निवेश करने वाले लोग होते हैं। इसलिए परिवार में निवेश से पहले चर्चा करें, जल्दी मुनाफे के लालच से बिल्कुल बचें, शक हो तो नहीं कहना सीखें, ठगी हो जाए तो क्या करें। अगर आपके साथ निवेश घोटाला हो गया है तो तुरंत कॉल करें 1930 पर, शिकायत दर्ज करें www.cybercrime.government.in पर। याद रखिए, जितनी जल्दी शिकायत उतनी ज्यादा मदद मिलने की संभावना। साइबर सुरक्षा से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर विजिट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ सुरक्षित निवेश के 5 सुनहरे नियम। गारंटेड मुनाफा सबसे बड़ा धोखा, अनजान प्लेटफॉर्म बड़ा खतरा, जल्दबाजी मतलब नुकसान, जानकारी साझा करना गलती, समझदारी सबसे बड़ी सुरक्षा। जाते जाते श्रोताओं, मैं आपसे इतना चाहूंगा कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है और एक गलत फैसले से चला भी जाता है। लालच नहीं, जानकारी के साथ निवेश करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। हाँ जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ काम की जानकारियां भी देता है।
2: तो श्रोताओं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है आरजे राज के द्वारा जो आपको दी गई है, आई एम श्योर ये आपके काम की होगी और आपको जरूर इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्यों प्राची?
3: हाँ बिल्कुल,
2: और मुझे लगता है कि यही सारी चीजें हैं जो हमें अपनी सोच में परिवर्तन करनी है। जब हम अपनी सोच बदलेंगे तो हम इन चीजों के शिकार होने से भी कहीं हद तक बच सकते हैं। सही कहा ना?
3: बिल्कुल आपने सही कहा, और हमारा जो ये कार्यक्रम प्रसारित करने का जो उद्देश्य है वो भी तभी पूरा होगा।
2: एब्सोल्युटली, तो श्रोताओं हमारा भी उद्देश्य है एक म्यूजिक प्ले करने का। आप सुन रहे हैं आपके शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, आनंद और प्राची के साथ एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद हम पुनः लौट कर आएंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। और इससे पहले कुछ और खास और महत्वपूर्ण जानकारियां

0: आपके साथ साझा करेंगे इसी प्रोग्राम के अंतर्गत। आपके हिम्मत जाइए, सुनते रहिए आरजे आनंद और प्राची को।
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
4: ये पर

0: बहुत ही खूबसूरत गीत श्रोताओं भी आपने एंजॉय किया। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके इस शहर के पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे आनंद और
1: प्राची के साथ।
0: क्या बात है प्राची, आज का हमारा प्रोग्राम लगभग अब समाप्ति की ओर है। आज हमने ढेर सारी बातचीत करी अपने श्रोताओं से। आज हम बात कर रहे थे ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में और मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि हमारे श्रोताओं ने काफी एंजॉय भी किया होगा और उनको काफी जानकारियां भी मिली होंगी इस प्रोग्राम के जरिए।
1: बिल्कुल किया है कि आपने बताया भी, सारी इन्फॉर्मेशन आपने श्रोताओं को बिल्कुल सटीक और सरल भाषा में दी।
0: एब्सोल्युटली, और हमारा मकसद ये है कि हमारे जो
1: किया है कि आपने बताया भी, सारी इन्फॉर्मेशन आपने श्रोताओं को बिल्कुल सटीक और सरल भाषा में दी।
0: एब्सोल्युटली, और हमारा मकसद ये है कि हमारे जो सामुदायिक है, हमारा जो कम्युनिटी है मुरादाबाद के, जो आसपास के क्षेत्र के लोग हमें सुन रहे हैं, उनको सही और अच्छी जानकारी मिले। देखिए, एंटरटेनमेंट के साथ साथ सही जानकारियों का होना भी बहुत जरूरी है
1: और हमारा जागरूक रहना भी जरूरी है।
0: सही कहा आपने। तो प्राची, कुछ टिप्स हैं मुझे लगता है कि जो हमें अपने श्रोताओं को बता देनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं रेड फ्लैग्स, अगर ये दिखे तो उनको रुक जाना चाहिए। तो प्राची, वो कौन कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिनको

0: देखते ही अगर ये सिम्टम्स नजर आए तो हमें रुक जाना चाहिए तुरंत। प्लीज बताओ जरा हमारे श्रोताओं को।
1: हाँ बिल्कुल, तो हमारी श्रोताओं आपके लिए ये जानकारी है कि अगर आपको ये रेड फ्लैग्स दिख जाते हैं तो आपको तुरंत रुक जाने की जरूरत है। अगर वो गारंटेड प्रूफ प्रॉफिट या रिस्क फ्री रिटर्न की बात करते हैं तो ये भी एक रेड फ्लैग हो सकता है। कृपया अच्छे से आप उसकी जांच करें।
0: बिल्कुल,
1: जल्दी इन्वेस्ट करने का प्रेशर, अगर वो कंपनी की साइड से आपको बहुत जल्दी इन्वेस्ट करने का प्रेशर आ रहा है, एक कॉल्स आ रही है एक के बाद एक और आपको लग रहा है ये जेन्युइन नहीं है, क्योंकि जो जेन्युइन कंपनी होती है वो इतना बार बार आपको
0: प्रेशराइज
1: नहीं करती है।
0: करेक्ट करेक्ट।
1: और अगर वो व्हाट्सएप और ये टेलीग्राम ग्रुप, खासकर मैं बताना चाहूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे तो उनका इतना बड़ा नेटवर्क है,
0: और मोस्टली जो पीपल्स हैं जो न्यू जनरेशन हैं वो सारे लोग टेलीग्राम पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। आई थिंक
1: इतने ज्यादा फेक प्रोफाइल है, आपको उनसे सजग रहने की जरूरत है। और हाँ, अगर वो आपको पर्सनल बैंक अकाउंट में पैसा भेजने को कह रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। कृपया ऐसे अगर आपको सिम्टम साइंस नजर आते हैं तो आप सावधान रहें। और जाते जाते मैं आपको एक बात भी बताना चाहूंगी जरूरी, आप ये जरूर जांच कर लिए कि वो जो कंपनी है वो सीबी से रजिस्टर्ड है या नहीं,
0: मतलब वेरिफिकेशन उसका है या नहीं, करेक्ट तरीके से वेरीफाई है या नहीं।
1: जी
0: बिल्कुल प्राची, थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस इन्फॉर्मेशन, एंड आई एम रियली श्योर जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम के जरिए उनको जरूर ये इन्फॉर्मेशन काम में आएंगी, और मुझे लगता है कि आनी भी चाहिए। इनफैक्ट हम लोगों को भी चीज ध्यान में रखनी है यार, बिकॉज हम लोग भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया चलाते हैं, नो डाउट, मतलब भले हम अपना टाइम हमारा फिक्स है बट हम यूज तो करते हैं यार।
1: हाँ, और कभी कभी तो हम लोग भी धोखा खा जाते हैं।
0: एब्सोल्युटली, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम तो उसके शिकार हो गए, आप ना हो, बट अगर आपको लगता है कि अगर आपके साथ कोई स्कैम हो गया है तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत 1930 पे कॉल करना है, 1930 पे आप कॉल करें, ये साइबर हेल्पलाइन का नंबर है या ये टोल फ्री नंबर है, आई रिपीट नंबर 1930, इस पे आप कॉल कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बैंक को तुरंत इन्फॉर्म करें अगर आपने किसी को अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी है और आपको लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो प्लीज अपने नजदीकी ब्रांच में जाके डेफिनेटली उनको इन्फॉर्मेशन दें कि आपने किसको क्या इन्फॉर्मेशन दी है। सो बस श्रोताओं, छोटी छोटी बातें हैं, इनका ख्याल रखिए और बाकी अपना भी ख्याल रखिए। अभी हमारे जाने का समय हो रहा है तो मैं और प्राची आपसे लेते हैं इस प्रोग्राम से इजाजत अनुमति, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है
1: सोच बदलो।
0: जी हाँ, सोच बदलेगी तो चीजें अपने आप बदल जाएंगी। फिलहाल आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो,
1: बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।
0: बाय बाय, टेक केयर।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन।
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, मैं हूँ सुजाता स्मार्ट एनजीओ से, और मैं हूँ इस समय परिवार कल्याण विभाग में। मेरे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, एडिशनल डायरेक्टर आरसीएच यूपी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
5: धन्यवाद सुजाता जी, और मैं स्मार्ट एनजीओ का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, और विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि आज इस रेडियो पे जितने भी हमारे श्रोतागण हमको सुन रहे हैं, क्योंकि आज उनको एक हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं।
4: सर, सबसे पहले तो हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि टीकाकरण क्या होता है और ये बच्चों और उनके परिवारों के लिए इतना जरूरी क्यों माना जाता है।
5: देखिए, टीकाकरण बहुत ही जरूरी होता है, और इसलिए भी जरूरी होता है कि माँ के पेट से जो हमारा जब बच्चा आता है तो उसके पास जो रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है वो धीरे धीरे वीन ऑफ होती है, यानी धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि माँ के पेट से जो मिलता है तो लगभग 3 से 6 महीने में धीरे धीरे वीन ऑफ हो जाती है। कुछ चीजें ऐसी भी जरूरत होती हैं जिसमें जन्म के समय ही हमको बच्चों को देने की जरूरत पड़ती है टीकाओं को, उस पर हम लोग बाद में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और जरूरी इसलिए भी है कि जब एक बार नए वातावरण में हमारा बच्चा आता है तो जब तक माँ के गर्भ में रहता है वो सुरक्षित रहता है माँ के अपने प्रतिरोधक क्षमता की वजह से, और जब वातावरण में आता है तो आप देखिए ढेर सारी बीमारियां चारों तरफ वातावरण में फैली हुई हैं, तो उन बीमारियों से लड़ने के लिए जरूरी है।
4: सर, अगर हम भारत की बात करें तो बच्चों के लिए जन्म से लेकर शुरुआती वर्षों तक कौन कौन से जरूरी टीके लगाए जाते हैं।
5: बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और मैं इस सवाल के जवाब में ऐसा कहूंगा कि जैसे ही बच्चा हमारा जन्म लेता है, चाहे किसी भी स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर हो, जिला अस्पताल में हो, महिला हॉस्पिटल में हो, या फिर किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो, वहाँ जन्म के समय ही हमारी जो स्टाफ नर्सेज हैं या फिर हमारी एएनएम बहुएं हैं, उनको बच्चों को जन्म के समय बीसीजी का टीका लगाते हैं, ओरल पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं और हेपेटाइटिस बी का टीका लगाते हैं। तत्पश्चात 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पे पेंटावेलेंट की वैक्सीन लगाई जाती है, साथ में रोटा वायरस के लिए डायरिया से बचने के लिए हम लोग वैक्सीन पिलाते हैं, और उसके साथ साथ ओपीवी की वैक्सीन भी पिलाई जाती है। और इन बच्चों को हम फिर 10 सप्ताह पे 14 सप्ताह पे टीके लगाते हैं। 9 माह का पूरा होने पे हम बच्चों को मीजस और रूबेला से बचने के लिए एक टीका लगाते हैं, और साथ में आप जानते हैं पूरे पूर्वांचल में जैपनीज इंसेफ्लाइटिस की बीमारी काफी ज्यादा प्रचलित है, जो अब काफी कुछ कंट्रोल में आ गई है पिछले 6-7 सालों से, जो हम लोगों ने जेई का टीका लगाया जिसकी वजह से अब इनसे होने वाली मृत्यु दर बिल्कुल शून्य हो चुकी है, उनको भी लगाते हैं, और साथ में विटामिन ए का हम लोग खुराक पिलाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग फ्रैक्शनल आईपीवी लगाते हैं जो पोलियो से बचाव करता है। जब हमारा बच्चा 16 से 24 माह का हो जाता है तब हम लोग डीपीटी की प्रथम बूस्टर डोज देते हैं, और साथ में मीजल्स रूबेला का बूस्टर डोज और जेई की सेकेंड डोज दी जाती है। बच्चा हमारा जब 5 साल से 6 साल के बीच में आता है तो डीपीटी वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाती है, और बच्चे को जब हमारा 10 साल के किशोर और किशोरियां और 16 साल के होते हैं तो TD10 और TD16 की वैक्सीन लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त गर्भवती माताओं को भी हम लोग TD का वैक्सीन लगाते हैं।
4: अच्छा, गर्भवती महिलाओं की अगर बात हो रही है तो उनके लिए ये टीका कितना जरूरी है, और गर्भावस्था के दौरान कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं गर्भवती महिलाओं को।
5: देखिए, गर्भावस्था के दौरान तो जो टीके लगाए जाते हैं के अतिरिक्त मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि गर्भावस्था के दौरान माँ को खून की जो कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, उसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग मुफ्त में हम लोग आयरन फोलिक एसिड की गोलियां भी देते हैं गर्भवती माताओं के लिए, और साथ में कैल्शियम की गोलियां देती हैं। टीकों की बात करें तो TD का टीका हम लोग लगाते हैं गर्भवती माताओं को, इससे माताओं को भी डिप्थीरिया जो आजकल ऊपर के उम्र में देखी जा रही है, डिप्थीरिया से बचाव होता है और साथ में टिटनेस से बचाव होता है। और जरूरी इसलिए भी है कि ये केवल गर्भवती माताओं को नहीं बचाता, बल्कि इससे जो हमारी एंटीबॉडीज माताओं के शरीर में डेवलप होती हैं, तो जब बच्चा हमारा पैदा होता है तो उस बच्चे के शरीर में भी ये रोग से बचाव की क्षमता आ जाती है।
4: अच्छा, क्या माँ को लगने वाले टीकों का असर बच्चे की सुरक्षा पर भी पड़ता है? इसे हमारे श्रोताओं को थोड़ा आसान तरीके में समझाइए सर।
5: देखिए, इस सवाल का जवाब हमने पिछले सवाल में भी आपको दिया, और आसान तरीके से ऐसा समझने की जरूरत है कि माँ से बच्चे के अंदर देखिए सारा सारा खून आता है, और उस खून जितना भी बच्चे के अंदर खून आता है उसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, जो आपको रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, प्लस बच्चे को ऑक्सीजन दिलाता है। तो माँ को जो भी टीका लगाएंगे आप, उस टीके में जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, रोग से लड़ने की क्षमता डेवलप होती है, वो बच्चों में आती है। तो आई थिंक वो बच्चा हमारा कुछ दिनों तक सुरक्षित रहता है। उसके लिए फिर जरूरी है कि जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो UIP के तहत हम उन बच्चों को अलग अलग उम्र में, जो भी हमने शुरू में जिक्र किया, उन टीकों को लगाना जरूरी है।
4: सर, कई बार बच्चे का टीका किसी कारण से छूट जाता है, ऐसे में परिवार क्या करे? क्या बाद में भी छूटा हुआ टीका लगवाया जा सकता है?
5: बिल्कुल, बहुत जरूरी है। अगर आपसे शुरू में अगर टीका बच्चे को नहीं लगा पाते हैं तो हमको जरूरी है कि उस बच्चे को टीका जो भी उस उम्र के लिए ड्यू है उनको जरूर लगवा लेना चाहिए, ताकि बच्चों में रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो सके। और हर एक टीके का अपना एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के अतिरिक्त हर टीके का अपना एक डोज होता है जिसमें हम किस उम्र तक उन टीकों को लगा सकते हैं, ये हमारे पास नेशनल गाइडलाइन है, उस तहत लगाते हैं।
4: जब भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेकर कौन कौन सी पहल चल रही है और हमारे श्रोता किस तरह इसका लाभ उठा सकते हैं?
5: देखिए, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेके ऑलरेडी आप जानते हैं कि हम लोग जो टीका लगाते हैं, और इस टीका को जो लगाते हैं उसके लिए जो इकाई है वो सब सेंटर है, यानी उपकेंद्र है, जहां पे एक एनम होती है। उसके अतिरिक्त कम से कम ये 5 से 6 हजार की आबादी पे एनम होती हैं, और हर एक 1 हजार की आबादी पे हमारी आशाएं होती हैं जो मोबिलाइजेशन का काम करती हैं, और उसके अलावा आंगनबाड़ी हमारी वर्कर और आंगनबाड़ी सहायिकाएं होती हैं, वो भी 1 हजार की आबादी पर जो होती हैं, जो मोबिलाइजेशन करने में सहयोग देती हैं। तो ये हम लोग जो इस तरह से उपकेंद्र वाइज एक माइक्रो प्लान बनाते हैं, उस माइक्रो प्लान को हम लोग ब्लॉक लेवल पे संकलित करते हैं, और तत्पश्चात जिले लेवल का संकलन होता है। इस तरह से हमारी ये भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह से टीकाकरण अभियान चलाती है। किंतु यहां मैं आपको बता दूं कि हम लोग उत्तर प्रदेश में एक और चीज चलाते हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं है। शहरी क्षेत्रों में जो हमारे रोजमर्रा के काम करने वाले मजदूर हैं, चूंकि हम जानते हैं, और प्लस उसके अलावा जो मेड्स वगैरह काम करती हैं, इवन हमारे जो अपने एम्प्लॉयज हैं जो मंडे से लेकर सैटरडे तक आपके पास खाली नहीं रहते हैं, उनको हमने संडे की एक सुविधा दी है कि जितने भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी क्षेत्रों में बने हुए प्लस जिला अस्पताल हैं, उनमें मंडे से लेकर संडे तक प्रत्येक दिन ये टीका लगाया जा सकता है जब भी हमारे अस्पताल खुले होते हैं। तो ये एक सुविधा हमने उत्तर प्रदेश में अलग से मुहैया कराई है।
4: बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। आगे हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि कुछ परिवारों में टीकों को लेकर डर या गलत फहमियां होती हैं, जैसे बुखार आ गया, बच्चा रोने लगा या कमजोरी लग रही है। क्या इसके अलावा भी कोई भ्रांतियां हैं जो सामने आई हैं? ऐसे मामलों में लोगों को क्या समझना चाहिए?
5: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, और अब मैं देख रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश का अपना डाटा कहता है, काफी लोग इस भ्रांतियों से ग्रसित हैं, और ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको कोई समझाने का प्रयास नहीं किया गया या थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, इन लोगों में ये भ्रांतियां हैं। डेफिनेटली देखिए, अगर हम बच्चे को सुई लगा रहे हैं तो सुई का असर तो होगा, सुई लगेगा तो थोड़ा बहुत उस स्थान पे दर्द होगा, लालिमा आएगी, सूजन आएगा, हल्का फुल्का बुखार भी आ सकता है। तो इन चीजों से हमें डरना नहीं चाहिए, यही चीज हमें समझाने की जरूरत है। और सुई लगने के पश्चात जो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है, उसमें शरीर के अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं, उनका भी कभी कभी असर देखने को मिलता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। घर वालों की भ्रांतियां तो कई तरीके से हैं, लोग अलग अलग चीजों से मतलब हो जाते, जैसे कभी पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता था तो लोग कहते थे कि साहब नपुंसकता हो जाएगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। आज पोलियो ड्रॉप हमने

0: से मुक्ति पा ली है। 1994-95 पहली बार हम लोगों ने एक नेशनल लेवल पे वाइड स्तर पे हम लोगों ने ये प्रोग्राम चलाया था। सारे बच्चों को आज उन बच्चों के यहाँ भी परिवार बने हुए हैं, तो इसलिए ये भ्रांतियों से हमें दूर रहना चाहिए। अगर कहीं कोई भ्रांतियां हैं तो आपके समुदाय में प्रत्येक 1000 की आबादी पे हमारी आशा बहुएं हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं और सहायिकाएं हैं, उनसे आप लोग जरूर राय मशवरा कीजिए, और नहीं तो हर जगह टोल फ्री नंबर दिए होते हैं, उनमें आप सवाल जवाब कर सकते हैं।
1: सर, आजकल HPV जैसे टीकों की भी चर्चा हो रही है, क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं कि किशोरियों के लिए ऐसे टीकों का क्या महत्व है? क्या HPV टीकाकरण की आवश्यकता किशोरों में भी है?
0: HPV टीका इसलिए भी चर्चा हो रही है कि जो महिलाओं में गर्भाशय का कैंसर होता है वो वन ऑफ द लीडिंग कॉज है महिलाओं में मृत्यु का। दूसरे नंबर पे ये कैंसर है जिसमें इतनी ज्यादा मृत्यु होती है, और इस मृत्यु का जो कैंसर उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण है वो HPV का इन्फेक्शन है। और इस इन्फेक्शन की ज्यादातर चीजें आपको पता नहीं चलती हैं कि कब ये इन्फेक्शन आपको हो गया, क्या इसके सिम्टम्स है, ज्यादातर ये साइलेंट रहता है और 10 से 15 सालों के बाद धीरे धीरे इसका प्रकोप देखने को मिलता है। अब आप ये देखिए कि अगर हम किशोरियों को सही टाइम पे इस टीके को लगा देते हैं तो इस इन्फेक्शन से बचाव होता है, अल्टीमेटली हम इस कैंसर से हम इस बच्चियों को बचा सकते हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि क्या हम किशोर को भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। किशोरों में भी इस तरह की बीमारियां होती हैं जिनमें HPV वैक्सीन का बचाव होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये चीजें लिमिट करनी पड़ेंगी जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, और आने वाले दिनों में हो सकता है भारत सरकार इस पे सोचेगी तो हम किशोरों को भी ये टीका दे पाएंगे। अभी हमारा प्राइम लक्ष्य जो हमारे पास जो गाइडलाइन है, नेशनल गाइडलाइन, ये कहती है जो भी हमारी बच्चियां हैं 14 वर्ष कंप्लीट कर चुकी हैं और 15 से छोटी हैं, उनको हम एक डोज का टीका लगा रहे हैं और ये उनको लाइफ लाइन इम्यूनिटी देगा। और ये पूरे भारत वर्ष में ये टीके को लॉन्च 28 फरवरी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है।
1: सर, दूर दराज या कमजोर पहुंच वाले इलाकों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक टीकाकरण पहुंचाना कितना चुनौतीपूर्ण होता है और विभाग इसे कैसे संभालता है?
0: देखिए, अब ये बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं रह गया, हमारे पास मैपिंग है। हर जनपद में ब्लॉक लेवल पे, सब सेंटर लेवल पे हम चिन्हित हैं कि कोई अगर स्लम एरिया है वो चिन्हित है, जितने ईंट भट्टे हैं वो चिन्हित है, कोई नया कंस्ट्रक्शन साइट हो रहा वो चिन्हित है, और लगभग हर 3 से 6 महीने पे हम अपने इस माइक्रो प्लान को रिवाइज करते हैं। इन जगहों पे जहां दूर दराज के क्षेत्र हैं इनका हमने माइक्रो प्लान बना रखा है, और इनमें नियत दिवसों में हमारी ANM बहन जी जाती हैं और जाके वो टीका लगाती हैं। कुछ ऐसे दूर दराज इलाके हैं उनके लिए हम लोगों ने मोबाइल टीम की व्यवस्था कर रखी है, और ये मोबाइल टीमें जाती हैं पर्टिकुलर डेज पे, और ऑलरेडी इसकी सूचना हम पहले से उन जगहों पे रहने वाले निवासियों को दे चुके होते हैं, और इसलिए इस टीकों को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको सम्मिलित किए हुए हैं। अब कोई चुनौती नहीं रह गया ये हमारे लिए।
1: क्या सिर्फ बच्चों का टीकाकरण काफी है या परिवार के बाकी सदस्यों जैसे किशोरियों, गर्भवती महिलाओं का भी समय पर टीकाकरण जरूरी है?
0: देखिए, इसके बारे में अभी हम लोगों ने शुरू में मैंने चर्चा करके बताया, आपने देखा कि जो नेशनल हमारा शेड्यूल है उसके अंदर जन्म से लेके 16 वर्ष तक के बच्चों को टीका लगाया जा रहा है, जिसमें आपने फिर से एक बार दोहरा दूं मैं अब दर्शकों के लिए, जन्म के समय टीका लगाते हैं, फिर 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह पे टीका लगता है, फिर 9 महीने से लेके 12 महीने तक के बच्चों को टीका लगता है, ये एक ड्यूरेशन होता है, इस बीच में कभी भी आप टीका लगा सकते हैं, 16 से 24 माह के बीच में हम टीका लगाते हैं, 5 से 6 वर्ष के बीच में लगाते हैं, 10 वर्ष के और 16 वर्ष के किशोर किशोरियों को टीका लगाते हैं और गर्भवती माताओं को टीका लगाते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है।
1: आखिर में उन माता पिता और परिवारों के लिए आपका सबसे
0: टीका लगाते हैं और गर्भवती माताओं को टीका लगाते हैं तो ये बहुत ही जरूरी है।
1: आखिर में उन माता पिता और परिवारों के लिए आपका सबसे जरूरी संदेश क्या होगा जो किसी की कारण से अभी भी टीकाकरण को लेकर असमंजस में है?
0: देखिए, अब अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं एक बार फिर से स्मार्ट एनजीओ का धन्यवाद देना चाहूंगा, और मेरा आखिरी संदेश यह है कि बिना किसी संशय के आप टीकों पे विश्वास कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई भी संशय है तो आप अपने क्षेत्र में कार्य करने वाली आशा बहुएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती ANM बहन जी, आंगनवाड़ी सहायिकाओं, या उपलब्ध आपके जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां पे मेडिकल अफसर से आप बात करिए और अपने संशय को दूर करिए। बच्चों के लिए टीका बहुत जरूरी है क्योंकि ये टीका बच्चों में होने वाली मृत्यु को आधी से ज्यादा कम कर देता है। धन्यवाद,
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद,
4: कॉल 8826213131।
5: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा

हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो। मैं हूं स्मार्ट से सुजाता और आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, संचारी रोग, यानी ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। बदलते मौसम और बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए ये विषय हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विकास अग्रवाल, ज्वाइंट डायरेक्टर IDSP UP। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सुजाता जी।
2: सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि आखिर ये संचारी रोग होता क्या है और ये कैसे फैलते हैं।
3: ये तो सुजाता जी अभी आपने खुद ही थोड़ा सा इसके विषय में ज्ञान प्रदान किया लोगों को कि जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, एक माध्यम की भी जरूरत होती है। वो किसी वेक्टर के माध्यम से फैल सकते हैं, जल के माध्यम से फैल सकते हैं। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी प्रकार के माध्यम से रोग फैलते हैं उनको हम संचारी रोग कहते हैं।
2: अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा कौन कौन से संचारी रोग देखने को मिलते हैं?
3: देखिए, ये डिपेंड करता है कि क्या सीजन चल रहा है। अभी जो मौसम प्रारंभ हो रहा है उसमें हमारे पास जो मुख्य रूप से अभी संचारी रोग हमको मिलेंगे, इसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, देन वाटर बॉर्न डिजीजेस कुछ हैं जैसे कि डायरिया के केसेस हमको मिल जाते हैं। तो ये सब संचारी रोग हमारे प्रदेश के लिए प्रमुख हैं। इसके अलावा कुछ नए रोग भी आ रहे हैं जो टिक्स से फैलते हैं, जैसे स्क्रब टाइफस। कुछ पशु जनित रोग भी हैं जैसे लेप्टोस्पाइरोसिस। तो ये नई बीमारियां हैं जो पिछले कुछ वर्षों में हमने देखना शुरू करा है कि इनका भी प्रसार प्रदेश में तेजी से हो रहा है।
2: अच्छा, इनमें से कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो समय पर इलाज ना मिलने पर गंभीर या जानलेवा हो सकते हैं? सर,
3: कोई भी रोग इनमें से अगर समय से इलाज ना किया जाए तो मलेरिया जैसा रोग जो बहुत कॉमनली मिलता है, हमको लगता है बड़ा साधारण रोग है, लेकिन वो भी जानलेवा हो सकता है अगर समय से इलाज ना हो। तो किसी भी प्रकार के रोग में, किसी भी प्रकार की बीमारी में हमको कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए और तत्काल हमें अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाके हम डॉक्टर को दिखाएं या किसी क्वालिफाइड चिकित्सक से हम इलाज करवाएं, क्योंकि कोई भी रोग जिसका समय पे इलाज ना हो वो गंभीर हो सकता है, वो जानलेवा हो सकता है।
2: संचारी रोगों को फैलने से रोकने के लिए आम लोगों को क्या सामान्य सावधानियां बरतनी चाहिए?
3: देखिए, संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण आम लोगों का सहयोग ही है।

0: आप ज्यादातर संचारी रोग मच्छर जनित हैं या जो जल भराव हो जाता है उसके कारण होते हैं, तो आप अपने घरों के पास मच्छरों का प्रजनन ना हो इस तरीके की परिस्थितियां रखें, जल भराव ना होने दें, जो मच्छर विकर्षी क्रीम होती हैं उनका प्रयोग करें, पूरी आस्तीन के कपड़े बच्चों को स्कूल जाते समय पहनाएं, ये बहुत जरूरी है। और इसके अलावा हम जो साफ सफाई है, सामान्य साफ सफाई है, उसका भी ध्यान रखें। घरों में अगर कहीं पे हमारे खाली गमले हैं, खाली बर्तन है, तो उसमें पानी ना भरने दें। जो फ्रिज के नीचे की ट्रे होती है, कूलर का पानी होता है, इसको निरंतर हम बदलते रहें, जल्दी जल्दी हम बदलते रहें। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं, लेकिन ये संचारी रोगों के प्रसार को रोकने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: क्या अलग अलग संचारी रोगों के लिए सावधानियां भी अलग अलग हैं?
0: हाँ जी, अलग अलग संचारी रोगों के लिए निश्चित रूप से सावधानियां अलग अलग होती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, अभी जो मैंने आपको सावधानियां बताई वो मच्छर जनित रोगों के विषय में थी। इसके अलावा कई रोग ऐसे होते हैं जिनका संक्रमण पशुओं के द्वारा होता है, तो जैसे रोडेंट्स, चूहे, छछुंदर वगैरह जो होते हैं, उनसे भी हमको बचाव करना चाहिए, उनके माध्यम से भी इसका टाइफस जैसे रोग फैल सकते हैं। तो उनको घर में पनपने ना दें, उनको आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखें, इस चीज का हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर कहीं पर पशु बाड़े हैं तो उसमें साफ सफाई रखी जाए, पशुओं का जो मल मूत्र है वो अगर संपर्क में आया है, आप पशुपालन करते हैं, तो उसके बाद हाथ धोए, बहुत अच्छे तरीके से अपने शरीर की सफाई करें, उसके बाद ही अपने परिवार के सदस्यों से मिलें। भोजन बनाने से पहले, भोजन खाने से पहले हाथ जरूर धोएं। बच्चों को शुरू से ही आदत डलवाएं कि भाई खाना खाने से पहले हमको हाथ धोना है, कहीं घर से बाहर से आ रहे हैं तो हाथ धोना है। तो सामान्य स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता, ये सब महत्वपूर्ण तरीके हैं संचारी रोगों को रोकने के।
1: अच्छा, किन किन लक्षणों को देखते ही व्यक्ति को तुरंत जांच करवानी चाहिए या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?
0: सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है संचारी रोगों का, जो बहुत सारे संचारी रोगों में मिलता है, वो है बुखार। तो अगर मरीज को बुखार आ रहा है, विशेषकर छोटे बच्चों को बुखार आ रहा है, और वो सामान्य रूप से पैरासीटामोल की टैबलेट हम लेते हैं ऐसे में, लेकिन अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है रोगी, और उसको पैरासीटामोल लेने के बाद भी बुखार लगातार बना हुआ है, तो तत्काल फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए।
1: सर, हमारे श्रोता ये भी जानना चाहते हैं कि टीबी के मामलों में जांच कितनी जरूरी है और क्या सरकारी केंद्रों पर इसकी जांच और इलाज मुफ्त में उपलब्ध है?
0: टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका समूल नाश करने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और ये हम सबको पता है कि ये क्रोनिक बीमारी होती है। अगर सही समय पे इसकी जांच और उपचार ना कराया जाए तो ये फेफड़ों को पूरी तरीके से नष्ट करने की क्षमता रखती है, मनुष्य की कार्य क्षमता को घटाती है, उसकी उत्पादकता को घटाती है। तो इस बीमारी का तत्काल उपचार कराना, इसकी जांच करवाना बहुत ही जरूरी है। और हर ऐसे व्यक्ति को जिसको 2 सप्ताह या उससे अधिक की खांसी आ रही हो, या कई बार होता है कि फेफड़ों की टीबी नहीं होती है तो खांसी नहीं आती है, उसमें वजन घटना, भूख ना लगना, इस तरीके के लक्षण, शाम के समय हल्का बुखार, तेज बुखार नहीं होता है टीबी में, हल्का बुखार हो जाना, इस तरीके के लक्षण मिलते हैं, तो ऐसे सभी व्यक्तियों को जांच करवानी चाहिए। अगर टीबी की जांच में टीबी कंफर्म होता है तो पूरी अवधि के लिए जो उपचार बताया गया है वो पूरी अवधि के लिए लेना चाहिए। फेफड़ों की टीबी अगर है तो परिवार के बाकी सदस्यों को कुछ प्रोफाइलेक्टिक दवाइयां दी जाती हैं बचाव के लिए, उन दवाइयों का सेवन करना चाहिए।
1: डेंगू और मलेरिया जैसे रोगों से बचाव के लिए घर और आसपास किन बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है?
0: बेसिकली साफ सफाई रखें, वो सबसे जरूरी है। कहीं पे जल भराव ना होने दें। अगर कहीं पे आपको मच्छर के लार्वा दिखाई देते हैं तो उसमें आप जो लार्विसाइडल स्प्रे होता है वो आप कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे ब्रांड्स का लार्विसाइडल आपको मार्केट में भी मिलता है, वो आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको सामान्य तरीके बताए थे कि मच्छर के काटने से कैसे बचें, ये बहुत जरूरी है, और ये ना केवल आप खुद अपनाएं बल्कि अपने बच्चों को भी बताएं। घर के दरवाजों पे, खिड़कियों पे जाली लगाना, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनना, मच्छर विकर्षी क्रीम का प्रयोग करना, ये सारे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनसे आप डेंगू और मलेरिया दोनों से ही बच सकते हैं।
1: अच्छा, दस्त और डायरिया, उल्टी जैसे संक्रमण से बचने के लिए ग्रामीण और शहरी लोगों को क्या करना चाहिए?
0: दोनों के लिए उपाय एक समान ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि शहरी क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता पाइप्ड वाटर के रूप में होती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार आप हैंडपंप का पानी प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखें कि जो जल का स्रोत है उसके आसपास अगर आप हैंडपंप का पानी प्रयोग कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उसका जो बेस होता है उसके आसपास जल भराव की स्थिति ना हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोएं। अगर किसी भी व्यक्ति को दस्त आ रहा है तो उसको ORS अवश्य दें, और उसके बारे में तत्काल अपने आशा को, ANM को सूचना दें। अगर अनेक बार दस्त आ रहा है तो उसको अस्पताल में भर्ती करा के उपचार करने की भी जरूरत हो सकती है, और परिवार के बाकी सदस्यों में भी देखें कि किसी प्रकार के लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। विशेषकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें दस्त के लक्षण कई बार समझ में नहीं आते हैं, वो बच्चा अचानक रोना करना बंद कर देता है और आप उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें, इन लक्षणों का ध्यान रखें। और साफ सफाई, व्यक्तिगत स्वच्छता जो है वो दस्त रोग से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। शुद्ध पेयजल का प्रयोग करना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके पास शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है तो उसको क्लोरीनेशन के माध्यम से 20 लीटर पानी में एक क्लोरीन की टैबलेट आप डाल के छोड़ सकते हैं, या उसको आप उबाल के भी शुद्ध कर सकते हैं। तो शुद्ध पेयजल का प्रयोग करें, ये महत्वपूर्ण होता है।
1: JEAES जैसे गंभीर रोगों में बच्चों की सुरक्षा के लिए टीकाकरण कितना जरूरी है?
0: देखिए, केवल JEAES नहीं बल्कि खसरा है और गलघोटू है, डिफ्थीरिया मीजल्स जिसको कहते हैं, इसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस होती है, मम्स होते हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लिए नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत टीका बच्चों को लगाया जाता है। ये सारी बीमारियां और सारे टीके एक विशेषज्ञों के समूह के द्वारा बहुत ही गहन विचार विमर्श के उपरांत निर्धारित किए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में और देश में कौन से टीके बचपन में लगने जरूरी हैं। तो जो भी टीके नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत प्राविधानित हैं, वो सारे टीके जो आयु के अनुसार उनकी लगाए जाने की फ्रीक्वेंसी है उसको पालन करते हुए वो सारे टीके अनिवार्य रूप से बच्चों को लगाने चाहिए।
1: क्या केवल साफ सफाई रखने से इन सभी रोगों से बचाव संभव है या इसके साथ और भी उपाय जरूरी?
0: नहीं, साफ सफाई एक तरीका है, लेकिन इसके साथ कैसे प्रसार होता है रोगों का, इसके विषय में जानकारी, रोग अगर फैल रहे हैं तो तत्काल अपने आसपास जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनको जानकारी देना। कई बार आवश्यक होता है कि अगर मच्छर जनित रोग है तो मच्छरों को समूल खत्म करने के लिए आपको लार्विसाइडल स्प्रे या फॉगिंग करनी पड़ेगी। अगर जल जनित रोग है तो हो सकता है कि जल का स्रोत दूषित हो, उसको आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा, पेयजल की जांच करवानी पड़ेगी। तो बहुत सारे विभिन्न विभिन्न तरीके हमको करने पड़ते हैं संचारी रोगों से बचने के लिए।
1: अगर किसी गांव या मोहल्ले में कई लोगों को एक साथ बुखार, खांसी या दस्त जैसी समस्या होने लगे तो सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए?
0: सबसे पहले तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपके घर के आसपास अनिवार्य रूप से कोई ना कोई आशा कार्यकर्त्री होंगी, ANM होंगी या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे। तो सबसे पहले तो आप उनको सूचित करें, कुछ जांचें वो अपने स्तर पे कर सकते हैं और कुछ जांचों के लिए अगर उन्हें आवश्यक लगेगा तो आपको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर भेजेंगे, कुछ दवाइयां भी वो देंगे। तो जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उनको सूचित करें, उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करें, जो जांचें और उपचार आपको बताया जाए उसको पूरी तरीके से करवाएं, चाहे आप शहरी क्षेत्र में हो चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में हो।
1: संचारी रोगों को लेकर जो डर अफवाह होता है उसे कम करने में सही जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है?
0: सही जानकारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और अब सोशल मीडिया का जमाना है तो बहुत सारे माध्यम इस तरीके के हैं जिनके माध्यम से हम तत्काल जो वस्तु स्थिति है, रोग से बचाव के तरीके हैं, रोग कैसे फैल रहा है और रोग की वास्तविक स्थिति क्या है, इसके विषय में हम तत्काल सही जानकारी दे सकते हैं। तो सही जानकारी के बिना ना केवल आप भ्रम की स्थिति में रहेंगे अपितु अगर किसी एक व्यक्ति या एक क्षेत्र में रोग फैला हुआ है तो आगे उसके प्रसार को कैसे रोका जाए ये भी आपको पता नहीं चल पाएगा। तो सही जानकारी अत्यंत आवश्यक है, इसके लिए सभी प्रकार के उपायों का प्रयोग करना चाहिए। स्कूल में टीचर्स को भी हमने जो कॉमन बीमारियां हैं उनके लक्षणों के विषय में, उनसे बचाव के उपायों के विषय में जानकारी दी है, तो वो आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, ANM ये सब फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारा सहयोग करते हैं समाज को सही जानकारी प्रदान करने में।
1: सर, आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए आपकी तरफ से जरूरी क्या संदेश है?
0: स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, और स्वच्छ रहना और पर्यावरणीय स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, ये स्वास्थ्य की कुंजी है। और जितना आप स्वस्थ रहेंगे उतना ही आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उतना ही आपका समाज के लिए, अपने परिवार के लिए योगदान रहेगा। अगर आप बच्चे हैं, छात्र हैं, तो स्वस्थ रहना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो आपके एकेडमिक रिजल्ट्स को प्रभावित करता है, आपकी जो तैयारी है, एग्जाम्स के लिए तैयारी है, आपकी पढ़ाई करने की क्षमता, उस सबको भी प्रभावित करता है। तो स्वच्छता और स्वस्थ रहना, स्वस्थ जीवन, ये दोनों ही बहुत आवश्यक है और दोनों एक दूसरे के पूरक है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। तो श्रोताओं, आपने सुना, सही जानकारी, समय पर जांच करो और थोड़ी सी सावधानी से हम संचारी रोगों से खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे डॉक्टर विकास सेनू सर ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।

0: मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। 10 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। कल संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितम्बर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती है। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी BLO विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 BLO पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र BLO को वापस करें ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर BLO और BLA2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 अभियान को गति देने के लिए #झारखंड SIR के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1021 बूथ स्तरीय अधिकारी BLO जिले के सभी 1021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.com

0: jiovi.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत INS देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल S. अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा, अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
1: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने की। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सैक्रिफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
3: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यवसाय समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने FATF की आलोचना की थी जिसके बाद भारत ने FATF के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि एफएटीएफ की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता, आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
5: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
3: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
2: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
4: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
5: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो महिला मंच, और ये है आपके शहर का अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे खुशी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो घर से जुड़ा हुआ है, महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण पर। दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि घर में सबसे पहले महिलाएं उठती हैं और सबके बाद में ही सोती हैं। सुबह बच्चों का टिफिन बनाना, घर का काम संभालना, कई महिलाएं तो ऑफिस भी जाती हैं, यानी पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनकी कंधों पर होती है। लेकिन एक सवाल है, क्या महिलाएं अपने स्वास्थ्य का उतना ध्यान रखती हैं जितना बाकी लोग रख पाते हैं? अक्सर जवाब होता है नहीं। कई बार महिलाएं जल्दी जल्दी में खाना खा लेती हैं, कई बार अपना खाना ही छोड़ देती हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि अगर महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तभी पूरा परिवार स्वस्थ और खुश रहेगा। इसीलिए आज के इस खास शो में हम बात करेंगे कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें और अपने खान पान में कौन कौन सी चीजें शामिल कर सकती हैं।
6: क्या बात है, बहुत जरूरी बात तुमने कही आज खुशी। सो अब हम बात करते हैं पोषण का महत्व। महिलाओं के लिए सही पोषण बहुत जरूरी होता है, लेकिन कई बार महिलाएं अपने खान पान पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। कई घरों में देखा जाता है कि महिलाएं पहले पूरे परिवार को खाना परोसती है और बाद में खुद खाती है। कई बार जब तक उनकी बारी आती है तब तक खाना ठंडा हो जाता है या कम बचता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि शरीर को ताकत देने के लिए सही और संतुलित भोजन बहुत जरूरी है। महिलाओं को अपने खाने पीने में हरी सब्जियां, दाल, फल, दूध और अनाज जरूर शामिल करना चाहिए। ये चीजें शरीर को जरूरी पोषण देती है और शरीर को मजबूत बनाती है। इसी के साथ कोशिश करेंगे कि दिन में 3 बार सही समय पर खाना जरूर खाए। खाना छोड़ना या देर से खाना खाना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है।
5: बिल्कुल रीना जी, आप सही कह रही हो। दोस्तों एक बहुत बड़ी समस्या जो कई महिलाओं में देखी जाती है वह है आयरन की कमी। आयरन की कमी से शरीर में खून की कमी होती है, जिससे कमजोरी, चक्कर आना, जल्दी थक जाना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कई महिलाएं कहती हैं कि उन्हें हर समय थकान महसूस होती है। इसका एक ही कारण है, शरीर में आयरन की कमी भी हो सकती है। इसीलिए खाने में ऐसी चीजें जरूर शामिल करें जिनमें आयरन भरपूर मात्रा में हो, जैसे पालक, चुकंदर, अनार, गुड़, दाल और हरी पत्तीदार सब्जियां। अगर हम अपने खाने में इन चीजों को शामिल करेंगे तो शरीर को ताकत मिलेगी और कई बीमारियों से भी बचाव होगा।
6: बिल्कुल, बहुत सही बात कही है तुमने खुशी। और अब हम बात करेंगे कैल्शियम का महत्व। दोस्तों महिलाओं के लिए कैल्शियम भी बहुत जरूरी होता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो हड्डियां कमजोर होने लगती है और आगे चलकर जोड़ों में दर्द या अन्य समस्याएं हो सकती है। इसीलिए महिलाओं को अपने खाने में दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियां और सूखे मेवे का जरूर शामिल करना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि दूध सिर्फ बच्चों के लिए जरूरी होता है, लेकिन सच यही है कि महिलाओं के लिए भी दूध और कैल्शियम बहुत जरूरी होता है।

0: साथियों, अब हम बात करने वाले हैं पानी के बारे में, पानी के महत्व के बारे में, क्योंकि आपको पता है गर्मियों का समय है और पानी हमारे लिए कितना जरूरी है। दोस्तों, कई बार महिलाएं दिन भर में काम में इतना व्यस्त हो जाती हैं कि पानी पीना ही भूल जाती हैं। लेकिन पानी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ये शरीर को तरोताजा रखता है और शरीर को गंदगी से बाहर निकालने में मदद करता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। अगर आप चाहें तो इसे अपने पास पानी की बॉटल रख सकती हैं, ताकि आपको याद रहे और आप समय समय पर पानी पीती रहें।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने कि पानी पीना हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन साथ साथ हम बात करेंगे आराम की जरूरत। इस भाग दौड़ की दुनिया में ना, सच बताऊं, औरतें आराम मानो तो उनके जिंदगी में है ही नहीं। पता नहीं वो कहाँ चला गया है, ये कोई जादू है या क्या है कि उनको थकान कभी फील ही नहीं होती है। तो श्रोताओं, स्वास्थ्य के लिए आराम और नींद भी बहुत जरूरी होती है। कई महिलाएं दिन भर काम करती हैं और रात में भी देर तक जागती रहती है। इससे शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिल पाता है। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना शरीर के लिए बहुत जरूरी है। जब शरीर को सही आराम मिलता है तो मन भी खुश रहता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है और आप कोई भी काम फिर आसानी से कर पाएंगे। कहते हैं ना, जब तक आपकी बॉडी आराम नहीं कर पाती है तब तक आप कोई भी काम करिए, आप अच्छे मन से नहीं कर पाएंगे। ऊपर से आपका सर भारी रहेगा और पूरा दिन लगेगा कि यार क्या ही करूँ क्या ना करूँ।
0: सर में भी दर्द होने लगता है रीना।
1: बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही खुशी ने। आप जैसे सुबह उठोगे, जब तक आपके अंदर थकान होगी ना, आपके सर में दर्द तुरंत बन जाता है। इसीलिए सोना, आराम करना बहुत जरूरी है हमारे जिंदगी में।
0: प्रॉपर 7-8 घंटे की नींद लीजिए, ताकि आपका बॉडी अगले दिन के लिए तैयार रहे और एनर्जेटिक रहे।
1: बिल्कुल। सो मिलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। बस आप यूं ही बने रहिए आरजे रीना और आरजे खुशी के साथ महिला मंच शो में। और बहुत ही शानदार ये गाना आप सभी को हमारी प्यारी वुमनिया के लिए डेडिकेट है।

0: दोस्तों, रीना जी ने अभी बात की थी आराम के बारे में और अब मैं बात करने वाली हूँ व्यायाम के बारे में। जी हाँ, सुबह सुबह दोस्तों देखिए, हमारा जीवन जो है ना, वो हमारा जो स्वास्थ्य है वो एक धन है और उस धन को हमें कैसे एकत्रित करना है, कैसे इकट्ठा करना है, वो हम कैसे करेंगे आपको पता है, जब हम आप अपने फिटनेस का ख्याल रखेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, स्वास्थ्य ही असली धन है। और अब मैं बात करने वाली हूँ व्यायाम के बारे में। दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। अगर महिलाएं रोज 20 से 30 मिनट की सैर करें या हल्का फुल्का योग करें तो शरीर फिट रहता है। व्यायाम करने से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और मन भी अच्छा महसूस करता है। इसीलिए कोशिश करें कि हर रोज थोड़ा समय अपने स्वास्थ्य के लिए जरूर निकालें।
1: बिल्कुल खुशी, तुमने बहुत अच्छी बात कही है। इस भाग दौड़ की दुनिया में ना, हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते। इसीलिए सभी वुमनिया से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने लिए सुबह आधा घंटा निकालिए, इतना ही काफी है आपके लिए।

0: अब हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। कई बार महिलाएं इतनी जिम्मेदारियों में उलझ जाती हैं कि तनाव बढ़ने लगता है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। इसीलिए थोड़ा समय अपने लिए निकालें, अपने मनपसंद गाने सुने, किताब पढ़े या दोस्तों से बात करें। ये छोटी छोटी चीजें मन को खुशी देती है। और बिल्कुल सही बात है, हम क्या ना पूरे परिवार की जिम्मेदारी में ना खुद की मनपसंद चीजें भूल ही जाते हैं।
1: अच्छा, इसीलिए आपने बात की है रीना कि भूल ही जाते हैं अपनी दुनिया, अपनी फैमिली को मतलब केयर करने में, उनको
0: संभालने में।
1: हाँ। तो ये बताओ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ना तो अभी आपकी शादी हुई है और ना ही आपके बच्चे हैं।
0: हाँ, हाँ।
1: आप अभी अकेली हैं, तो आप अपनी मनपसंद की चीजें क्या करती हैं जब आप फ्री रहते हैं?
0: देखो, घर पे भी रहती हूँ तो मम्मी से जो बोलती हूँ वो बनाती हैं। और मम्मी से मैं कभी पूछती हूँ ना क्या आपको क्या पसंद है, तो बोलती है जो तुम्हें पसंद है मैं वही खा लूंगी। मैंने कहा नहीं मम्मी, आज ऐसा नहीं चलेगा, आज आप बताओ कि आपको क्या पसंद है।
1: हाँ।
0: तो मेरी मम्मी को ज्यादा कुछ नहीं, बस खीर।
1: अरे वाह,
0: खीर बहुत पसंद है मेरी मम्मी को, सच में। हाँ, वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस खीर बना दो मेरे लिए। तो मैंने अपनी मम्मी के लिए ना एक बार खीर बनाया और मेरी मम्मी को सच में बहुत पसंद आया। तो मेरी मम्मी कहती है कि जब भी अगर तू खीर बनाएगी ना घर में, मतलब खीर बनाने की बारी आएगी तो तू ही बनाएगी। तो मैं अपने घर में वही बनाती हूँ, और बल्कि मम्मी ने ही सिखाया मुझे खीर बनाना भी। तो देखिए, मतलब हम अपने घर में ना अपने साथ साथ मम्मी का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारा परिवार आगे बढ़ता है।
1: एग्जैक्टली और फिर रीना, मुझे ऐसा लगता है कि देखो, जो सबका ख्याल रखती है तो उनका भी ख्याल रखने वाला कोई चाहिए ना।
0: बिल्कुल। और आप गाइस ये पूछोगे ना अपनी मम्मी से कि आज आपकी पसंद का खाना बनाते, बताओ क्या खाना है आपको, तो उनके जो चेहरे पर खुशी होगी ना, नेक्स्ट लेवल वाली होगी खुशी। आगे हम बात करते हैं,
1: आगे हम बात करने वाले हैं अभी स्वास्थ्य के ऊपर। अब मैं बात करने वाली हूँ नियमित जांच।
0: बिल्कुल।
1: तो दोस्तों, महिलाओं को समय समय पर स्वास्थ्य जांच की भी। अच्छा रीना, आपको पता है हमारी जो घर की वुमेन होती है ना, बुमनिया जिसको आप बोल रही हैं, वो सबका ध्यान रखती हैं, लेकिन वो अपने स्वास्थ्य को लेकर अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं। लाइक जैसे छोटी छोटी कभी चक्कर आ जाते हैं, कभी वीकनेस फील होती है, तो वो जांच नहीं करवाती हैं, वो नजरअंदाज कर देती हैं कि ठीक हो जाएगा, नॉर्मल है। लेकिन ऐसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी ये जो चीजें होती हैं, जो ये बड़ी प्रॉब्लम कब बन जाए, कब बड़ा रूप ले लें, कुछ नहीं पता है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने, इसीलिए समय पर जांच करवाना बहुत जरूरी है। और मैं घर की सभी वुमनिया से के रिक्वेस्ट करूंगी कि कभी आप ये ना सोचे कि घर के नुस्खे से ही हम ठीक हो जाएंगे, बल्कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको डॉक्टर के पास ही जाना जरूरी होता है। सो श्रोताओं, हम लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर से कनेक्ट होंगे और करेंगे और बातें, और फिर हम बोलेंगे आपको बाय बाय।

क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय किया आपने आरजे रीना और आरजे खुशी के साथ। सो अब हम लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत, लेकिन जाने से पहले आज के शो का सबसे बड़ा संदेश यही है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें। परिवार की जिम्मेदारियां निभाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। याद रखिए, अगर महिला स्वस्थ है, खुश है, तो पूरा परिवार भी खुश और स्वस्थ रहता है। इसीलिए हमें अपने स्वास्थ्य के साथ साथ हमारी प्यारी वुमनिया के जो स्वास्थ्य हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। और घर में जितने भी वुमनिया हैं, बस एक दूसरे की हेल्प करें, साथ रहे, क्योंकि आप साथ रहकर आगे बढ़ोगी तो फैमिली और भी आगे जाता है। तो इसीलिए हमें कभी किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, तो परिवार और समाज दोनों स्वस्थ रहेगा। और इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। तो हम आप सभी के साथ फिर से कल कनेक्ट होंगे दूसरे टॉपिक के ऊपर। अभी के लिए दीजिए जाने की इजाजत। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। यूं ही पानी पीते रहिए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, और मौसमी फल खाते रहिए, खरबूज, तरबूज, बहुत से ऐसे फल है, कीवी कहते हैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाल, तो इसीलिए कीवी का सेवन करिए जिसे आयरन भरपूर मात्रा में मिलता है, और साथ ही साथ अंजीर जो पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, सो उसको भी आप जरूर खाएं। और एक और सब्जी है जो सभी फ्रूट से 10 गुना ज्यादा उसके अंदर विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, वो है मोरिंगा, जो लंबे फलियां होती हैं, और मोरिंगा का आप सूप बनाकर पीजिए, सब्जी बनाकर खाइए। सभी फलों से भी ज्यादा गुण होता है उसके अंदर, सब्जियों से ज्यादा पावर होती है उसके अंदर, सो इसको जरूर आप अपने डाइट में शामिल करें, इसको शामिल करना बहुत जरूरी है। सो चलिए गाइस, बाय।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों, मैंने 12 बजे आपसे प्रॉमिस किया था ना कि खुशी आपसे मिलेगी 3 बजे। दोस्तों, आप सभी का फेवरेट शो शुरू हो चुका है हेलो फरमाइश, जहां दिल की हर फरमाइश को मिलता है संगीत का खूबसूरत साथ। आज का मौसम जैसे खुद कह रहा है, जरा ठहरो, मुस्कुराओ और इस पल को जी लो, क्योंकि दोस्तों मौसम बहुत ही औसम है। और इस सुहाने से मौसम में एक ब्यूटीफुल ट्रैक तो होना चाहिए ना। तो अगर आपके जहन में भी कोई ट्रैक चल रहा है जो आप सुनना चाहते हैं, तो मुझे बिना किसी देरी के आप कॉल लगा सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896 और मैं आपके साथ आपकी खुशी जो आपके लिए लेकर आती है ढेर सारी खुशियां। हमारे साथ में एक कॉलर भी जुड़ी है, तो उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे उनका फेवरेट ट्रैक। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका? जी बताइए, वासु कैसी हैं आप?
1: बस बढ़िया है, आप बताइए।
0: हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ। आप क्या करते हो?
1: कुछ नहीं, अभी फर्स्ट ईयर की स्टडी।
0: अच्छा, ओके। तो आज तो मौसम बहुत ही प्यारा है। हाँ,
1: आज मौसम बहुत प्यारा अच्छा हो रहा है, बारिश दिखाई,
0: बारिश निकल रही है। हल्की फुल्की बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी, राइट? तो आज सुबह सुबह आपने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया था, बताओ हमें इतने सुहाने से मौसम में।
1: सुबह सुबह आज सूखी और पूरी।
0: ओहो हो, क्या बात है भैया, आज तो बल्ले बल्ले हो गए। यहाँ खाना आपने बनाया था फैमिली में, मम्मा ने?
1: खीर बनाई थी।
0: हाँ, पूर्णिमा थी, एग्जैक्टली राइट। ओके, बहुत ही अच्छी बात है, आपने इतना प्यारा प्यारा टेस्टी यमी यमी खाना खाया है सुबह सुबह। आप ये बताओ, आज वासु क्या सुनोगे आप?
1: आज वो पिक्चर का सॉन्ग है, हमारी शादी है अभी
0: बाकी है। अरे वाह, चलो वे ट्रैक हम आपको सुनवाते हैं। थैंक यू कॉल करने के लिए,
1: थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम डियर। तो चलो एवरीवन, सुनते हैं वासु की पसंद पर ये प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी विवाह। एंड ये खूबसूरत सा गाना बिना किसी देरी के सुन लेते हैं और लौट कर आते हैं। लेकिन हाँ, जिनका नाम पूनम होगा ना, वो तो बहुत हैप्पी होंगी, क्योंकि उनका नाम बार बार रिपीट होने वाला है इस ट्रैक में। तो उनको लगेगा, ओ हो, ये लाइनें तो फिर मेरे लिए ही हैं। क्यों? जितनी पूनम जी सुन रही हैं ना उस समय, इस समय हमें राइट नाउ मुस्कुरा लीजिएगा।

0: हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है। और अभी आपने एक खूबसूरत सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी विवाह, एंड बहुत ही खूबसूरत सी नजर आई अमृता राव साथ में शाहिद कपूर जी। और अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ में कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी। सर, अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: जी मैडम जी, मैं मोहम्मद आरिफ खान बोल रहा हूँ, जामा मस्जिद अगवानपुर से।
0: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: बस मैडम जी बहुत ही बढ़िया हैं, और प्रोग्राम सुनना है, मैंने सोचा आज कॉल मिला ली जाए, और कॉल हमारी लग भी गई।
0: जी बहुत अच्छी बात है, एंड मौसम भी बहुत ही औसम है, एंड ऊपर से इतना प्यारा शो में मतलब आपका कॉल लग गया है हेलो फरमाइश में, जहाँ पर बहुत टाइम के बाद आपने आज कॉल लगाया है, कनेक्ट हुए हैं। कैसे लग रहा है?
1: बहुत अच्छा लग रहा है, और आज मौसम भी सुहाना बना हुआ है।
0: जी
1: बारिश तो नहीं है, लेकिन बादल लोग चारों ओर से छाए हुए हैं, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। मैं बाहर ही बैठकर आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ।
0: हाँ जी, मतलब गर्मी से तो राहत मिल चुकी है ना?
1: जी जी
0: जी आप बताइएगा आज आप क्या सुनना चाहेंगी सर?
1: हाँ मैडम जी, अरुण बख्शी है एक्टर, और बहुत ही लाजवाब उनकी मूवियाँ हैं।
0: जी जी
1: और किसी को शायद ये मालूम नहीं कि वो एक अच्छे गायक भी हैं। तो मैं एक उन्हीं का ही सॉन्ग सुनना चाहता हूँ, जो आपको पसंद हो, उनका अरुण बख्शी जी का एक सॉन्ग सुना दीजिएगा, बहुत ही लाजवाब वाला।
0: ठीक है सर, मैंने एक सॉन्ग यहाँ पर डिसाइड किया है, बहुत ही खूबसूरत सा है, ये हम प्ले करते हैं। एंड कुछ कहना चाहते हैं आप तमाम श्रोता इस वक्त आपको सुन रहे हैं सर?
1: जी हाँ मैडम जी, मैं कहना चाहूंगा कि अभी काफी गर्मी हुई है, और अपना खास ख्याल रखें, जिसे आपने भी कहा है
0: जी।
1: और जी, समय समय पर आप पानी का इस्तेमाल जरूर करें, और अपने आप तो करें ही, बाकी पक्षी वगैरह जो होते हैं हमारे, वो मुंह से नहीं बोल पाते, तो आप अपनी छतों पर एसी की जगह थोड़ा पानी रख दें, तो ताकि बच्चे
0: जो
1: पक्षी
0: हैं,
1: पक्षी पी सकते हैं पानी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और ये छोटी छोटी जो हैबिट्स हैं, अच्छी गुड हैबिट्स हैं, ये बच्चों के अंदर भी आदत है, मुझे लगता है कि उनको भी सिखाना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे छोटी सी उम्र से ही चीजें सीखते हैं, तो वो बड़े होकर और अच्छा करते हैं लाइफ में।
1: बिल्कुल, जब हम करेंगे तो हमारे बच्चे भी इस चीज का इस्तेमाल करेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, सही कहा आपने, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, शुक्रिया आपका। सुनवाते हैं एक प्यारा सा ट्रैक, मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक, एंड लौट कर आती हूँ मैं, आप कहीं मचाइएगा, यूं ही मुस्कुराइए, एंड मुझे फ़ोन भी मिलाइए, नंबर है 9837896896।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
1: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है,
0: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: कॉल 9045912348।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे खुशी और आप सुन रहे हैं हेलो फरमाइश, जहाँ हर दिल की प्लेलिस्ट बनती है आपकी फरमाइशों से। जी हाँ दोस्तों, इस ब्यूटीफुल शो में आप भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, मुझे कॉल लगा सकते हैं और अपना फेवरेट ट्रैक सुन सकते हैं। दोस्तों समय मैं आपको बता देती हूँ, 3:28 हो गए हैं एंड अगले कॉलर से भी बात करते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्कार मैम।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार, नाम बताइएगा अपना।
1: ये अनस बोल रहे हैं मैम।
0: अनस, कहाँ से बात कर रहे हो आप?
1: ये गोरखपुर बस्ती से कर रहे हैं मैम।
0: अच्छा, गोरखपुर बस्ती से बात कर रहे हो
1: जी।
0: बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी।
1: ये फरमाइश थी दीवाना मूवी का कोई सा भी गाना सुनवा देना अपनी पसंद से।
0: ठीक है सर, आप प्रॉपर रहने वाले कहाँ के हैं?
1: जी रहने वाले तो मुरादाबाद के हैं, गोविंदपुर खुर्द के।
0: अच्छा, ओके, तो गोरखपुर में आप काम करते हैं?
1: जी काम करते हैं, घर बना रहे हैं।
0: अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। गोरखपुर का मौसम कैसा है बताइए जरा अभी।
1: जी मैम बादल हो रहे हैं बहुत।
0: अच्छा, बहुत बादल हो रहे हैं।
1: हाँ बहुत बादल हो रहे हैं, सुबह से बादल ही बादल है, बारिश तो होने नहीं है, बादल बहुत है।
0: हाँ जी, मुरादाबाद में भी ऐसा ही है, लेकिन हल्की फुल्की सी बारिश हो रही है।
1: कल बहुत बारिश हुई थी मैम यहाँ।
0: अच्छा ओके, तो चलिए सुनवाते हैं अनस जी आपको आपकी पसंद का प्यारा सा ट्रैक। शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक एंड आप भी मुझे कॉल लगाओ, नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896।

0: हेलो हाय गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर और ये है आपके अपने शहर का फर्स्ट सामुदायिक रेडियो स्टेशन। दोस्तों वक्त हुआ है 3:36 और अभी आपने ये बहुत ही प्यारा सा ट्रैक सुना, कोई ना कोई साथी चाहिए प्यार करने वाला। हम आपसे कह रहे हैं कि आप हमें कॉल कीजिए, हम आपका फेवरेट गाना यहाँ पर प्ले करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली रेडियो से तो प्यार है ही एंड और भी ज़्यादा यू नो अमेजिंग आपका जो दिन है वो बन जाएगा। देखिए दोस्तों, आपने ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी दीवाना से जो 1992 में आई थी एंड इस खूबसूरत गीत को गाया था विनोद राठौर जी ने एंड म्यूजिक डायरेक्टर थे नदीम शरवण जी, लिरिक्स थे समीर जी के। और अभी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं अपने अगले कॉलर से कौन हमारे साथ जुड़े हैं और जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, अपना शुभ नाम बताइएगा। जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: अच्छे हैं, बढ़िया
0: हैं। अच्छे हैं, चलिए अच्छा ही रहना चाहिए। वैसे ये बताइएगा सर, कैसा मौसम है आपके साइड?
1: सुबह तड़के में तो हल्की बूंदाबांदी हुई थी और आज पूरा दिन ऐसा हो गया, बादल ही है, बरसात का इंतजार है,
0: बारिश का इंतजार है। ओके, तो बताएगा सर आप कौन सा गाना सुनेंगे आज?
1: कलिंग का नाम रहेगा जो पकड़, गाने जो बोल रहे हैं तुमको कैसे हम जुदा करेंगे।
0: ठीक है सर, ये ट्रैक हम आपको सुनवाते हैं, आपने कॉल किया धन्यवाद आपका।
1: नाम लेते
0: हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप?
1: कुछ नाम लेते हैं।
0: हाँ बताइएगा।
1: जैसे मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, बिटियालीसा सिद्दीकी, सिवान सिद्दीकी, नाविया सिद्दीकी, सलीम सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, यासिन अंसारी, सुबेद जान, अतीक तोफिक, दानी सिद्दीकी, महेशपुर के एम से, भाई इकराम प्रेम साहब रामपुर से, नवाबुद्दीन भाई रामपुर से, दुलापुर मोदवा से, मुकेश का सब्जी, राशिद अंसारी, भागोड़ा से, मुजाहिर अंसारी।
0: ठीक है सर, आपके दोस्तों के साथ और अपनी आपकी फैमिली के साथ सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। शुक्रिया आपने कॉल किया हमें।
1: नमस्कार,
0: आपको भी नमस्कार सर। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, लौट कर आते हैं हम, तब तक आप भी ट्राई कीजिए, आपका कॉल भी जल्दी से लग जाएगा।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशी।

0: अनीक आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पर मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी हम बात करने वाले हैं अपने अगले कॉलर से, क्योंकि वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं और जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है यहाँ पर। हेलो फरमाइश। हेलो, हाँ जी सर, अपना नाम बताइए। जी आपको भी नमस्कार। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए कैसे हैं।
1: मैम अब तो मौसम काफी सुहाना हो रहा है, मैम गर्मी से राहत बहुत मिली है।
0: हाँ जी,
1: और आप प्रोग्राम काफी अच्छा चेक कर रहे हैं मैम इस मौसम में।
0: जी शुक्रिया, बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी आज।
1: मैम आज मूवी का नाम है साजन का घर। बहुत ही प्यार है, सावन आया बादल छाए, आने वाले सब आ गए लेकिन तुम कब आओगे। मैम आज की फरमाइश में ये वाला सॉन्ग प्ले कर देना।
0: ठीक है सर, ये ट्रैक प्ले कर देते हैं, आपने कॉल किया है, शुक्रिया।
1: सुनने वाले मैम
0: जी बताइएगा।
1: सबसे पहले ये बीबीपुर से मकसूद भाई, स्वार्थ से विजय राठौर, ये रामपुर से अमान, सातनापुरम।
0: ठीक है सर, सभी के साथ सुनवाते हैं प्यारा सा ट्रैक, शुक्रिया कॉल करने के लिए, मोस्ट वेलकम, आपको भी नमस्कार।

0: आपने याद किया और हम आ गए। गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है और आपका फेवरेट शो चल रहा है हेलो फरमाइश, जहां पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं और अपने सफर को खूबसूरत बना सकते हैं। तो अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है यहाँ पर। अगर साथियों आप इस समय राइट नाउ फ्री हैं एंड आप भी सोच रहे हैं कि काश मेरा भी कॉल लग जाए, तो नंबर मैं आपको बता देती हूँ 98-378-96-896, 98-378-96-896, 9837-89-6, 8968-96-896। इस नंबर पे आपको कॉल लगाना है और सीधा हमारे साथ कनेक्ट हो जाना है। अभी फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट कॉलर से। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हाँ मैम।
0: हाँ जी सर, नमस्कार। राम राम साहब।
1: राम राम साहब
0: जी, बताओ कैसे हैं आप?
1: मैं
0: तो बताइएगा आप कहाँ से बात कर रहे हैं सर और आपका शुभ नाम?
1: मेरा नाम बलबीर सिंह है।
0: हाँ जी।
1: और मैं हिंडौन सिटी राजस्थान से बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइएगा, राजस्थान का मौसम कैसा है सर?
1: जी मैम अभी तो बरसात वगैरह तो है नहीं।
0: अच्छा, बारिश नहीं है। ओके, तो कैसा मौसम है अभी राइट नाउ, कैसा वेदर है वहाँ का?
1: गर्मी उमस है।
0: अच्छा, उमस ज्यादा है।
1: हाँ जी, मैंने आपसे बात की थी शायद 3-4 दिन पहले और एक बार।
0: नहीं, मुझसे नहीं, वो आरजी रीना जी से हुई होगी। मैं खुशी बात कर रही
1: हूँ। बिल्कुल बात थी आपकी।
0: हाँ जी हाँ जी, आप बताइएगा।
1: अभी जालौर में हूँ।
0: ओके।
1: मैं टीचर हूँ।
0: हाँ जी हाँ जी, मुझे रीना जी बता रही थी आप साइंस के टीचर हैं राइट?
1: जी जी जी
0: जी बिल्कुल। हाँ जी सर, तो बताइएगा आप एफ एम मुरादाबाद पर आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: प्यार से भी ज्यादा तुझे प्यार करता हूँ।
0: अच्छा, तो ये ट्रैक आप किन के लिए सुनना चाहते हैं सर?
1: ये मेरी पत्नी है कंचन जी।
0: अच्छा, कंचन मैम के लिए सुनना चाहते हैं। नाम तो बड़ा प्यारा है कंचन जी।
1: वो भी प्यारी है।
0: हाँ वो भी प्यारी है, नो डाउट।
1: अभी क्या वो हिंडौन सिटी है, मैं मेरी ड्यूटी पे होगी।
0: ओके, कोई बात नहीं। तो फिर आप छुट्टी तो होती होगी ना आपकी?
1: छुट्टी ना, काफी दूरी है ना, यहाँ से 750 किलोमीटर दूर है।
0: अच्छा ओके, काफी डिस्टेंस है फिर तो।
1: हाँ
0: तो फिर कब जाते हैं आप घर से?
1: अभी तो मैं अभी जाऊंगा, 3 तारीख को शादी वगैरह वहाँ पे।
0: अच्छा,
1: इसलिए मैं 3 जुलाई को जाऊंगा।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है सर, आपसे बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा। एंड सुनवाते हैं आपके पसंद का ये प्यारा सा ट्रैक।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी धन्यवाद सर, आपने कॉल किया। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, लौट कर आते हैं हम। तब तक आप भी मुझे कॉल लगाओ, नंबर है 9837-89-6-896।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
2: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
3: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और श्रोताओं, अभी वक्त हुआ है 4:03 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी। हमारे नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानेंगे उनकी फरमाइश। और अगर आप भी कोई फरमाइश का ट्रैक सुनना चाहते हैं, अपने पसंद का किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो बिना किसी देरी के आप मुझे कॉल लगा सकते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कैसी हैं सोना जी आप?
1: मैम तो अच्छी हूँ, मैम आप सुनाओ कैसी हो?
0: हाँ जी, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कहाँ से बात कर रही हैं
1: आप?
0: जी बताइए, परिवार में सब कैसे हैं आपके यहाँ पर?
1: बढ़िया
0: जी। आप क्या कर रही हैं मैम, बताइए? इस वक्त मुझे लग रहा है आराम करके उठी हैं आप।
1: हाँ मैम, ये टाइम का आराम कहीं होता है।
0: एग्जैक्टली, रेस्ट करते हैं। और आज तो मौसम भी बहुत प्यारा है।
1: हाँ, बहुत अच्छा मौसम है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, आसमान में बादल छाए हुए हैं।
0: हाँ जी, आप बताइएगा क्या फरमाइश है सुहाने से मौसम में आपकी?
1: मैम अरिजीत सिंह का गाना सुना है, वो सीने से तेरे दिल को सर को लगा के,
0: अच्छा, ओके,
1: सुनता आ रहा हूँ नाम अपना।
0: बहुत ही प्यारा सही ट्रैक आपने चुना है मैम, टाइटल ट्रैक सुनवाते हैं आपको। किसी का नाम लेना चाहते हैं आप? हेलो।
1: बेटी है
0: हाँ
1: हम तो नहीं सुन रहे, माँ बेटी
0: ठीक है, आपकी
1: और तो
0: डॉटर
1: कोई
0: के
1: नहीं है।
0: साथ आप ये ट्रैक एंजॉय कीजिएगा। शुक्रिया आपने कॉल किया हमें,
1: थैंक यू।
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए सोना जी की पसंद पर सुनते हैं ये सोना सा प्यारा सा सोना सा ट्रैक अरिजीत सिंह जी की बहुत प्यारी सी आवाज में। एंड दोस्तों, आप भी मुझे बिना किसी देरी के कॉल लगा सकते हैं, अभी आपके पास मौका है, इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। परंपरा ठाकुर भी साथ में दे रही है साथ, अमेजिंग ट्रैक।

0: दोस्तों, हम आपके ही पास हैं और आप हमारे पास हैं, क्योंकि दिल से दिल का कनेक्शन है। आप मुझे कॉल लगा सकते हैं, मोबाइल नंबर मैं आपको बताती हूँ, आप इस बात की टेंशन बिल्कुल भी मत लो। नंबर मैं बता रही हूँ 9837896896, जल्दी से डायल करो। और अभी फिलहाल बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो मैम।
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: कपिल।
0: कपिल, कहाँ से बात कर रहे हो आप?
1: मुरादाबाद
0: से। बताइए, क्या करते हैं कपिल आप? इंटर और ट्वेल्थ एक ही होता है। ओके, बताओ आप क्या फरमाइश है, कौन सा गाना आप सुनोगे?
1: चांदनी।
0: ओके, टाइटल ट्रैक सुनना चाहते हैं आप? चलिए सुनवा देते हैं आपको ये प्यारा सा गाना। थैंक यू कपिल कॉल करने के लिए। तो चलिए कपिल जी की रिक्वेस्ट पर सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक दोस्तों, चांदनी। एंड आपसे मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हो तो बिना किसी देरी के मुझे कॉल लगा सकते हो। फिर बाद में मत कहना खुशी जी ओहो आपसे तो बात ही नहीं हो पाई है, इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, अभी टाइम है, कॉल लगा लो आप जल्दी से और ये प्यारा सा गाना सुनते जाओ। अपने सफर को भी इंटरेस्टिंग बनाओ इंटरेस्टिंग गानों के साथ।

नाम लिख लिया, बिन पूछे ये

0: गुड इवनिंग दोस्तों, आपने अभी बहुत ही प्यारा सा ट्रैक सुना, श्रीदेवी साथ में जॉली मुखर्जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ में ट्रैक। आनंद बख्शी जी के लिरिक्स थे और शिवहरी जी का म्यूजिक था। एंड ये फिल्माया गया ट्रैक श्रीदेवी साथ में ऋषि कपूर जी पर। और अभी कार्यक्रम की हम मतलब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश। हाँ जी
1: जी
0: बताइए सर, अपना नाम और कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी योगेश जांगड़े, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: जी बताइए योगेश जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, अच्छे हैं
0: जी। बताइएगा कैसा मौसम है छत्तीसगढ़ का राइट नाउ?
1: मौसम अभी मतलब बादलों से घिरा हुआ तो है जी, बाकी उतना बारिश अभी हो नहीं रहा है।
0: अच्छा, बारिश नहीं हो रही है
1: जी।
0: ओके बताइए योगेश जी, आप कौन से गाना सुनना चाहते हैं आज?
1: फिल्म हम आपके है, कौन से सुनवा देंगे, ये मौसम का जादू है मतलब।
0: मौसम तो अपना जादू बिखेर ही रहा है
1: जी।
0: ठीक है योगेश जी, सुनवाते हैं आपके पसंद का प्यारा सा ट्रैक। आपने कॉल किया, धन्यवाद आपका। श्रोताओं आप भी मुझे कॉल लगाइए, नंबर मैं आपको बता रही हूँ 98-378-96-8-96। और सुनिएगा प्यारा सा ट्रैक। वैसे आज का मौसम बहुत ही औसम है, बहुत गर्मी थी, फिलहाल उससे राहत मिल चुकी है, बस बारिश भी हो जाए तो और भी मौसम ब्यूटिफुल हो जाएगा। एंड इंतजार करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है।
2: 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
2: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है।
1: साथ ही छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: कॉल 9045912348।
3: कोई मिल गया,
4: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: बिल्कुल दोस्तों, ये है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, जो आप यहाँ पर सुन सकते हैं अपने फेवरेट गाने एंड सुबह से लेकर रात तक आपको मिलता है एंटरटेनमेंट का डोज एंड जानकारियाँ भी मिलती हैं आप ही को। और श्रोताओं, मैं वक्त आपको बता देती हूँ, 4:25 हो गए हैं स्टूडियो क्लॉक एंड बात करते हैं नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ में कनेक्ट हुई है। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: जी, मेरा नाम अलीना है।
0: अलीना, कहाँ से बात कर रहे हो आप?
1: मैं मुरादाबाद से बात कर रही हूँ।
0: मुरादाबाद में कहाँ से बात कर रहे हो डियर? हेलो,
1: करूले पे से बात कर रहे हैं।
0: जी ओके, बताइए अभी कौन सी क्लास में स्टडी करते हो आप?
1: जी मैं 6th क्लास में
0: अभी स्टडी करते हो? ओके, बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी आज?
1: जी मैम, मेरी फरमाइश है कि मुझे रश के कमर सॉन्ग सुनना है।
0: अच्छा ओके, चलिए सुनवाते हैं गाना आपको। थैंक यू अलीना कॉल करने के लिए। तो चलिए अलीना जी की रिक्वेस्ट पर सुनते हैं ये ट्रैक रश के कमर, अमेजिंग ट्रैक है दोस्तों, सुनते हैं, इसके बाद लौट कर आते हैं। तब तक आपको भी हमें कॉल लगाना है, कोई बहाना नहीं चलने वाला है।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी आपने ये प्यारा सा ट्रैक सुना, हरियाणवी गाना सुमित गोस्वामी जी की आवाज़ में। एंड अभी आप भी कोई भी ट्रैक अपनी पसंद का दोस्तों सुन सकते हो। उसके लिए आपको हमें कॉल करना होगा, नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896। मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी दोस्त आरजे खुशी। एंड आपका फेवरेट शो लेकर मैं यहाँ पर हाजिर हूँ, हेलो फरमाइश, जहाँ पर आप मुझे एवरी डे सुन सकते हैं, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे तो रीना जी आती हैं। और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ कहाँ से कनेक्ट हुई है, उनसे बातचीत करके जानते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका? गुड इवनिंग खुशी, कहाँ से बात कर रहे हो आप?
1: जी मैं मुरादाबाद से काशीराम।
0: अच्छा, मुरादाबाद काशीराम, ओके। बताइए खुशी, क्या करते हो आप? अच्छा, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है, फाइनल ईयर है। चलिए, उसके बाद क्या करने वाले हो नेक्स्ट, आप बताइए। हाँ जी, मैं तो ठीक हूँ, आई एम गुड। और अच्छा लग रहा है,
1: आपसे बात करके बहुत खुशी हुई मुझे तो।
0: चलिए खुशी को बात करके खुशी से खुशी हुई, अच्छा लग रहा है हमें भी। बताइए खुशी, आपके परिवार में सब ठीक है?
1: हाँ बिल्कुल बढ़िया।
0: तो आप FM मुरादाबाद कब से सुन रहे हो?
1: मैम पापा सुनते हैं तो मैंने आज सोचा कि मैं ट्राई करके
0: अच्छा,
1: देखती हूँ फोन लगा के।
0: ओके। तो आज आपने ट्राई किया, आपका कॉल भी लग गया है। बताइए खुशी, क्या फरमाइश है आपकी?
1: मैम मेरी फरमाइश ये है, मेरा प्यारा भैया दुलारा से मिल के आ रहा है।
0: ओए होए होए, क्या बात है।
1: साथ में है मैम मेरे भाई की है।
0: अच्छा, ओके। कब है आपकी भैया की शादी?
1: 14 14 मई, उसमें 14 तारीख को आएगी।
0: अच्छा, तो जुलाई है ना, अब तो जुलाई आने
1: हाँ
0: वाला
1: हाँ
0: है, कल से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो फिर घर में तैयारियां चल रही होंगी जोरों शोरों से। हाँ ओके। और बहनें तो बहुत तैयारियां करती हैं।
1: मैम आप भी आना।
0: थैंक यू, आपने हमें इनवाइट किया, जरूर आएंगे और आपको ये गाना सुनवाते हैं। ठीक है खुशी, ख्याल रखो अपना,
1: ठीक है बाय।
0: बाय। तो चलिए खुशी की रिक्वेस्ट पर सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, अलका याग्निक जी साथ में कुमार सानू जी की खूबसूरत सी आवाज़ में ये गाना। लौट कर आती हूँ मैं, बस आप नहीं मचाइए, यूं ही स्माइल कीजिए। और अगर सफ़र में इस समय आप हैं, हमें सुन रहे हैं, तो इस सफ़र को खूबसूरत बनाइए।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। एंड अभी आपने बहुत ही प्यारा से ट्रैक सुना और इस प्यारे से गाने को सुनकर ना मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है वो माइंड में क्रिएट हो जाती हैं कि ब्रदर की शादी होगी तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन पता है दोस्तों, जब अपने घर में फंक्शन होता है ना तो जैसा हम सोचते हैं वैसा कर ही नहीं पाते, इतना बिजी होते हैं, इतने सारे काम होते हैं, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, मेहमानों को भी देखना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एंड बाकी तो देखा जाएगा। अभी तो मैं भी बहुत सारे सपने सजा रही हूँ अपनी ब्रदर की शादी को लेकर कि ऐसा करने वाली हूँ। बाकी वक्त पर जब वक्त आएगा पता चल जाएगा क्या होगा। एंड लेकिन अच्छा लगता है जब अपने घर में शादी होती है, सब गेस्ट आते हैं और खुशियाँ डबल हो जाती हैं, सेलिब्रेशन होते हैं घर में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत ही फन मस्ती करते हैं। एंड शादी एक बार होती है और सब चाहते हैं कि शादी को मेमोरेबल बनाएं, इंटरेस्टिंग बनाएं। एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी फ़िलहाल तो हम बात करते हैं अपने कॉलर से, कौन हमारे साथ में कनेक्ट हुई हैं। फ़िलहाल बहुत दिन से, दिन के बाद उनसे बात हो रही है, तो चलो बिना किसी देरी के बात करते हैं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, हाँ जी, कैसे हाल चाल है आपके?
1: मेरे हाल चाल बहुत अच्छे हैं। भी आप बताओ, आप कैसी हो?
0: मैं तो ठीक हूँ, आप अपना नाम बताओ।
1: जी दी, मैं जिला मुरादाबाद से अफरोज फातिमा बोल रही हूँ।
0: अफरोज फातिमा, बताइए कैसी हैं आप, काफी दिनों के बाद जुड़े हो आज।
1: हाँ जी, बहुत दिनों के बाद आज मेरी बात हो रही है हेलो फरमाइश में।
0: तो इतने दिन से आप कैसे रह पा रही थी हमारे बिना, पहले ये बताओ हमें, हम नाराज हैं आपसे।
1: जी दी, आपकी नाराजगी जायज है।
0: तो बताइएगा, इतने दिन से आप कहाँ थी, आपने हमारे हालचाल भी नहीं जाने। हाय
1: दीदी, मेरे हालचाल तो खुद इतने खराब थे कि मैं क्या ही कहूँ।
0: अब तो आप ठीक हैं?
1: हाँ दी, अब मैं ठीक हूँ, तो आपसे बात कर रही हूँ ना।
0: हाँ, वो आपकी हंसी में, आपकी बातों में झलक रहा है कि आप एकदम फिट एंड फाइन हैं।
1: दीदी मेरी तबीयत ना बहुत खराब हो गई थी दी, फीवर हो गया था बहुत मुझे।
0: अच्छा, फीवर भी हो गया था और नजर भी लग गई थी आपको, दोनों चीजें साथ हो गई थी
1: शायद। हाँ, मेरी दोस्त बोल रही थी तुम्हें नजर लग गई है, नजर उतरवा लो।
0: हाँ, वही हो जाता है। और बताओ, फैमिली में सब ठीक है फ्रूस?
1: हाँ जी, मेरी फैमिली में सब ठीक है, आप बताओ।
0: हाँ
1: आपके
0: जी,
1: कैसे हैं?
0: ऑल गुड, बहुत बढ़िया। आप बताओ, आज आपने लॉन्ग टाइम की बात कॉल किया है, क्या सुनने का मन है आज आपका?
1: जी जी आज मुझे सॉन्ग सुनना है जरा देख मेरा ये पागलपन।
0: ओके, ये गाना किन के लिए सुनना चाहते हो आप, बताओ बताओ हमें।
1: दीदी सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहती हूँ, और मेरी बेस्ट फ्रेंड है लाइबा, और मेरी सिस्टर है नजमा आपकी, दरक्षा रुकैया आसिया और खुशी दी।
0: ओके, और कोई शायरी भी सुनाओ फिर हमें।
1: आदि बिल्कुल, बिना शायरी के तो कोल अधूरी है।
0: हाँ जी, सुनाइएगा।
1: दीदी मैं लाइबा के लिए कुछ लाइनें बोलना चाहती हूँ।
0: इरशाद,
1: तुझे किसने कहा अनजान बनकर आया कर, तुझे किसने कहा अनजान बनकर आया कर, मेरे दिल के आईने का मेहमान बनकर आया कर। लाइबा तुझे इस दिल की हुकूमत सौंपी है, लाइबा तुझे इस दिल की हुकूमत सौंपी है, तेरी सल्तनत है सुल्तान बनकर आया कर, तेरी सल्तनत है सुल्तान बनकर आया कर।
0: बहुत खूबसूरत शायरी है आपकी, और
1: दीदी
0: अपना अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है?
1: दीदी ध्यान तो रखते हैं लेकिन पता नहीं क्यों फीवर हो जाता है।
0: आप इतनी प्यारी हो कि फीवर को जाने का मन नहीं करता है आपके पास से,
1: लगता तो कुछ ऐसा ही है।
0: बार बार आ जाता है। हाँ,
1: बार बार आ जाता है जी, 4 दिन सही रहती हूँ, फिर फीवर हो जाता है मुझे।
0: हाँ, अभी अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा, फिर फीवर नहीं होगा आपको, ठीक है?
1: हाँ दी,
0: ठीक है, तो चलो आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का प्यारा सा गीत। शुक्रिया आपने कॉल किया हमें,
1: थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम, बाय, टेक केयर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये गाना, लेकिन उससे पहले कुछ एड ब्रेक का टाइम हो गया है। एंड आप भी मुझे कॉल लगा सकते हैं इस ब्यूटीफुल लाइव फोन इन कार्यक्रम में, नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896।
2: हाय दी अनन्या जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
6: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
7: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
6: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
8: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

बिल्कुल दोस्तों, लैंग्वेज हमेशा प्यार से ही बोलनी चाहिए। इतनी प्यारी सी आपकी आवाज़ है एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसान को इतनी प्यारी सी वाणी मिली है, आवाज़ दी है, तो उसका हमें अच्छा यूटिलाइज करना चाहिए। और जब भी बोलो अच्छा बोलो। वैसे दोस्तों मैं आपको समय बता देती हूँ, 4:56 हो चुके हैं राइट नाउ। और अभी आपने ये हरियाणवी ट्रैक सुना, अब मेरे जाने का भी समय हो गया है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, नेक्स्ट प्रेजेंटर आ चुके हैं यहाँ पर, वो आपको देने वाली है एंटरटेनमेंट का डोज एंड इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारे उनके पास हैं जो आप तक वो शेयर करेंगी। आप बने रहिए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन।
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने मंगलुरु तट के पास एक समुद्री खोज और बचाव अभियान में मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू माथा से 6 मछुआरों को बचाया है। बल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि कल खराब मौसम में इस नौका को नुकसान पहुंचने और उसमें पानी भर जाने के बाद

0: पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले दो वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
2: चार दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: जनरल धीरज सेठ ने 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी चार दशकों से अधिक समय तक राष्ट्र सेवा के बाद आज सेवानिवृत्त हो गए हैं। जनरल सेठ पुणे स्थित खड़कवासला राष्ट्रीय रक्षा का

हेलो जी, हेलो, गुड इवनिंग है। रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। शाम हो चुकी है और मौसम भी आज एकदम औसम मूड में है। ठंडी ठंडी हवाएं, हल्की बहल के बादल और दिल में ढेरों सारी मस्ती एहसास। ऐसे शानदार मौसम में आप सभी का स्वागत है श्रोताओं, मेरी यानी आरजू रीना के साथ। अगले दो घंटे तक मैं आप सभी के साथ रहने वाली हूँ, ढेर सारी बातें करने वाले हैं। बॉलीवुड का तड़का, आपके पसंदीदा सुपर हिट गाने, मजेदार बातें, दिलचस्प अपडेट यानी कि देश दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आज की तारीख बहुत खास है क्योंकि आज है 30 जून और 1 जुलाई से क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं उसके बारे में ही बात करेंगे। बस आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए, इस मौसम के साथ साथ मौसम का भी आनंद लीजिए। और टेम्परेचर की बात करूँ तो भैया आज का जो वेदर है, मतलब ये कहते जो ये बारिश वाली मौसम है, उमस इसको बोलते हैं, थोड़ी सी बारिश फिर बादल उसके बाद हल्की धूप, यानी कि अब उमस वाली गर्मी स्टार्ट होगी जहाँ चिपचिपापन, आप कूलर के आगे बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई जैसे चिपचिपा सा फील होएगा, जैसे आपके हाथों पर चुन्नी चिपक गई हो, इस तरीके से ये उमस वाली अब गर्मी यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। सो बस आरजू रीना के साथ कनेक्ट रहिए, रेडियो की सुई बिल्कुल भी नहीं घुमानी है जी, आरजू रीना के साथ कनेक्ट रहिए जहाँ ढेर सारी बातें करेंगे शाम 7 बजे तक। फिलहाल ये

0: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
1: तो आइए AS के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है,
0: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: कॉल 9045912348।
2: Architectures, swap out parts.
3: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
4: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

गुड वाली इवनिंग है अर्जुरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6। और समय की बात करूं तो 5:18 हो चुके हैं श्रोताओं। इवनिंग मस्ती शो में आप अर्जुरीना के साथ कनेक्ट है। और देखिए शाम का वक्त है और इस टाइम हर कोई ऑफिस से बस घर पहुंचने के जल्दबाजी में होते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं मेरी जान, आपको कहां कहां ट्रैफिक जाम मिलने वाला है। यानी कि दिल्ली रोड की तरफ से आप जाएंगे तो वहां भी आपको ट्रैफिक जाम मिलेगा। साथ ही रामपुर रोड, बुद्ध बाजार, लाजपत नगर, कटघर चौराहा, डिप्टीगंज और डबल फाटक की तरफ आपको यानी कि ट्रैफिक जाम मिल सकता है। अदरवाइज अगर आप और कहीं भी हैं और ट्रैफिक में हैं तो हमें आप मैसेज करके बता सकते हैं। नंबर है 9823789689 ताकि उस रूट से और भी कोई जाने वाले हैं वो थोड़ा ट्रैफिक से बच सके। और साथ ही साथ ये कहेंगे कि आपको यानी कि रेलवे क्रॉसिंग के बाद भी यहाँ पर आपको जाम बहुत ज़्यादा मिलेंगे अगर रेलवे स्टेशन की तरफ से आप जाएंगे, क्योंकि अक्सर वहाँ पर आप चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, वहाँ पर आपको ट्रैफिक जाम मिलता ही मिलता है। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं आज यानी कि 30 जून है और 30 जून को क्या स्पेशल डे है उसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ वेदर अपडेट के बारे में, वेदर अपडेट बहुत ज़रूरी है। और आज का मौसम तो देखिए आप, अब बारिश अब भी यानी कि 10 बजे के बाद बारिश बताया जा रहा है कि 10 बजे के बाद बारिश झमाझम पड़ने वाली है, पड़ने की संभावना बताई जा रही है यानी कि 10 बजे से लेकर सीधा सुबह 8 बजे तक। अब देखना ये है कि 10 बजे से सुबह 8 बजे तक बारिश आती है या नहीं आती। लेकिन जब बारिश आ जाए तो समझो जो काफ़ी दिन से सो नहीं पा रहे थे ना क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, वो आज चैन की नींद सोने वाले है। चलिए श्रोताओ और भी ढेर सारी बातें करते रहेंगे। फिलहाल एक गाना जो कि जब भी बारिश आती है ना तो आप मोर की आवाज़ ज़रूर सुनते हैं, लेकिन उससे ये मोर की आवाज़ पर एक बहुत ही शानदार गाना है। और यह गाना आपने सुना भी है और मूवी, और जो ये मूवी है आपने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार देखा ही देखा होगा। मैंने तो ये मूवी बहुत बार देखी है। अक्सर हम जब छोटे थे तो संडे वाले दिन ये मूवी हम देखते ही देखते थे। तो चलिए ये गाना सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं आप सभी के बीच।

0: क्या बात है जी, गुरु रंधावा के गाने सच में बड़ा ही फैंटास्टिक वाला होता है श्रोताओं। और समय की बात करूं अभी तो 5:29 हो चुके हैं। इवनिंग मस्ते शो में आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है और आज का डे हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास है। कहते हैं कुछ लम्हे सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए संजोने के लिए होते हैं और इन्हीं खूबसूरत पलों को यादगार बनाता है। और हमारा है कैमरा जो हमें यादगार बनाता है, यानी कि आज है नेशनल कैमरा डे। ये दिन हमें याद दिलाता है कि एक तस्वीर सिर्फ फोटो नहीं होती बल्कि उसे जुड़ी मुस्कान, एहसास और यादें भी होती हैं। बचपन की शरारतें हो, परिवार के साथ बिताए पल हो या दोस्तों के साथ मस्ती, कैमरा हर कहानी को हमेशा के लिए कैद कर लेता है। क्योंकि हम इंसान से तो बार बार मिल नहीं सकते हैं ना, एक ही बार अपने दोस्तों से मिलते हैं, फिर पता नहीं कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे। लेकिन जो कैमरे के अंदर कैद तस्वीरें हैं, जब भी मन करता है हम उसको देखते हैं, याद करते हैं और फिर मुस्कुराते हैं। तो आज मेरा आप सभी से क्वेश्चन है कि बचपन की, आजकल के जो जेंजी है, आजकल के जो बच्चे हैं, मतलब मम्मी पापा भी स्मार्ट हो चुके हैं, उनके जन्म के बाद उनकी जो फोटो है होती है ना, वो हर चीज संजो कर रखते हैं। लेकिन बड़ों से पूछना है कि आपके पास भी कोई आपकी पुरानी बचपन वाली फोटो है आज भी? अगर है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। नंबर है 9837896896। और साथ ही साथ आज का एक और दिन बहुत ही ज्यादा बेहद खास है क्योंकि आज कैमरा डे के साथ साथ सोशल मीडिया डे भी मनाया जाता है। यानी कि हमें जोड़ने, सीखने और अपनी प्रतिभा दुनिया तक पहुंचाने का शानदार मंच है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। हमेशा सही जानकारी साझा करें, अफवाहों से बचें, दूसरों की निजात का सम्मान करें और सोशल मीडिया का इस्तेमाल यानी कि पॉजिटिविटी के लिए ही करें। कभी कभी होता है ना कि हम बहुत सी फेक जो न्यूज़ भी देख लेते हैं और उस पर यकीन कर लेते हैं, तो कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आपको सही मिले। और आप कुछ चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं तो वो भी थोड़ा सोच समझ के करें। फिलहाल आज का मेरा क्वेश्चन आप सभी से यही है कि बचपन की तस्वीरें भी हैं क्या आपके पास? अगर है तो मैसेज करके बताइए जी। फिलहाल एक बहुत ही शानदार गाना, अगर फोटो नहीं है और आप खा, यानी कि देखिए हमारे फोन में ना मम्मी पापा की तस्वीरें बहुत कम होती है, अगर नहीं है तो आज ही फोटो खींचिए, उनके साथ फोटो खींचिए। क्योंकि हम दोस्तों के फोटो तो अपने फोन में बहुत रखते हैं लेकिन मम्मी पापा के बहुत कम फोटोज होते हैं, जबकि फोन भी वही दिलाते हैं, हर जिंदगी में आगे बढ़ना है वही सिखाते हैं, लेकिन उन्हीं की तस्वीरें हमारे फोन में कम होती है। सो ये गाना आप सभी के लिए मेरी तरफ से डेडिकेट है। अगर आपके फोन में तस्वीरें नहीं है उनकी तो फोटो आज जरूर क्लिक करिए। लेकिन उससे पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया श्रोताओं।
1: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

हेलो जी, गुड वाल इवनिंग है अर्जुरीना के साथ अहमदाबाद 89.6। और समय की बात करूं तो 5:40 हो चुके श्रोताओं। और वेदर, अब यानी कि वेदर की बातें करने वाले हैं, क्योंकि देखिए वेदर की बात करना बहुत जरूरी है, जो कि काफी दिन से हम गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान थे ना कि हाय गर्मी क्या होएगा, भगवान जी पता नहीं क्या करके मानेंगे, लेकिन भगवान जी ने थोड़ा सा रहम है ना वो बरसा दिया। वो कहते हैं कि तुम सब मेरे बच्चे हो यार, ऐसे थोड़ी देख सकता हूँ मैं तुम्हें। तो यानी कि वेदर की अगर मैं बात करूँ तो 1 वीक तक यानी कि संडे तक बारिश बताया जा रहा है कि मुरादाबाद में यानी कि बारिश आने की संभावना है। यूपी के कई राज्यों में बारिश आंधी तूफान की भी संभावना जताई जा रही है। आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आंधी तूफान बहुत तेज चलती हैं तो खुले एरिया में जाने से बचें, क्योंकि खुले एरिया में अगर आप जाने से बचेंगे, अगर कुछ उड़ के भी कुछ आपके ऊपर गिरेगा तो आप उनसे बच सकेंगे। तो देखते हैं कि ये मुरादाबाद में अगले संडे तक यानी कि बारिश आती है या फिर बस थोड़े से फुहारों के साथ ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बस फुहारों के साथ ख़त्म नहीं होना चाहिए भैया, क्योंकि उमस वाली फिर गर्मी हो जाएगी, यानी कि जो ये गर्मी है ना उससे भी बदतर वाली गर्मी होती है, जो उमस वाली गर्मी होती है। तो बस भगवान जी यही कहेंगे, थोड़ा सा रहम कर लीजिए और कम से कम एटलीस्ट 2 दिन भी बारिश हो तो ढंग में हो जाए, एक बार धरती माँ को थोड़ा ठंडक मिले। ऊपर से जो हमारे किसान भाई हैं, खेतों में धान लगने शुरू हो गए हैं, तो अब देखिए धान लगाने के लिए तो पानी की जरूरत पड़ती है, कहाँ तक कोई 12th से ही पानी मैनेज कर पाएगा। तो इस टाइम बरसात यानी कि बारिश आनी बहुत जरूरी होती है। चलिए फिलहाल एक गाना सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं श्रोताओं आप सभी के बीच, क्योंकि शाम

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: yo te creo.
1: Llena el lunes de la pesa, pesa, pesa. Llena.

0: रिमूव फ्रॉम द अपर पॉकेट ब्रिटिश चोर।
1: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। पैसा पैसा पैसा, तेरा पैसा मेरा पैसा, बस मेरा पैसा है ना। सो आप अर्जेंटीना के साथ कनेक्ट है जी इवनिंग मस्ती शो में, और आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। देखिए गुनगुनाना बहुत जरूरी है, और ये आपने वेलकम टू जंगल मूवी का गाना एंजॉय किया है श्रोताओं। और ये कहा जा रहा है कि वेलकम टू जंगल मूवी यानी कि ब्लॉकबस्टर पर यानी कि बहुत ज्यादा छाई हुई है ये मूवी, बहुत ज्यादा कमाल करी है भैया। अक्षय पाल जी की है, और वैसे भी ये मुरादाबाद में जो एंट्री कर चुके हैं है ना, जब मुरादाबाद में हर कोई एंट्री कर जाता है ना भाई, वो तो एक नंबर का क्या फेमस ही हो जाता है इंसान। वैसे अक्षय पाल जी की बात करूं भैया, तो उनकी हर एक मूवी बड़ी ही शानदार होती है, जो इंसान ना हंसना चाहे उसको भी हंसा देते हैं ये। तो अभी तक आपने ये मूवी नहीं देखी तो गलत बात है जी, जाइए मूवी देखकर आइए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ जाइए, फैमिली के साथ जाने का अलग ही मजा है। और पैसा वाला मूवी यानी कि जब जिंदगी में पैसा है तो हर कोई, हर रिश्तेदार आपके अपने हैं, अदरवाइज पैसे नहीं है तो आपके अपने भी अपने नहीं है। आजकल के यानी कि जिंदगी में ना जो इंसानियत है उसको कोई नहीं देखता है, बस देखता है जिसके पास पैसा है वही दिलदार है, वही दिलवाला है, जिसके पास पैसे नहीं है उसके पास कोई आता जाता नहीं है, कोई पूछता नहीं है। तो इसीलिए आप सभी से यही कहना चाहेंगे, जिंदगी में आगे बढ़ो, कमाओ, कुछ करो, जिंदगी में कुछ करना बहुत जरूरी है। और यूं ही अर्जेंटीना के साथ कनेक्ट रहिए और सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। फिलहाल तो मैसेज आ चुके हैं मेरे पास बहुत सारे, तो उनको चलिए देखते हैं।
2: बट आई डाउट मुंडे आते बल्ले नी तू छड्डे आनी कक जदों संडे मंडे करे तेरा छुट्टे खांदा लक।
1: गुड इवनिंग रीना जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी। आयुब जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं रामपुर से। और अगले मैसेज की बात करूं तो वेलकम टू जंगल मूवी देखने जा रहे हैं विद फैमिली के साथ। गुड इवनिंग रीना जी, आप कैसी हैं? पिक्चर देखने जा रहे हैं, क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात है कि आप फैमिली के साथ जा रहे हैं। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं विक्की सागर जी, क्या बात है जी, फैमिली के साथ मूवी देखने का अलग ही मजा होता है। साथ ही अगले मैसेज की बात करूं तो ये दीपक जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, गुड इवनिंग पहुंचाते हैं, वेरी गुड इवनिंग जी। और इनका कहना है कि ये मूवी तो हमने देख ही लिया है, फर्स्ट शो देखा है मैडम जी, क्या बात है जी, यानी कि हम पीछे नहीं रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। रहमान जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, ये

लदावली से कनेक्ट होते हैं और इनका कहना है कि जी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जी, और आपका शो सुन रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, गाने पता नहीं आप कहाँ से लेकर आती हो भैया, शो का मूड ही चेंज कर देती हो बिल्कुल जी, क्या बात है, करना पड़ता है आप सभी के लिए। चलिए होले होले गाड़ी चलाइए और गाना भी सुनते रहिए और आर्जेरीना के साथ यूं ही क्या करिए जी, अरे कनेक्ट रहिए जी, कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है जिंदगी में, साथ रहिए, साथ रहना भी बहुत जरूरी है। और ये जो अगला गाना है वो भी बड़ा ही फैंटास्टिक है श्रोताओं, तो इस गाने को एंजॉय करेंगे और आएंगे आप सभी के बीच लौट कर। इतने नहीं जाना जी, आर्जेरीना के साथ ही कनेक्ट रहना, रेडियो की सुई बिल्कुल भी इतने इतने नहीं घुमाना है। चलिए

0: ಹಾರ್ದ ಇರಿದು.
1: दादी बोलती है तेरी शादी कभी नहीं होगी.
2: क्यों?
1: दादी बोलती है तू दुनिया में सबसे अलग है.
2: तेरी दादी और दुनिया को पता नहीं है.

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

दिल्ली और चार राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों से शिक्षा को न्यायसंगत और समावेशी समाज के निर्माण के साधन के रूप में उपयोग करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवाओं को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पख्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने पाकिस्तान से अफगान क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के कथित उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। तालिबान के उपप्रवक्ता हमदुल्ला फितरत के अनुसार 28 जून की रात को हुए इन हवाई हमलों में 36 लोगों की मौत हुई और 163 अन्य घायल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है यार जुरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। फिलहाल दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, यानी कि 6:02 हो चुके हैं श्रोताओं, और आप आर जुरीना के साथ कनेक्ट। यानी कि 1 जुलाई से ये कहा जा रहा है कि हमें राहत मिलने वाली है। अब राहत क्यों मिलने वाली है, अरे ध्यान से सुनिए, मैं हूं ना बताने के लिए। जिनको पेट्रोल डीजल की खरीद को लेकर परेशान रहते थे कि भैया क्या करें, जब देखो पेट्रोल डीजल महंगा हो जाता है और हर घर में गाड़ी बाइक स्कूटी है जो कि बिना पेट्रोल डीजल के बिना वो आगे बढ़ नहीं सकते हैं। अब देखिए, इंसान को भूख लगता है तो उसको खाना जरूर चाहिए, अदरवाइज एनर्जी लो हो जाती है। वैसे गाड़ी है, अगर उसको पेट्रोल डीजल सर्विसिंग कराते रहेंगे तो वे एकदम चकाचक रहती है। अब वही ये कहा जा रहा है कि अब पेट्रोल डीजल है, यानी कि थोड़ा राहत मिलने वाला है, सस्ता होने वाला है। तो बस ये खबर आपके लिए है, बल्ले बल्ले है जी आपके। कुल मिलाकर यानी कि जुलाई लेकर आई है राहत की नई शुरुआत। उम्मीद है कि इसे आम लोगों के साथ साथ कारोबार और परिवहन क्षेत्रों को भी बड़ी सुविधा मिलने वाली है। फिलहाल इतना ही, आगे भी और ढेर सारी बातें करते रहेंगे। बस आरजुरीना के साथ कनेक्ट रहिए, ऑल ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और इसी बीच में लेकर आने वाली हूँ आप सभी के लिए क्या, अरे वही कड़क चाय नहीं जी, कड़क हर किसी को बस यही रहती है। देखिए बरसात शुरू होती नहीं है कि बस भैया कड़क चाय बना दो, कड़क चाय पीनी है हमें, और पकौड़े होने चाहिए। अगर देखिए आप ऐसे करते तभी तो बारिश रुक जाती है, पिक्चर खींचने लग जाते हैं हम, बारिश आती नहीं लेकिन पिक्चर जरूर, स्टेटस लग जाते हैं, इंस्टा पे स्टोरी लग जाती है भैया कि बरसात हो गई है आज तो मुरादाबाद में, धत तेरी की इतनी ही नजर लग जाती है उसको। लेकिन हम कड़क चाय लेकर नहीं, कड़क सवाल लेकर आने वाले आप सभी के लिए श्रोताओं। सो एक गाना और बहुत ही शानदार, उसके बाद लौट कर आते हैं आप सभी के बीच और करेंगे क्या, अरे ढेर सारी बातें। सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6।

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

क्या बात है जी, दिलजीत सिंह की आवाज में आपने गाना एंजॉय किया है अर्जरीना के साथ। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 6:21 हो चुके हैं श्रोताओं, और इस बीच में आप सभी के लिए लेकर आ गई हूं एक कड़क सवाल। और कड़क सवाल भी बहुत ही आसान है, जो कि हर किसी के घर में होता है, लेकिन हमें एक्चुअल में नहीं पता होता कि हिंदी में उसको हम बोलते क्या है। तो आज का मेरा कड़क सवाल ये है कि स्टोर रूम को हिंदी में क्या कहते हैं। हमारा मैजिकल नंबर है 9823789689 पर आपने मैसेज करके बताना है। वंस अगेन एक बार और रिपीट कर रही हूँ मैं, स्टोर रूम को हिंदी में क्या कहते हैं, सोचिए और मैसेज करिए। फिलहाल ये वाला जो गाना है ये भी बहुत ही शानदार गाना है।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।
4: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
5: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

हेलो, गुड वाली इवनिंग है जी आर जरीना के साथ। और समय की बात करूँ तो 6:32 हो चुके श्रोताओं, और आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। और एक बात, एक बहुत ही राहत की बात है। एक्चुअल में ये होता है कि हम किसी अनजान व्यक्ति को नंबर देने से पहले 100 बार सोचते हैं कि या नंबर दे इसको या ना दे, कभी स्कैम तो नहीं हो जाएगा हमारे साथ। लेकिन अब आपके लिए एक बहुत ही शानदार फीचर आने वाले हैं। जो भी देखिए, आज के टाइम में हर कोई व्हाट्सअप यूज़ करता है ना, उसके बिना तो हमारी ज़िंदगी अधूरी लगती है। जैसे आधार कार्ड के बिना हमारी पहचान नहीं है, वैसे व्हाट्सअप के बिना हमारी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी होती है। चाहे किसी के साथ चैटिंग करनी हो, स्टेटस लगाना हो, चाहे क्लोज फ्रेंड्स को ही दिखाना हो। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आप व्हाट्सएप पर बिना नंबर शेयर करे भी आप किसी से भी चैटिंग कर सकते हैं। यानी कि ऐसी प्राइवेसी, एक ऐसी फीचर आने वाली है जिसमें आपको नंबर शेयर नहीं करना पड़ेगा। आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा भैया कि हमारा जो नंबर है वो रिवील हो जाएगा और सबके पास पहुंच जाएगा, सबको पता चल जाएगा किसका ये नंबर है। वो फिर वो कहीं किसी और को शेयर ना कर दे, इसलिए हम नंबर किसी को शेयर भी नहीं करते ना। लेकिन अब हमारे लिए आसान हो जाएगा कि आप बिना नंबर दिए भी व्हाट्सएप पर आप चैटिंग कर सकते हैं। और ऐसी अपडेट आप जानना चाहते हैं तो देखिए, ट्यूनिंग करके रखना पड़ेगा हमारे शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी, जहां सुबह से लेकर शाम तक आप सभी के लिए अच्छी अच्छी बातें और गाने तो भैया होते ही है हमारे रेडियो के, बड़ा ही फैंटास्टिक वाला। चलिए फिलहाल एक और गाना सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आएंगे। और आज का कड़क सवाल भी यही है कि स्टोर रूम को हिंदी में आखिरकार कहते क्या है। हर किसी के घर में स्टोर रूम है, बस आपने ये बताना है कि उसको हिंदी में क्या कहते हैं। चलिए जी, एक बहुत ही शानदार गाने के बाद लौट कर आते हैं आप सभी के बीच।

0: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आर्जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6। और समय की बात करूँ तो 6:41 हो चुके श्रोताओं। और अब हम बात करने वाली, देखिए बरसात शुरू हो गई है और बरसात के मौसम में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस टाइम मच्छर है जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और मच्छर काटने के बाद मलेरिया, बहुत सारी बीमारियां हो जाती है हमें, जिसके लिए क्या करना पड़ता है, हम हॉस्पिटल जाते। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका हम ध्यान रखेंगे तो हम रह सकते हैं ठीक। इस टाइम आपने क्या करना है, जो कूलर का पानी है उसको आपने डेली चेंज करना है, क्योंकि मच्छर है यानी कि पानी में बहुत ज़्यादा पनपते हैं और साथ ही साथ साफ पानी में वो बहुत ज़्यादा पनपते हैं। तो आपने क्या करना है, यानी कि ये जो मच्छर है ये ज़रूरी नहीं है कि रात के टाइम ही एक्टिव होते हैं, बल्कि जो मलेरिया वाले डेंगू वाले मच्छर होते हैं वो सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है, फुल स्लीव के कपड़े पहनने हैं और अपने जो गमले हैं उसको भी साफ सफाई करना है। ये नहीं कि हमने गमले लगा दिए उसकी साफ सफाई नहीं करेंगे, साफ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। और खासकर बरसात के मौसम में पानी अगर आप घर में भर कर रख रहे हैं तो उसको ढक कर रखिए, ढक कर रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज मच्छर पनप सकते हैं। वैसे ही मच्छर बहुत ज़्यादा है और बरसात होते ही मच्छर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि मच्छरों से बचने के लिए हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो हम मच्छर से बच सकते हैं, आपको मैसेज करके बताना है। नंबर है 9837896896 पर श्रोताओं जल्दी मैसेज करिए। और आज का कड़क सवाल भी बहुत ही आसान है कि आखिरकार स्टोर रूम को हिंदी में कहते क्या है, सोचिए और फटाफट मैसेज करिए क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है।
1: पधनिसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।
2: वो नहीं आने वाली, वो बेवफा, छलावट की।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

नीला समंदर, ओह माय गॉड। वैसे भी आज भैया सच बताए तो आसमान में आप देखेंगे तो नीला नीला ही छाया हुआ है, क्योंकि आज का वेदर थोड़ा सा कूलिंग वाला है, कूलिंग वाला, क्योंकि बारिश हो गई है ना, और साथ ही साथ कूलिंग के साथ साथ थोड़ी उमस वाली गर्मी भी है ना श्रोताओं। सो इसी बीच आपके पास मौका है आज के जो कड़क सवाल है उसका आंसर देने के लिए कि आखिरकार स्टोर रूम को हिंदी में कहते क्या है। एक मौका और मिलता है आप सभी को सोचने के लिए। फिलहाल ये वाला गाना एंजॉय करिए और महसूस करिए, क्योंकि अगली बारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है।

0: कितना प्यारा गाना है, जादू की झप्पी दे दा तू अब भी मिलूंगी फिर ना दोबारा। आय हाय क्या बात है जी, जादू की झप्पी जब मिल जाए तो सोचिए पूरा दिन बिंदास हो जाते हैं ना। देखिए बड़े खुश हो रहे हैं ना। आखिरकार झप्पी भी तो चाहिए, किसकी चाहिए वो तो आप बता पाएंगे। चलिए जी फिलहाल आगे शो में बढ़ते हैं। आज की जो कड़क सवाल है हमारे पास, यानी कि स्टोर रूम को हिंदी में क्या कहते हैं, इसी के साथ साथ हमारे साथ एक कॉलर कनेक्ट हुए हैं, तो आइए उनसे जानते हैं आज के कड़क सवाल का कड़क आंसर होता क्या है। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी सर, गुड इवनिंग।
1: गुड इवनिंग मैम,
0: कैसे हैं सर आप?
1: एकदम फर्स्ट क्लास, ठीक है, आप बताइए आप ठीक हैं?
0: हाँ जी हाँ जी, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सर कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम नरेश है, मैं लाइन पर में रहता हूँ, आपके स्टूडियो के पास में रहता हूँ।
0: नहीं नहीं सर, मेरे पास तो वैसे चेयर है अभी तो।
1: हाँ जी। नहीं नहीं, आपके मतलब जब आपका स्टूडियो उसी साइड रहता हूँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी, तो सर आज मैंने कड़क सवाल पूछा है कि आखिरकार स्टोर रूम को हिंदी में क्या कहते हैं, आपको इसका आंसर पता है सर?
1: जी मैम, ये आपका स्टोर रूम को भंडार कक्ष बोलते हैं हिंदी में।
0: अच्छा अच्छा, आज हम पता है क्या हुआ, जब हम डॉक्टर के पास गए थे तो भंडार को किसी ने भंडारा बोल दिया।
1: ज्यादा फर्क नहीं है भंडार और भंडारा।
0: हाँ तो मुझे लगता है कि भंडारा भी करवाते रहना चाहिए, है ना सर? चलिए सर, थैंक यू सो मच, आपने राइट आंसर दिया। अच्छा ये बताइए आपको खाने में क्या पसंद है?
1: मैम खाने में
0: जंक फूड बताने आपको।
1: जंक फूड? नहीं, जंक फूड तो वैसे मैं बहुत कम ही खाता हूँ, लेकिन कभी कभार बर्गर खा लेते हैं। बर्गर?
0: हाँ तो सर आप बर्गर खा लीजिए, लेकिन पेमेंट आपको खुद करना पड़ेगा। चलिए जी, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। ओके चलिए श्रोताओं, इन्होंने बता दिया है कि भंडार कक्ष है, यानी कि ये बनते हैं आज हमारे शो के विनर। फिलहाल आप सभी के जो मैसेज आए हैं इतने प्यारे प्यारे इतने शानदार वाले, सो वो भी शामिल करना बहुत जरूरी है। सो ये हमारे साथ कनेक्ट होती है संजू। हाय रीना दी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आज का मौसम बड़ा ही औसम है और आज हमारे घर कचौड़ियां बन रही हैं, कृपया आप खाने के लिए आ जाए क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है कचौड़ियां, और उसके साथ चाय तो नहीं, उसके साथ मिल जाए, यानी कि क्या मिलना चाहिए यार, खीरे वाली रायता, आय हाय मजा आ जाता है सच बताऊं, और उसके साथ होना चाहिए तिखड़ तिखड़ वाली चटनी। चलिए थैंक यू सो मच जी, आपने पूछा इतना हमारे लिए बहुत है, आपने खाया मैंने खाया पेट भर गया।
2: आग लगेगी।
0: और अगले मैसेज की बात करूं तो इन्होंने तो कोई नाम नहीं लिखा है भैया, इसलिए नहीं लिखा है पता चले कि हम इनके घर न पहुंच जाए। तो ये बोलते हैं कि भंडार है और इनके लास्ट 4 डिजिट है नंबर के 9871। और ललिता कश्यप जी का मैसेज आता है, यानी कि भंडार कक्ष बोलते हैं। ओके अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे पास, यानी कि डॉक्टर सुजीत जी कनेक्ट होते हैं काट रोड मुरादाबाद से, और इनका कहना है कि स्टोर रूम को भंडार घर कहते हैं, क्या बात है। अगले मैसेज की बात करूं तो इनका कहना है कि भंडार है, लेकिन इन्होंने भी अपना नाम अच्छा इन्होंने टेक्स्ट मैसेज भी किया है और व्हाट्सएप मैसेज भी किया है, क्या बात है सर क्या बात है, तालियां होनी चाहिए आपके लिए, तो बहुत बढ़िया। यानी कि इधर मैसेज ना देखा जाए उधर तो जरूर देखा जाएगा, लेकिन सर हम मैसेज टेक्स्ट हो या इंस्टा हो हर सारे मैसेज देखते हैं। और अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, स्टोर रूम को हिंदी में भंडार कक्ष कहते हैं रीना जी। ओके जी, इनका नाम है सॉरी सर, आपका नाम तो मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपके यानी कि जो लास्ट 4 डिजिट है नंबर के 0301, सर कृपया आप अपना नाम भी बता दीजिए, क्योंकि आपका नाम तो मतलब मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है बट मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, तो इसलिए मैं नाम नहीं रिवील कर सकती। और अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं बबली जी, और कहते हैं जी, और इनके साथ गीता कश्यप, राम गोपाल, मतलब इन्होंने अपने दोस्तों के नाम मेंशन कर दिए हैं, क्या बात है जी। और एक गाना प्ले करना है। देखिए गाना तो हम तभी प्ले कर पाएंगे जब आप राइट आंसर पहुंचाते हैं। राइट आंसर अगर आप पहुंचाते हैं तो आपके गाने डेफिनेटली प्ले होंगे जी। हाँ विनीत जी कनेक्ट होते हैं हमारे साथ। बिल्कुल जी विनीत, मतलब मैं बोल नहीं पा रही थी, कंफ्यूज थोड़ा हो जाते हैं जी। फिलहाल आप सभी ने राइट आंसर दिया है श्रोताओं, भंडार कक्ष बोलते हैं यानी कि स्टोर रूम को। और कल एक और बहुत ही शानदार कड़क अपडेट लेकर आएंगे आप सभी के लिए और मिलेंगे सेम टाइम एंड सेम जगह ढेर सारी बातें करने के लिए। अभी के लिए मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत क्योंकि कल भी तो मिलना है ना। और बारिश देखिए रात को 10-11 बजे से बताया जा रहा है कि सुबह तक बारिश आने की संभावना जताई जा रही है। बस हम भगवान से यही कहेंगे कि संभावना मत जताइए, बरस जाइए। जरूरी नहीं है कि जो गरजता है वो बरसता नहीं। अरे जो गरजता है वो अच्छे से बरसता है ना, जब ऐसा बरसता है भैया कि वेदर है ना कूल कूल हो जाता है। अब देखिए हमारे इधर तो बारिश हो रही है ना, तो थोड़ा सा वेदर चेंज हुआ है, राहत मिली है। वहीं अगर मैं नैनीताल की बात करूँ तो बरसात इधर हो रही है भैया, और उधर पर धुंध इतना ज्यादा छा गया है, इतना कोहरा है कि देखने में बड़ी मुश्किल हो रही है उधर पर। मतलब भगवान जी दो बन चुके हैं, कहीं का जो उत्तराखंड का जो वेदर है वहां धुंध वाला वेदर हो जाता है, फोग वाला वेदर हो जाता है, और हमारे इधर इज वेरी हॉट। क्या करें, यूपी वाले बहुत हॉट है ना जी। चलिए जी, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, कल मिलेंगे सेम टाइम एंड सेम जगह। बाय श्रोताओं, और एक प्यारा सा गाना आप सभी के लिए, सो इस गाने को एंजॉय करिए। मिलते हैं बहुत जल्द कल।

देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। यहां टाटा समूह और एयरबस मिलकर

0: लगातार बनाए रखा है।
1: चार दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने कर्नाटक के मंगलुरु तट के पास समुद्र में खोज और बचाव अभियान चलाकर मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू भाता के 6 मछुआरों को बचाया है। तटरक्षक बल ने सोशल मीडिया पर बताया कि कल खराब मौसम के कारण नौका क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें पानी भरने लगा। इसके बाद रिमोट से संचालित लाइफ बॉय की मदद से सभी 6 मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में छात्रों से शिक्षा को न्याय संगत और समावेशी समाज के निर्माण के साधन के रूप में उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवाओं को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि पाकिस्तान ने अफगान क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के कथित उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी
3: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: विकास की नई सोच, परंपरा का नया सम्मान, स्वाद, संस्कृति और रोजगार को नई उड़ान देता है आपका अपना फेवरेट कार्यक्रम जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे। जैसे कि हमने आपको प्रोग्राम का नाम तो बता ही दिया है, और आज इस प्रोग्राम को मैं अकेला होस्ट नहीं कर रहा हूँ, पहले अपना नाम बता देता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त RJ आनंद, और आज मेरे साथ इस प्रोग्राम में अपना साथ देने के लिए आ गई है कौन, मेरी प्यारी दोस्त
1: RJ रीना।
0: यस RJ रीना, कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो?
0: मैं बहुत ही अच्छा हूँ।
1: दोस्तों, उत्तर प्रदेश यानी विविधताओं का प्रदेश, यहाँ हर कुछ किलोमीटर पर भाषा बदलती है, पहनावा बदलता है, और सबसे मजेदार बात, स्वाद बदल जाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा RJ रीना आपने। अगर हम आगरा जाएं तो वहाँ का पीठा याद आता है, अगर हम वाराणसी जाएं तो वहाँ की कचौड़ी, जलेबी की खुशबू मन मोह लेती है, मथुरा के पेड़े, कानपुर के ठगू के लड्डू और मेरठ की रबड़ी, अयोध्या की मिठाइयाँ, आय हाय हाय, उत्तर प्रदेश का हर जिला अपने स्वाद में एक कहानी समेटे हुए है।
1: और अब यही स्वाद, यही परंपरा उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनने जा रहे है, क्योंकि योगी सरकार लेकर आई है एक बेहद खास पहल, एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना।
0: दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य सिर्फ व्यंजनों को पहचान देना नहीं है, बल्कि उन्हें सुरक्षित करना, आधुनिक बनाना, रोजगार से जोड़ना और दुनिया तक पहुंचाना है।
1: यानी अब हमारे गांव कस्बों की रसोई से निकलने वाले पारंपरिक व्यंजन अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सकते हैं।
0: अरे वाह, यह सोचकर तो बड़ा गर्व महसूस होता है, लेकिन जरा हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताइए, आखिर यह योजना कैसे काम करेगी?
1: जरूर, देखिए दोस्तों, इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश देश के हर जिले के एक खास पारंपरिक व्यंजन की पहचान की जाएगी, फिर उस व्यंजन को गुणवत्ता, स्वच्छता और पैकेजिंग के आधुनिक मानकों के अनुसार विकसित किया जाएगा।
0: यानी जो स्वाद वर्षों से लोगों के दिलों में बसा है, उसे अब एक नई तकनीकी और बेहतर प्रस्तुति के साथ दुनिया के सामने लाया जाएगा।
1: बिल्कुल, और इसके लिए सरकार ने कई प्रतिष्ठित संस्थानों का सहयोग भी लिया है,
0: जैसे कि FSSAI यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण।
1: जी हाँ, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। इसके अलावा CFTRI यानी कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट और NIFTEM जैसे बड़े संस्थान भी इस योजना में सहयोग कर रहे हैं।
0: तो ये संस्थान क्या करेंगे?
1: ये संस्थान हर जिले के व्यंजन के लिए स्टैंडर्ड रेसिपी मैनुअल तैयार करेंगे, यानी उस व्यंजन को बनाने की एक मानक प्रक्रिया तय की जाएगी, ताकि उसका स्वाद, गुणवत्ता और स्वच्छता हर जगह एक जैसी बनी रहे।
0: मतलब अगर कोई पर्यटक मथुरा के पेड़े खाए या वही पेड़े विदेश में पैक होकर पहुंचाए, तो उसका स्वाद और उसकी गुणवत्ता एक समान हो।
1: बिल्कुल सही समझा आपने, और इससे सबसे बड़ा फायदा होगा विश्वास का निर्माण।
0: दोस्तों, आज के समय में लोग सिर्फ स्वाद नहीं देखते, वो यह भी जानना चाहते हैं कि खाना कितना सुरक्षित है, कितना पौष्टिक है और उसकी गुणवत्ता कैसी है।
1: और इसी वजह से इस योजना में न्यूट्रिशन लेबलिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
0: यानी अब पैक किए गए पारंपरिक व्यंजनों पर पोषण संबंधित जानकारी भी दी जाएगी श्रोताओं,
1: साथ ही QR कोड और बार कोड जैसी सुविधाएं भी होगी, ताकि ग्राहक आसानी से उत्पाद की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
0: वाह, यानी पारंपरिक स्वाद लेकिन आधुनिक अंदाज।
1: दोस्तों, योजना का एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है स्मार्ट पैकेजिंग,
0: क्योंकि अच्छी पैकेजिंग ही किसी उत्पाद की पहली पहचान होती है। दोस्तों
1: बिल्कुल, सरकार भारतीय पैकेजिंग संस्थान यानी IIP के सहयोग से आकर्षक, सुरक्षित और इको फ्रेंडली पैकेजिंग विकसित करेगी।
0: मतलब अब हमारे पारंपरिक व्यंजन सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि देखने में भी शानदार होंगे,
1: और इससे उन्हें बड़े मॉल, सुपरमार्केट और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जगह मिल पाएगी।
0: दोस्तों जरा सोचिए, एक छोटा सा स्थानीय व्यंजन जो कभी सिर्फ गांव या शहर तक सीमित था, अब दुनिया भर के लोगों की पसंद बन सकता है।
1: और यही इस योजना की सबसे बड़ी ताकत है। यह सिर्फ भोजन की बात नहीं करती, यह रोजगार और आत्मनिर्भरता की भी बात करती है।
0: सही कहा आपने आरजी रीना, इस योजना के तहत स्थानीय उद्यमी युवाओं और स्वयं सहायता समूह को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा
1: और उन्हें सिखाया जाएगा कि कैसे बेहतर पैकेजिंग करे, कैसे उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखे और कैसे ब्रांडिंग करे और कैसे अपने उत्पाद को बड़े बाजार तक पहुँचाए।
0: यानी कि गांव की महिलाएं, छोटे व्यापारी और युवा अब अपने हुनर को रोजगार में बदल सकेंगे।
1: बिल्कुल, कल्पना कीजिए किसी गांव की महिलाएं अगर अपने पारंपरिक अचार, मिठाई या स्नैक्स को सही पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ बेचे तो वे आत्मनिर्भर बन सकती हैं।
0: और यही है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश की असली सोच, जहां विकास सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है बल्कि गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है। स्वाद भी, सम्मान भी, रोजगार भी, पहचान भी, एक जनपद एक व्यंजन, उत्तर प्रदेश की नई उड़ान।
1: दोस्तों, सरकार इस योजना को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड बनाने की दिशा में काम कर रही है।
0: बड़े आयोजन में स्वाद यूपी का थीम के तहत बड़े आयोजनों में इन व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी।
1: साथ ही डिजिटल प्रचार, सोशल मीडिया अभियान और लघु फिल्मों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के स्वाद को दुनिया तक पहुंचाया जाएगा
0: और इसके फायदे पर्यटक को भी मिलेंगे।
1: बिल्कुल, जब कोई पर्यटक किसी जगह जाता है तो वह वहाँ का स्वाद जरूर याद रखता है। इस योजना से उत्तर प्रदेश का फूड टूरिज्म भी मजबूत होगा।
0: यानी लोग सिर्फ ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को देखने नहीं आएंगे बल्कि यहाँ का स्वाद का अनुभव लेने भी आएंगे।
1: और जब पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।
0: तो दोस्तों, अगर आपके जिले में भी कोई खास पारंपरिक व्यंजन है तो ये समय है उनको एक नई पहचान देने का।
1: संस्थाई उत्पाद अपनाएं, स्थानीय उद्यमों को प्रोत्साहित कीजिए और उत्तर प्रदेश के स्वाद को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाइए,
0: क्योंकि जब हमारे स्थानीय स्वाद दुनिया तक पहुंचेंगे तभी सच मायनों में उत्तर प्रदेश बनेगा विकास का प्रदेश।
1: इसी उम्मीद और सकारात्मक संदेश के साथ हमें दीजिए अनुमति।
0: तो मैं हूँ आरजे आनंद
1: और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे रीना।
0: फिर मिलेंगे विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश के अगले विशेष कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार और आप सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। फिर मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: जी,
1: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
0: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
0: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

मंत्रालय नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को दिखाई हरी झंडी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आगरा में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर कार्यक्रम को किया संबोधित, कहा सुशासन सेवा और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देता है उनका जीवन। देश में पेट्रोल डीजल आपूर्ति सामान्य, केंद्र सरकार ने बिक्री पर लगे अस्थायी प्रतिबंध कल से हटाने का लिया फैसला। और प्रदेश में मॉनसून ने दी दस्तक, अगले दो दिनों में अधिकांश जनपदों में भारी बारिश की संभावना, तापमान में आएगी 7 से 9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र

0: पाठी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रामपुर में 700 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 102 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए, साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लैपटॉप और अनुदान राशि के चेक भी बांटे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार रामपुर समेत प्रदेश के पौराणिक और आध्यात्मिक विरासत स्थलों के पुनरुद्धार के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर शामली नया इकोनॉमिक कॉरिडोर रामपुर से होकर गुजरेगा, जो गोरखपुर को सिलीगुड़ी और शामली को पानीपत से जोड़कर क्षेत्र में विकास को और मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन चुका है। उन्होंने कहा कि विकास की इस यात्रा में रामपुर भी शामिल है, जहां पारंपरिक उद्योगों को वैश्विक पहचान और युवाओं को रोजगार मिल रहा है।
1: विरासत के संरक्षण का कार्य हो या विकास की प्रक्रिया को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य, बिना भेदभाव के सुरक्षा देने का कार्य हो या फिर बिना भेदभाव के शासन की योजना हर गरीब के लिए, हर नौजवान के लिए, हर महिला के लिए, अन्नदाता किसान के लिए, जिनके लिए भी योजना है, उन सब तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ सबके विकास के भाव के साथ सरकार कार्य करने को प्रतिबद्ध है।
0: रामपुर के बाद मुख्यमंत्री ने बरेली में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की, साथ ही नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को हरी झंडी भी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सेशेल्स यात्रा के दौरान वहां के शीर्ष नेताओं को भारत के पारंपरिक हथकरघा और हस्तशिल्प की वस्तुएं भेंट की। इनमें मुरादाबाद के कारीगरों द्वारा निर्मित पीतल का कछुआ भी शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसका उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की समृद्ध शिल्पकला के साथ ही हमारे कारीगरों का कौशल आज वैश्विक पटल पर नई पहचान गढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा पीतल नगरी मुरादाबाद के हस्तशिल्पियों का बनाया हुआ पीतल का कछुआ सेशेल्स के राष्ट्रपति को भेंट करना प्रदेशवासियों के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। उन्होंने प्रदेश की स्थानीय शिल्प कला को नई और भव्य पहचान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज आगरा में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज जब भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का जीवन हमें सुशासन, सेवा और राष्ट्र निर्माण की अमूल्य प्रेरणा देता है।
2: वो लोकमाता थी, जन जन की माता थी, जिनमें जन जन के प्रति संवेदना थी, लोगों के दुख पीड़ा को एहसास कर शासन से कैसा न्याय मिल सकता है, शासन कैसे समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है, कैसा नीतिगत रूप से शासन होना चाहिए, वह आज हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। जन भागीदारी के साथ, जन सहयोग के साथ विकसित भारत में हमारा भी योगदान हो, ताकि हम देश और राष्ट्र के पुनर्निर्माण की ओर आगे बढ़ सके।
0: केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर कल से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा। यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार, आजीविका सुरक्षा और गांवों के सतत विकास को नई मजबूती देगा। इसके तहत पात्र ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की वैधानिक गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक भी दिन काम से वंचित न रहे, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश के हर जनपद में कल से ग्राम सचिवालयों में लेखपालों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। इसको लेकर राजस्व परिषद की ओर से सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक जनपद में लेखपालों का रोस्टर तैयार किया जाएगा। इसके अनुसार प्रत्येक लेखपाल अपने कार्य क्षेत्र के ग्राम पंचायत भवन अथवा ग्राम सचिवालय में निर्धारित दिवस पर उपस्थित रहेंगे। इससे ग्रामीणों को पहले से जानकारी रहेगी कि उनके क्षेत्र का लेखपाल किस दिन उपलब्ध रहेगा, जिससे उन्हें अनावश्यक रूप से तहसील अथवा अन्य स्थानों के बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस पहल से ग्राम सचिवालय केवल विभिन्न योजनाओं के आवेदन केंद्र ही नहीं बल्कि ग्रामीणों के लिए वन स्टॉप सर्विस सेंटर के रूप में विकसित होंगे। इससे आम नागरिकों को राजस्व सेवाएं गांव स्तर पर ही सुलभ होंगी और राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जन केंद्रित बनेगी। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग कल से 15 जुलाई तक प्रदेश स्तर पर मिशन सेफ फ्यूचर नाम का अभियान चलाएगा। इस अभियान में कार्यालय स्तर से बिना फिटनेस, बिना परमिट स्कूल वाहनों के धारक स्कूलों के प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों को नोटिस या फोन द्वारा सचेत किया जाएगा कि वे जुलाई के पहले सप्ताह तक 100% स्कूल वाहनों का फिटनेस कराएं और वैध परमिट प्राप्त करें। परिवहन आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि बिना परमिट, फिटनेस और भौतिक रूप से असुरक्षित दिखने वाले स्कूल वाहनों को निरुद्ध करते हुए उनकी सूची स्कूलों के नाम सहित जिलाधिकारी के माध्यम से शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भेजी जाए। प्रदेश सरकार ने यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 में शामिल होने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को विशेष अवकाश स्वीकृत करने का फैसला लिया है। शासन की ओर से बेसिक शिक्षा निदेशक को निर्देशित किया गया है कि इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। कानपुर, उन्नाव, पीलीभीत, हमीरपुर, अंबेडकर नगर समेत आसपास के जनपदों में रात से रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मॉनसून प्रदेश में प्रवेश कर चुका है और आगामी दो दिनों में प्रदेश के कई स्थानों पर भारी वर्षा का अनुमान है।
5: 30 जून को वो मानसून की पूर्वी शाखा सक्रिय हुई और उत्तर प्रदेश में इसने प्रवेश किया और अगले दो दिनों में के और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। आने वाले तीन दिनों के दौरान पूरे प्रदेश में 75% स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। 2 और 3 जुलाई को प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों, विशेष रूप से विंध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र से लगे हुए जो जिले हैं वहां पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 2 जुलाई तक पूरे प्रदेश में प्रिवेलिंग टेम्परेचर की तुलना में 7 से 9 डिग्री तापमान कम हो जाएंगे।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रामपुर में 700 करोड़ रुपए की 102 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बरेली में नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को दिखाई हरी झंडी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आगरा में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, सुशासन, सेवा और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देता है उनका जीवन। देश में पेट्रोल डीजल आपूर्ति सामान्य। केंद्र सरकार ने बिक्री पर लगे अस्थायी प्रतिबंध कल से हटाने का लिया फैसला। और प्रदेश में मानसून ने दी दस्तक, अगले दो दिनों में अधिकांश जनपदों में भारी बारिश की संभावना। तापमान में आएगी 7 से 9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
7: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
8: कॉल 8826213131।

0: 17 जुलाई तक प्रदेश सरकार का स्कूल चलो अभियान, ताकि हर बच्चा शिक्षा से हो अभिसंचित। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। आज हमारा एपिसोड बहुत खास है, अयोध्या का स्वाद, जहां हम आपको मिलवाते हैं उत्तर प्रदेश से जो परंपरा और प्रगति की सुंदर संगम है।
1: और मैं हूं आपकी दोस्त प्राची। आज लेकर आई हूं एक ऐसी कहानी जिसमें है आस्था की मिठास, संस्कृति की खुशबू और स्वाद का ऐसा जादू जो सीधे दिल तक पहुँच जाता है।
0: जी हाँ दोस्तों, आज हम चलेंगे उस नगरी में जिसका नाम सुनते ही मन श्रद्धा से भर जाता है। अयोध्या प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि, सरयू की पावन धरती और अब स्वात की नई राजधानी।
1: सुबह का समय, सरयू की घाटों पर उगता सूरज, मंदिरों से आती घंटियों की मधुर ध्वनि और गलियों में उठती ताजी कचौड़ियों, जलेबियों और पेड़ों की खुशबू।
0: वाह, ऐसा लगता है जैसे अयोध्या सिर्फ दर्शन नहीं कराती बल्कि अपने स्वाद से भी आपका स्वागत करती है।
1: और यही कारण है कि आज लाखों श्रद्धालु सिर्फ रामलला के दर्शन ही नहीं बल्कि अयोध्या के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लेने भी पहुंच रहे हैं।
0: भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक नई पहचान बना चुकी है। सड़कें, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, होटल, घाट, हर क्षेत्र में विकास की एक कहानी लिखी जा रही है।
1: लेकिन विकास सिर्फ इमारतों और सड़कों का नहीं होता, असली विकास तब होता है जब स्थानीय लोगों की कला, संस्कृति और स्वाद को भी नई पहचान मिले। और यही काम कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार।
0: मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अयोध्या की पारंपरिक खाद्य विरासत को भी नई उड़ान दी जा रही है।
1: और इसी प्रयास का हिस्सा है एक जिला एक व्यंजन यानी ODOC योजना।
2: फिलहाल मैं मौजूद हूँ मौर्य मुस्तान भंडार में। यहाँ मौजूद होने का मेरे कारण है ODOC में चुने गए हमारे शहर के और इस दुकान के कुल्लड़ वाली दही जलेबी, जिसको हमारे प्रदेश में एक नई पहचान मिली है और इससे हमारे प्रदेश को अब एक नई पहचान मिलने जा रही है। अब जब शहर में लोग आएंगे, जब टूर से लोग आएंगे और जब वो ये कह के आएंगे कि भाई अयोध्या जाना है और हमें कुल्लड़ वाली दही जलेबी खानी है, तो अयोध्या का नाम और अयोध्या का व्यापार दोनों बढ़ेगा। और इसी को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मौर्य मुस्तान भंडार से इसके ओनर।
3: अयोध्या में राम मंदिर निर्माण होने के बाद अयोध्या वासी तो भाई बोलते जो आमदनी बढ़ी है तो सही चीज है। कस्टमर आते हैं, लोग आते हैं तो आमदनी जाती बात यहाँ लोगों को बढ़ेगी। रही बात होती होगी की तो अयोध्या में दही जलेबी हमारी चौथी पीढ़ी चल रही है
4: जी।
3: और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अक्सर आते ही रहते हैं अयोध्या में, तो जो है आपके यहाँ अचारी लोग जो है आपका दही जलेबी लेके जाते हैं तो कितने भाई अब शायद माइंड में रहा होगा, अच्छा लगा हमको भी कि चलिए अयोध्या से निपानी तो गई ऊपर तक।
4: बहुत अच्छी बात है। और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को क्या कहना चाहेंगे, उनको किस तरह अपना धन्यवाद आप प्रकट करेंगे?
3: उनके लिए जितना कहा जाए उसमें कम ही है। अयोध्या क्या था और क्या बना दिए तो सभी देख रहे हैं, उसमें कहना ही नहीं, कोई शब्द नहीं है
4: जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए, धन्यवाद, नमस्कार
3: जी। नमस्ते
0: दोस्तों, अगर अयोध्या के स्वाद की बात हो, खुरचंद पेड़े का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता।
1: बिल्कुल, यह सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक कला है।
0: कल्पना कीजिए, बड़े से कढ़ा में घंटों तक पकता दूध धीमी आँच, धैर्य और अनुभव।
1: जैसे जैसे दूध गाढ़ा होता है, कढ़ाई के किनारों पर मलाई की सुनहरी परत जम जाती है। कारीगर इसे बड़ी ही सावधानी से खुरचते हैं और फिर उसी से तैयार होता है खुरचन।
0: इसके बाद उसमें देसी खांड, इलायची और पारंपरिक तकनीकी का जादू मिलाया जाता है।
1: जब ये पेड़ा तैयार होता है तो उसकी हर परत में दूध की मिठास और मेहनत की कहानी छिपी होती है।
0: कहते हैं कि एक अच्छा खुरचन पेड़ा मुंह में जाते ही घुल जाता है लेकिन उसका स्वाद देर तक याद रहता है।
1: यानी दर्शन का प्रसाद दिल में बसता है और खुरचन पेड़ा स्वाद की याद बनकर साथ चलता है।
0: तो दोस्तों, अब बात उस जोड़ी की है जिसके बिना अयोध्या का फूड टूर अधूरा माना जाता है।
1: गर्मा गर्म जलेबी और ठंडी मलाईदार दही,
0: और सबसे खास बात ये परोसी जाती है मिट्टी के कुल्हड़ में।
1: कुल्हड़ सिर्फ एक बर्तन नहीं बल्कि भारतीय परंपरा का एक हिस्सा है। मिट्टी की सौंधी खुशबू दही के स्वाद को और बढ़ा देती है।
0: सुबह सुबह दुकानों के बाहर लगी कतारें, चाशनी में डूबी सुनहरी जलेबी और ताजी दही।
1: ऐसा लगता है जैसे स्वाद और संस्कृति एक साथ थाली में परोस दिए गए हैं।
0: जलेबी की तैयारी भी कम दिलचस्प नहीं है। खमीर उठे हुए घोल को गोल गोल आकार देकर घी में तला जाता है, फिर उसे मीठी चाशनी में डुबोया जाता है।
1: और जब वही जलेबी ठंडी दही के साथ मिलती है और स्वाद का ऐसा संतुलन बनता है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है।
0: तो श्रोताओं, यही वजह है कि अयोध्या की दही जलेबी ने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है और फूड फेस्टिवल में लोगों का दिल जीता है।
1: लेकिन अयोध्या का स्वाद सिर्फ मिठाइयों तक सीमित नहीं है।
0: बिल्कुल, यहाँ की मसालेदार कचौड़ी और कुरकुरी टिकिया भी उतनी ही मशहूर है।
1: सुबह के नाश्ते में कचौड़ी सब्जी और शाम को चटपटी टिकिया यहाँ के लोगों की जीवन शैली का हिस्सा है।
0: हर दुकान की अपनी विशेष रेसिपी है, अपना स्वाद और अपनी पहचान होती है।
1: दोस्तों, इन व्यंजनों लोकप्रियता के पीछे सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि एक दूरदर्शी सोच भी है।
0: उत्तर प्रदेश सरकार की ODOC योजना का उद्देश्य है कि हर जिले के विशेष व्यंजनों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले।
1: इसके तहत स्थानीय उद्यमियों, महिला स्वयं सहायता समूह और छोटे दुकानदारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
0: उन्हें आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग, फूड सेफ्टी, FSSAI मानकों और डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी दी जा रही है।
1: अब अयोध्या की स्वाद सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि देश और दुनिया के बाजारों तक पहुंचेंगे।
0: यही स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देगा, युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करेगा और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को मजबूत करेगा।
1: आज सोशल मीडिया पर हैशटैग अयोध्या फूड तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।
0: लोग कुल्हड़ वाली दही, जलेबी, खुरचंद पेड़ा और अयोध्या के

0: स्ट्रीट फूड की तस्वीरें साझा कर रहे हैं। एक समय था जब लोग अयोध्या को सिर्फ धार्मिक दृष्टि की सोच से जानते थे, और आज अयोध्या अपनी संस्कृति, पर्यटन और खान पान के जरिए एक नए भारत की तस्वीर पेश कर रही है।
1: तो दोस्तों, अगली बार जब आप अयोध्या जाएं,
0: रामलला के दर्शन कीजिए,
1: सरयू आरती का आनंद लीजिए
0: और फिर जरूर चखिए खुरचन, पेड़ा, लड़वाली दही, जलेबी, कचौड़ी और टिकिया,
1: क्योंकि ये सिर्फ व्यंजन नहीं बल्कि अयोध्या की आत्मा का स्वाद है।
0: और जब स्थानीय परंपरा को विकास का साथ मिलता है
1: तो एक शहर की पहचान पूरे देश की शान बन जाती है।
2: विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश,
3: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड मुरादाबाद।
3: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया है कि कल से दिल्ली EV पॉलिसी 2026 लागू होने जा रही है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये नीति केवल इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहन देने तक सीमित नहीं है, बल्कि मार्च 2030 तक परिवहन व्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव, चार्जिंग अवसंरचना के विस्तार और विभिन्न वाहन श्रेणियों के चरणबद्ध विद्युतीकरण का व्यापक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करती है। उन्होंने बताया कि नई नीति में इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों पर ₹30,000 तक का खरीद प्रोत्साहन जारी रखा गया है। इसके साथ पहली बार पुराने वाहन को स्क्रैप कराने पर ₹10,000 का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2028 की पहली अप्रैल से दिल्ली में नए दोपहिया वाहनों का पंजीकरण केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के रूप में किया जाएगा। साथ ही वर्ष 2027 की पहली जनवरी से L5 श्रेणी के नए ऑटो रिक्शा का पंजीकरण केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के रूप में किया जाएगा। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि पहले केवल सीमित संख्या में ई कार्गो वाहनों को प्रोत्साहन और कुछ मार्गों पर नो एंट्री समय से छूट का प्रावधान था, लेकिन अब N1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रकों पर ₹1,00,000 तक का खरीद प्रोत्साहन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण तथा विकास के लिए दो महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार हमारे स्मारक हमारा गौरव योजना के अंतर्गत दिल्ली मुख्यमंत्री स्मारक अभिग्रहण योजना और दिल्ली मुख्यमंत्री विरासत नवोत्थान योजना को शुरू कर रही है। श्रीमती गुप्ता ने जानकारी दी कि दिल्ली मुख्यमंत्री स्मारक अभिग्रहण योजना के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रम, निजी कंपनियां, ट्रस्ट संस्थाएं और इच्छुक नागरिक स्वैच्छिक योगदान के जरिए सरकार के ऐतिहासिक स्मारकों को गोद ले सकेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली मुख्यमंत्री विरासत नवोत्थान योजना के अंतर्गत पात्र संस्थाओं को अधिकतम ₹2 करोड़ तक का अनुदान दिया जा सकेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी और सेंट जॉन एम्बुलेंस संगठन के कामकाज की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि ये संस्थाएं मानवीय सेवा की गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी की मानवीय पहलों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें प्रधानमंत्री TB मुक्त अभियान, प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम और शीतकालीन राहत कार्य शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने आज द्वारका फेज वन में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने सीवर लाइन बिछाने के विकास कार्यों की शुरुआत भी की। श्री विधूड़ी ने कहा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में आयुष्मान आरोग्य मंदिर लोगों तक व्यापक और निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा रहा है। उन्होंने बताया कि इन केंद्रों पर प्रशिक्षित डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी उपलब्ध रहता है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण, जच्चा बच्चा देखभाल और बच्चों को विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिए 12 प्रकार के मुफ्त टीकाकरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज राजौरी गार्डन क्षेत्र में स्थित विभिन्न सरकारी खाली पड़ी जमीनों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में दिल्ली विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली नगर निगम, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग तथा दिल्ली परिवहन निगम सहित विभिन्न सरकारी एजेंसियों के स्वामित्व वाली खाली भूमि का विस्तृत आकलन किया गया। दिल्ली के शाहदरा उत्तर और शाहदरा दक्षिण क्षेत्र की स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने अतिरिक्त स्वच्छता संसाधनों को हरी झंडी दिखाई। एक रिपोर्ट।
4: शाहदरा उत्तर और शाहदरा दक्षिण क्षेत्र के लिए कुल 76 आधुनिक स्वच्छता वाहनों और उपकरणों को स्वच्छता अभियान में शामिल किया गया है। इनमें 52 स्वच्छता वाहन शाहदरा उत्तरी और 24 वाहन शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र के लिए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा 24 टिपर ट्रक्स, 10 हुक लोडर और 28 बैटरी रिक्शा भी शामिल हैं। इस अवसर पर श्री मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा निगम को उपलब्ध कराए जा रहे संसाधनों और वित्तीय सहयोग से स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजधानी के सभी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं दिल्ली नगर निगम के महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित यह बेड़ा दिल्ली की सफाई व्यवस्था को नई गति देगा। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
3: दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजीव खिरवार ने शाहदरा दक्षिण क्षेत्र का निरीक्षण कर विभिन्न विकास परियोजना और आधारभूत संरचनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को विकास कार्यों में अपेक्षित गति लाने के निर्देश भी दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने आज पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली रिज इंटरप्रिटेशन केंद्र DRIC का उद्घाटन किया। इस केंद्र की स्थापना दिल्ली रिज की अनूठी पारिस्थितिकी विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए की गई है।
5: इस अवसर पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश गोयल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। श्री गोयल ने कहा कि यह केंद्र उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है जो दिल्ली रिज के इतिहास और विरासत के बारे में जानना चाहते हैं। यह केंद्र मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। सोमवार तथा सार्वजनिक अवकाश के दिन ये केंद्र बंद रहेगा। रेल निगम ने बताया कि जो आगंतुक मेट्रो से नहीं आ रहे हैं वे इस केंद्र को देखने के लिए पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के कस्टमर केयर से 11 रुपए का प्रवेश टिकट खरीद सकते हैं। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए आनंद पाठक।
3: नई दिल्ली के बाराखंबा रोड स्थित एक रेस्तरां में आज आग लग गई। दिल्ली अग्निशमन विभाग के अनुसार घटना की सूचना दोपहर लगभग 3:40 पर प्राप्त हुई। अग्निशमन विभाग के अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि बचाव कार्य के लिए दमकल की 7 गाड़ियां तैनात की गई। उन्होंने बताया कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है।
6: मौके पे जब फायर सर्विस के लोग आए तो ये पाया गया कि किचन के अंदर उनकी चिमनी और उसके अंदर जमा जो ऑयल होता है उसके अंदर फायर थी और अब जो है आग को पूरी तरह से काबू में कर लिया गया। पूरी घटना के अंदर कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुई है। अभी हम खाली बिल्डिंग को इवैक्यूएट करा रहे हैं।
3: पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ग्राम सभाओं में कम भागीदारी पर राष्ट्रीय अध्ययन रिपोर्ट जारी की। नीति आयोग के सदस्य डॉ आर बालासुब्रमण्यम ने रिपोर्ट जारी की। यह अध्ययन ग्रामीण भारत में सहभागी लोकतंत्र, स्थानीय जवाबदेही और समुदाय केंद्रित विकास के एक जीवंत संस्थान के रूप में ग्राम सभा को सशक्त बनाने के लिए साक्ष्य आधारित एक रूपरेखा प्रदान करता है। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्रालय के सचिव राज विवेक भारद्वाज ने कहा कि पिछले दशक में देश के ग्रामीण हिस्सों में सड़क संपर्क, जल और बिजली आपूर्ति से संबंधित समस्याओं का समाधान किया गया है।
7: पिछले दशक में बहुत सारी समस्याओं का निराकरण हुआ है। गांव में जैसे पानी की समस्या थी, हर घर में हर नल में जल समस्या थी, बिजली की, सड़कों की, 98% गांवों में आज की तारीख में संपर्क है, बहुत सारी समस्याओं का निराकरण हुआ।
3: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलियरी साइंसेज ILBS के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश की स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
8: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने की। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सेक्रीफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
3: श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और कुशल मानव संसाधनों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। दिल्ली पुलिस ने आज मादक पदार्थ तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 विदेशी और 1 भारतीय नागरिक शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 71 ग्राम एम्फे टामाइन बरामद किया है। पुलिस ने कहा कि वो अब मादक पदार्थ के स्रोत, वित्तीय लेन देन और अंतर्राज्यीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी जनप्रतिनिधियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र, जनप्रतिनिधित्व, संवाद और जनभागीदारी की मजबूत नींव पर आधारित है। श्री विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र संवाद, सहमति और उत्तरदायित्व की सशक्त परंपरा का प्रतीक है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि शिक्षाविद, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के रूप में श्री वर्मा ने सार्वजनिक जीवन में सेवा के उच्च मानदंड स्थापित किए। वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में श्री वर्मा को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि श्री वर्मा ने दिल्ली में भाजपा संगठन को मजबूत बनाने के लिए अहम भूमिका निभाई थी। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय तेज धूप रही, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार कल का अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। दिल्ली में ईवी पॉलिसी कल से लागू होगी। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने कहा, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की मानवीय पहलों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने द्वारका फेज 1 में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। और दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली रिज इंटरप्रिटेशन केंद्र का उद्घाटन किया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेस 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।
4: सुनी दे,
5: इट इज अ सनी डे।
4: ओ सनी शेड्स दे यार।
5: यार सॉरी।
4: और फिर मिला है तुलसी?
5: कितने है ब्रो?
6: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: हेलो दोस्तों, आप सुन रही हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। कुछ स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं ठहरते, वो यादों में बस जाते हैं, जैसे दादी के हाथ की गजक, मेले की गर्मा गर्म नान खटाई और मीरठ की वो रबड़ी जो सर्दियों में हर दिल को मीठा कर देती है।
1: और अब यही स्वाद सिर्फ मेरठ की गलियों तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना के तहत मेरठ की रेवड़ी, गजक और नान खटाई अब दुनिया के नक्शे पर अपनी अलग पहचान बनाने जा रही है। सुनो।

0: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपके रेडियो का बेहतरीन प्रोग्राम। जी हाँ, तो बेहद ही खास शो है ये, जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। और मैं हूँ आपका दोस्त आरजी आनंद और मेरे साथ है
1: आरजे रीना।
0: तो आप सभी को हम दोनों की ओर से नमस्कार।
1: आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहाँ तिल की खुशबू, गुड़ की मिठास और नान खटाई नरमी और मेरठ की आत्मा है।
0: कभी सर्दियों की सुबह मेरठ में बिताई है आपने?

0: बिल्कुल, सुबह सुबह धुंध, हाथ में कुल्हड़ वाली चाय और सड़क किनारे ताजी रेवड़ी,
1: वो और वो गर्मा गर्म गजा जैसे ठंड की ऑफिशियल मिठाई है।
0: आपको पता है दोस्तों, मेरठ की रेवड़ी और गज्जक सिर्फ मिठाई नहीं, एक विरासत है। यहाँ पीढ़ियों से परिवार इस काम में जुड़े हुए हैं। कई दुकानें ऐसी हैं जहाँ दादा से लेकर पोते तक यही कारोबार संभाल रहे हैं।
1: और एक खास बात, मेरठ की रेवड़ी और गजक को GI टैग भी मिल चुका है।
0: GI यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब यह उत्पाद अपने क्षेत्र की विशेष पहचान रखता है। जैसे दार्जिलिंग की चाय, वैसे ही मेरठ की गजक।
1: यानी कोई भी गजक बना ले, लेकिन मेरठ वाली बात हर किसी में नहीं होती आरजे रीना।
0: अब बात उस स्वाद की, जो नो चंदी मेले की जान है नान खटाई।
1: उफ, घी से भरी हुई, ऊपर पिस्ता और मुंह में जाते ही घुल जाने वाली।
0: लेकिन क्या आपको पता है, नान खटाई की कहानी काफी दिलचस्प है।
1: जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है नान खटाई शब्द फारसी भाषा से आया है। नान मतलब ब्रेड और खटाई यानी बिस्किट जैसी बेक्ड चीज।
0: और भारत में इसे देसी स्वाद मिला। इलायची, देसी घी, बेसन, सूजी और फिर पैदा हुई वो नान खटाई, जिसके बिना मेला अधूरा लगता है।
1: मेरठ का नौचंदी मेला सिर्फ एक मेला नहीं है, भावना है।
0: और इस मेले की सबसे बड़ी पहचान नान खटाई और हलवा पराठा।
1: मैं तो मेलों में झूले से ज्यादा नान खटाई के स्टॉल ढूंढता था।
0: और मैं तो पैकेट घर लेकर आती थी।
1: मेरठ के पुराने बाजारों में आज ऐसी दुकानें मिल जाती है जहां कई पीढ़ियों से यही मिठाइयां बनाई जा रही हैं। इन मिठाइयों की खुशबू लोगों को दूर दूर से अपनी ओर खींच ले आती है।
0: नान खटाई एक तरह का पारंपरिक भारतीय बिस्किट है। यह बाहर से हल्की कुरकुरी और अंदर से नरम होती है। इसे मैदा, सूजी, घी, चीनी और इलायची से बनाया जाता है।
1: कहा जाता है नान खटाई शब्द फारसी भाषा से आया है। नान मतलब रोटी और खटाई यानी बिस्किट।
0: मेरठ की नान खटाई खास इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें देसी घी का भरपूर इस्तेमाल होता है। पुराने समय में इसे मिट्टी के तंदूर में पकाया जाता था, जिससे इसका स्वाद और खुशबू दोनों अलग होते थे।
1: सबसे पहले घी और चीनी को अच्छी तरह फेटा जाता है, फिर उसमें मैदा, सूजी और इलायची मिलाई जाती है। छोटे छोटे गोल आकार देकर इन्हें धीमी आंच पर बेक किया जाता है।
0: जब यह पकती है तो इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है।
1: मेरठ में नान खटाई सिर्फ खाने की चीज नहीं है, बल्कि मेहमान नवाजी का भी हिस्सा है। घर में आए मेहमान और चाय के साथ नान खटाई परोसी ना जाए, ऐसे कैसे हो सकता है।
0: अब तो बात करते हैं रेवड़ी की। दोस्तों, सर्दियों का मौसम और रेवड़ी, यह रिश्ता बहुत पुराना है। रेवड़ी तिल और गुड़िया चीनी से बनाई जाती है। यह छोटी छोटी गोल मिठाई होती है जो खाने में कुरकुरी और स्वाद में बेहद शानदार लगती है।
1: मेरठ की रेवड़ी में तिल की गुणवत्ता और गुड़ का संतुलन बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ की पारंपरिक दुकानों में आज भी हाथ से रेवड़ी बनाई जाती है।
0: सबसे पहले गुड़ या चीनी को गर्म करके गाढ़ी चाशनी बनाई जाती है, फिर उसमें भुने हुए तिल मिलाए जाते हैं। इसके बाद छोटी छोटी गोलियों का आकार दिया जाए।
1: यह काम बहुत तेजी और कुशलता से करना पड़ता है क्योंकि मिश्रण जल्दी सख्त हो जाता है।
0: तिल में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। स्वाद में यह शरीर को गर्म रखता है और ऊर्जा देता है।
1: इसीलिए पुराने लोग कहते थे, सर्दी में तिल खाया करो, शरीर को ताकत दिया करो।
0: अब बारी है मेरठ की मशहूर गज्जक की। गज्जक उत्तर भारत की एक पारंपरिक मिठाई है जिसे खास तौर पर ठंड के मौसम में खाया जाता है। यह तिल, गुड़ और घी से बनाई जाती है।
1: बहुत लोग रेवड़ी और गजक को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। रेवड़ी छोटी और सख्त होती है, जबकि गजक परतदार और हल्की कुरकुरी होती है।
0: यह सिर्फ मिठाई नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और पुराने स्वादों की पहचान है। इसमें छिपा है अपनापन, मेहनत और भारतीय खान पान की खूबसूरत विरासत।
1: अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि मेरठ की मिठाइयों की चर्चा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है।
0: तो दोस्तों, इसकी वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी एक जनपद एक व्यंजन योजना।
1: और इसमें सिर्फ बड़े उद्योगपति नहीं, बल्कि छोटे हलवाई, घरेलू महिलाएं, स्टार्टअप्स और युवा उद्यमी भी शामिल हो सकते हैं। मतलब अब शर्मा जी की गजक सीधे दुबई और लंदन भी जा सकती है।
0: और यही तो लोकल टू ग्लोबल का असली सपना है।
2: भैया नमस्कार।
3: नमस्कार
2: भैया, ये जो एक योजना है सरकार की, एक ODOC योजना, इस योजना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बींगा व्यापारी?
3: ये बहुत अच्छी योजना है सरकार की तरफ से। क्योंकि इसमें क्या है कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वन टेस्ट ये चीज है, एक जनपद एक स्वाद, हमारा मेरठ स्वाद नगरी है और उसी नगरी का एक पेश है नानखटाई। नानखटाई एक ऐसा व्यंजन है जिसमें ना कोई केमिकल है ना कुछ है, इसमें सिर्फ बेसन है, बूरा है और बाकी प्यार है मेरठ का भरा हुआ। तो इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो इससे क्योंकि हम जैसे छोटे व्यापारियों को आगे प्रोत्साहन मिल रहा है और युवा होने के नाते हमें आगे के और स्टार्टअप के और मौके मिल रहे हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट हमें सारी चीजें सहायता देती है, चीज करती है, मदद देती है, तो उसमें हम भी एजेंट सिक्योर हो जाते हैं कि अगर मान लो हमें कुछ करना है तो हमें पता है कि गवर्नमेंट से हमें मदद मिल जाएगी और गवर्नमेंट के साथ साथ हमें जैसे पैकेजिंग के लिए आइडिया मिल रहे हैं और बहुत चीजें, तो वो हमें डे बाई डे नई नई गाइडलाइंस मिलती रहती हैं उससे।
2: और साथ ही अब जैसे भारत में तो नानखटाई मशहूर है ही, अब वैश्विक स्तर पर पहचान बनने वाली है इस योजना के माध्यम से।
3: जी बिल्कुल, वैसे स्तर पर बिल्कुल बनेगी, क्योंकि अब जो हम यहाँ पर रह रहे हैं मेरठ से, अब जो मेरठ का युवा बाहर जाके अमेरिका रहने लग गया, कनाडा रहने लग गया, वो उन्हें जो होती थी वहाँ पर जाके बोली एक क्रेविंग होती थी कि मीठा नानखटाई से खानी है या रेवड़ी से खानी है, उन्हें मंगानी है। तो अब क्या है, इस चीज से जब ये आ जाएगी, अब हमें भी फ्लेक्सिबिलिटी और मिल गई, ब्रांडिंग मिल गई, हर चीज मिल गई, तो उससे बहुत फायदा पड़ेगा।
2: तो योगी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का किस तरह से आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगे?
3: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तो हृदय गहराई से धन्यवाद करते हैं कि आपने इस स्कीम को चालू करा और इससे आपने युवाओं को प्रोत्साहन दिया, छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया, बहुत धन्यवाद।
0: दोस्तों, जब कोई विदेशी पहली बार मेरठ की रेवड़ी खाएगा, उसे सिर्फ तिल और गुड़ का स्वाद नहीं मिलेगा, बल्कि उसे मिलेगा भारत का दिल।
1: उसे महसूस होगा कि यहाँ की गलियाँ, यहाँ के मेले, यहाँ की ठंड और यहाँ के लोग,
0: क्योंकि खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, वो आपको संस्कृति से भी जोड़ता है
1: और शायद इसीलिए हर शहर का स्वाद उसकी पहचान बन जाता है।
0: तो दोस्तों, अगली बार जब आप रेवड़ी खाए तो याद रखिए, ये सिर्फ मिठाई नहीं, मेरठ की विरासत है।
1: और कोने में जाने वाला कल यही स्वाद न्यूयॉर्क, पेरिस और टोक्यो की दुकानों में भी बिक रहा हो।
0: लोकल स्वाद, ग्लोबल अंदाज।
1: तो दोस्तों, आप सुन रहे थे आपका अपना फेवरेट कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे, जहां बातें होती है दिल से दिल तक। श्रोताओं, अब लेते हैं हम आपसे जाने की इजाजत, फिर मिलेंगे एक और नई कड़ी में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

दोनों बेकरार हो जाए, रुके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आज जहां के पार हो जाए।

0: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
5: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
4: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
6: आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आप ही की पसंद का ये कार्यक्रम है, जिसमें आप ही के लोकल फॉर वोकल के लोग यहाँ मौजूद होते हैं और वो बातें करते हैं जो कहीं ना कहीं आपको पसंद होती है, हमें पसंद होती है और हमारे इस पूरे शहर वालों को पसंद आती है। इनफैक्ट जहां जहां आप ये प्रोग्राम सुनते हैं, आप सभी को पसंद आती है। और ये जो शेरो शायरी का माहौल है ना, यहाँ पर शेरो शायरी एक अलग अंदाज में होती है, तो प्रोग्राम का जो रुतवा है वो पूरा चेंज हो जाता है। और इस प्रोग्राम को धांसू बनाने के लिए अखिल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो अपनी ऐसी शायरियां मारेंगी जिसे सुन के मैं बाहर भागना तो चाहूंगा लेकिन भाग नहीं पाऊंगा क्योंकि स्टूडियो बंद कर दिया। हेलो जी, हाउ आर यू?
7: कैसे
6: आपका ये मैंने तारुफ कराया है, ये आपकी आइडेंटिटी है?
7: धन्यवाद, आपने इतना अच्छा हमारा
6: धासु वाली वेलकम किया, मैंने वार्म वेलकम जिसे कहते हैं।
7: आपके धासु वेलकम पे मुझे कभी कभी ना ऐसा लगता है कि बस
6: कोई शायरी मारूं,
7: आज की जो कुंडी है ये गेट वाली खुलेगी नहीं पहले।
6: अरे अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं ऐसा मत कीजिएगा, हम आपसे निवेदन करेंगे। खैर ये तो जोक सपाट की बात है। अखिल जी बहुत बहुत स्वागत है, और आप बिल्कुल धाकड़ आरजी बनते जा रहे हैं, डेली दिन प्रतिदिन आप जो है उन्नति प्रगति दोनों ही कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
7: आशीर्वाद है हमारे पास, बाबा आनंद जी का हम पे आशीर्वाद है।
6: अच्छा ये कोई नए देवता है कि मुझे उनकी फोटो जरूर शेयर करिएगा,
7: मैं भी आपको बस अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर।
6: ठीक है, सो दोस्तों ये तो जोक सपाट चलता रहेगा, तो अखिल भैया आज का प्रोग्राम बहुत स्पेशल हो गया है ना,
7: बहुत
6: क्योंकि आज आपने बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी को बुलाया है।
7: जिन्हें हमने बुलाया है वो इसलिए नहीं बुलाया है कि हमने बुलाया है उसे,
6: लिसनर्स की डिमांड पे दोबारा बुलाया गया है,
7: लिसनर्स की डिमांड पे उन्हें दोबारा बुलाया गया है। उन्होंने ऐसा कमल खिलाया है कि उसे हर कोई अब देखना चाहता है।
6: क्या बात है, और सुनना भी चाहता है। तो हम एक काम करते हैं, इसी बात के साथ उनका स्वागत करते हैं। तो सर आपका हमारे स्टूडियो में इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? नमस्कार,
8: मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, आप बताइए आप लोग कैसे हैं?
6: हम लोग भी बहुत बढ़िया है सर, उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे।
8: बहुत अच्छा हूँ सर, बाकी आप लोगों की कृपा है, दोस्तों का साथ है
6: जी। तो थोड़ा सा अपने बारे में एक बार बता दीजिए, थोड़ा अपना तारुफ करा दीजिए हमारे मुरादाबादीज को।
8: सर तारुफ पिछला वाला है, कुछ चेंज नहीं हुआ अभी,
6: लेकिन अभी तो आप आए हो तो ये तो आप चेंज हो, टी शर्ट चेंज है आपका, लुक चेंज है, स्टाइल चेंज है,
8: कपड़े
6: तो
8: चेंज
6: हो सकता है आप भी थोड़ा चेंज करके बोले क्यों अखिल जी?
8: बस सर कपड़े चेंज हुए, बाकी पुराना वाला चल रहा है
6: जो नए लोग सुन रहे हैं।
8: देखिए
6: पिछली बार जब कमल सर आप आए थे तो वो लिसनर तो थे ही, अब कुछ नए भी जुड़े होंगे तो वो तो जानना चाहेंगे ना आपके बारे में, क्योंकि रेडियो पे तो हर दिन नए लोग सुनते हैं, जो अभी आपको सुन रहे हैं उनको तो अपने बारे में थोड़ा बताइए ना।
8: चलिए सर, मेरा नाम शर्मा है जी, मुरादाबाद का निवासी हूँ। आप छोटे से

0: कार्यालय चंद्रनगर का
1: जी जी,
0: और पिछले कई सालों से सर्जिकल सेल्स के जुड़ा हुआ हूँ जॉनसन जॉनसन के साथ, और थोड़ा सा शौक है लिखने लिखाने का, तो इस वजह से कुछ भाई लोग याद कर लेते हैं, कभी कभी बुला लेते हैं मुझे, और कुछ लोग पसंद भी कर लेते हैं।
2: आज बढ़िया, आज जो है एक मन में एक सवाल उठा है कमल जी से पूछने के लिए। हाँ। और ये मेरा ही सवाल नहीं है, ये आनंद जी का भी सवाल है,
1: जी,
2: और जितने भी हमारे लिसनर्स
1: सभी का सवाल है
2: कि कमल जी एक बात बताइए कि आपके लिए जो शायरी है वो सिर्फ एक शब्द है या एक एहसास है?
0: सही कहूं तो मेरे लिए एक शांति है, एक सुकून है, क्योंकि जब भी कुछ नया लिखता हूं, कुछ ऐसी दिमाग में कोई ऐसी चीज क्लिक करती है और उसको आगे बनाता हूं, तो मन में बहुत सेटिस्फेक्शन सा लगता है कि हाँ कुछ किया है, अलग हटके कुछ
2: तो
0: किया।
2: ये शांति सुकून आपको शादी के बाद से कब कब महसूस हुई?
0: मतलब आप फिर उसी विषय पर पहुंच रहे हो।
1: देखिए ये इनकी शादी हो गई इसलिए आपको स्टार्टिंग में वहीं ले जाना है। खैर ये बात तो हम जरूर आपसे पूछेंगे,
2: ये वर्ड आजकल सुनने में अच्छे लगते हैं।
1: कोई बात नहीं, बिल्कुल हम
0: अखिल जी क्योंकि खुद शादी शुदा था वो
1: इसीलिए कमल सर आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है दोस्तों आप समझ ही होंगे बहुत ही स्पेशल होगा, और कुछ लाइनें अगर आपकी हो जाए हम जो है कार्यक्रम को शुरू करने से पहले कुछ आगाज अगर आप कर दें अपनी चंद पंक्तियों से तो प्रोग्राम में चार चांद लग जाएंगे। क्यों अखिल जी?
2: बिल्कुल सही बात।
1: मैं निवेदन करूंगा अखिल जी आप अपनी पंक्तियों को जरा दबा के रखें, थोड़ी देर के बाद वो बाहर निकालेंगे
2: जो मेरे अंदर से निकल रही है।
1: तो थोड़ा कंट्रोल वो नाना पाटेकर करते हैं ना कंट्रोल। जी जी सर, मुरादाबाद के लिए आप कुछ अभी जिक्र कर रहे थे हमसे।
0: सबसे पहले जिक्र करते हैं जिससे आजकल सब लोग मतलब एक दो चार हो रहे हैं गर्मी।
1: हाँ, गर्मी बिल्कुल। आज तो खैर मौसम काफी ठंडा है,
0: मौसम काफी ठंडा
2: दो चार भी हो रहा है, रात में दो दो बजे चार चार बजे भी एक साथ हो रहा है।
0: बिल्कुल, हाँ, क्योंकि बत्ती नहीं आ रही है। धन्यवाद योगी जी का कि एक दिन भरपूर बत्ती मिली है हमें। तो चार पंक्तियां देखेगा गर्मी पर कि तुम जून सुलगती गर्मी के,
1: वाह
0: तुम जून सुलगती गर्मी के मैं ठंडक की सिफारिश हूँ।
1: वाह जी वाह।
0: तुम जून सुलगती गर्मी के मैं ठंडक की सिफारिश हूँ, तुम पहरेदार हो सूरज के मैं मानसून की बारिश हूँ।
1: मानसून की बारिश हूँ। अच्छा मानसून की बात हुई है तो अखिल भाई क्यों ना एक वो ऐसा ही गाना हो जाए थोड़ा सा, है ना बारिश वाला, तो प्रोग्राम जो है और भी खूबसूरत हो जाएगा। फिर हम अखिल भाई की शायरी सुनेंगे इसी बात पे। तो कमल सर आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे इस प्रोग्राम में, और बाकी जितने भी लिसनर्स हैं वो भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए इस प्रोग्राम को। अभी थोड़ी देर में लौटेंगे एक अमेजिंग ट्रैक के बाद, आप कहीं मत जाइए और रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, खूबसूरत गाना उसके बाद लौट कर आ रहे हैं।

0: खूबसूरत गाने के बाद वेलकम बैक एक बार फिर से आनंद और अखिल के साथ हैं आप इस प्रोग्राम में जहां बातें हो रही हैं दिल से दिल तक। साथ में हमारे स्पेशल मेहमान कमल जी मौजूद हैं आज की इस खूबसूरत सी वाइब को और भी फुल ऑन हैपनिंग बनाने के लिए। तो अखिल जी आप कुछ कहना चाहेंगे?
1: मैं यही कहना चाहूंगा कि आज मेरे इस दिल से दिल तक के सेशन पे बहुत ही मतलब कहते हैं चार चांद लग गए हैं जिसमें आनंद जी और साथ के साथ कमल जी भी जुड़ गए हैं।
0: तो क्या बात है,
1: कहते हैं ना कि कभी कभी आप कुछ थोड़ा सा मांगो आपको बहुत ज्यादा मिल जाता है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो मैंने आज तो मिलता ही बहुत ज्यादा है, आप तो शुरू से ज्यादा वाले रहे हैं जिसमें कोई इतनी शोकती नहीं है।
1: आज मैंने बस थोड़ा सा मांगा था कि मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाए
0: जी जी,
1: मगर
0: दिल से दिल तक वाला चाहिए था।
1: हाँ दिल से दिल तक में मैं चाहता था कि मेरे साथ कोई तो ज्वाइन हो।
0: हाँ
1: मैंने एक को मांगा और दो लोग ज्वाइन हो गए।
0: भाई आज आप ज्यादा मेहरबान हो रहे हैं, आपके ऊपर जो है एक साथ दो फूलों की बारिश हो गई है ना, तो कुछ कहना चाहेंगे आप?
1: मैं तो बस ये कहूंगा ऐसी फूल जो है
0: पंक्ति आप छोड़ना चाहते हैं या फिर हम सीधा कमल जी के पास चलें?
1: मैं
0: अगर बस कोई दिल से निकल रही है तो सुना दीजिए सर,
1: मेरे
0: मेरा नाम इस्तेमाल ना करें कृपया करके आप क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सारे लिसनर्स को पता है मैं बहुत ही वाहियात शायरी करता हूँ, आप फिर भी अच्छी कर लेते हैं।
1: मैं तो बस ये कहना चाहूंगा, शायरी नहीं है मगर ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैं बोलना चाहूंगा। अल्फाज अगर दिल से निकले
0: जी
1: तो किताब नहीं
0: वाह
1: किसी की जिंदगी बन जाते हैं।
0: बहुत बढ़िया, बहुत
1: तो जो दिल से निकले हुए अल्फाज हैं या दिल से निकली हुई बातें हैं कभी कभी वो आपकी जिंदगी को भी रिलेट करती हैं।
0: करेक्ट, ये बात तो बिल्कुल सही कही है आपने और मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ आपकी जो जिंदगी में रिलेट बातें हो रही हैं वो आजकल आप ऑफ ईयर बताते हैं मुझे, खैर उस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सर आप कुछ यू नो आजकल मतलब जो है आजकल तो अखिल भाई आपको ही पता है ना शेरो शायरी का कितना ट्रेंड चल रहा है, जैसे इंस्टाग्राम खोलो कोई ना कोई शायर दिख जाता है, हर कोई आजकल शायर हो गया है ठीक है, और कुछ होते हैं ओरिजिनल वाले।
1: हर कोई शायर नहीं हो बन गया मगर हर कोई जो है शायरी को अब आनंद के साथ लेने
0: नहीं चाहता। मैं आपको बताता हूँ हर कोई शायर का मेरा मतलब ये है अखिल भैया कि आजकल क्या हो रहा है ना सोशल मीडिया पे बहुत सारे क्रिएटर हैं जो लिखते हैं सिर्फ बोलते नहीं है, बट जो बोलने वाले हैं वो उसको उठा के फिर अपने फ्लो में अपने अंदाज में बोलते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं फिर उनको लगता है कि हम भी शायर हो गए हैं, लेकिन एक जो ओरिजिनल शायर होता है उसकी बात अलग ही होती है क्योंकि वो कलम से जो निकली बात होती है वो एक सच्ची वाली होती है क्योंकि दिल से दिल वाली बात होती है। अब जैसे कमल सर आए तो वो एकदम जेन्युइन कंटेंट लेकर आए क्योंकि वो उनका ओरिजिनल है।
1: बस कमल सर ये सोच रहे हैं ये दोनों चुप हो तो मैं कुछ बोलूं।
0: नहीं नहीं उनको पता है, कमल सर को ये पता है कि अगर ये दोनों चुप हो गए तो फिर ज्यादा हो जाएगा, इसलिए आप बोलते रहो बच्चों। खैर एनीवे सर हाँ आपका स्वागत है
2: सर।
0: जी सर, तो आज आप जो है हमारी इस महफिल को कैसे शानदार करेंगे, आपने वो मानसून वाली चार लाइनें सुना दी तो देखिए बाहर का मौसम भी अच्छा हो गया है, लेकिन अब आप आगे बढ़ते हुए क्या सुनाना चाहेंगे हमारे मुरादाबाद को, क्या नया लिखा है आपने इन बीते दिनों में?
2: आपने अभी बात करी नए शायरों की
0: जी,
2: जो कुछ जेन्युइन लिखते हैं और कुछ ऐसे ही शौकिया
0: शौकिया बिल्कुल बिल्कुल,
2: मतलब किस तरह से बस पिक्चर आ जाए। तो दो लाइन उनके लिए देखिएगा कि औरों की गजल पर जो लगाते थे हाशिए,
0: वाह
1: क्या बात है,
2: औरों की गजल पर जो लगाते थे हाशिए उनकी बहर से हट रहे उनके ही काफी है।
0: वाह वाह वाह क्या बात है क्या बात है,
2: उनकी बहर से हट रहे उनके ही काफी है।
0: मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी सर ने बात बोली है ना वो बात आई डोंट नो पूरी हुई या नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे पूरी करना चाहता हूँ कि जो आपने बोला है ना बिल्कुल रियलिटी है, एकदम जेन्युइन बोला है आपने।
2: नहीं आप इसको अखिल जी पर मत ले जाना।
0: नहीं मैं अखिल जी पे बिल्कुल लेके जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है अखिल जी खुद कहीं और जाने वाले हैं अभी इसीलिए मैं अखिल जी को बिल्कुल इसमें शामिल नहीं करूंगा।
1: मैं हो गया हूं कि थोड़ा सा चाहता हूं कि अपना स्ट्रेस वो करूं थोड़ा सा दूर करूं, इसलिए कमल जी जैसी दिख गए तो मेरा तो आधा स्ट्रेस वैसे ही दूर हो गया।
0: क्या बात है बिल्कुल,
1: मैं तो बस ये कहूंगा जो हंसते हंसते सब कुछ सह जाए वही इंसान सबसे मजबूत होता है, और जो प्यार में भी मजाक कर जाए वही सबसे प्यारा होता है।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही अखिल भैया आपने, आजकल आप बड़े इंटेलिजेंट हो गए दिल से दिल तक करते करते।
1: थैंक यू,
0: बहुत ही अच्छी बात है, तो बहुत ही बढ़िया। जी सर आप कुछ फरमाए?
2: बिल्कुल फरमाता हूँ सर, चैलेंज देखिएगा कि लगी गांठें ममन की देख सारी खोल सकता हूँ, लगी गांठें ममन की देख सारी खोल सकता हूँ, भले हो सद इमली का मैं मिश्री घोल सकता हूँ।
0: क्या बात,
2: लगी गांठें ममन की देख सारी खोल सकता हूँ, भले हो स्वाद इमली का मैं मिश्री घोल सकता हूँ, नहीं लगता हमारे बीच बोली कोई मसला है, नहीं लगता हमारे बीच बोली कोई मसला है, तू हिंदी में सुना अपनी मैं उर्दू बोल सकता हूँ।
1: क्या बात है क्या बात है, ये तो आपने बहुत एकदम मेल मिलाप कर दिया हिंदी और उर्दू का, और कहाँ से आप कहाँ से एकदम कौन से वक्त में सोचते हैं, सुबह के 3 बजे या सुबह के 4 बजे?
2: सर इसका कोई टाइम निश्चित नहीं होता, ये ज्यादातर जो नए नए आइडिया आते हैं सुबह सुबह जब दिमाग आपका एकदम फ्रेश होता है आप उठते हैं, या कभी कभी रात में जैसे अचानक आप उठे टॉयलेट के लिए तो कोई ना कोई ऐसी चीज होती है आपके दिमाग में कहीं ना कहीं क्लिक कर जाती है, और वो फिर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चोट करती रहती है।
1: तो आपके कहने का मतलब यह है कि दिल टूटने के बाद फिर से प्यार हो सकता है?
2: नहीं, दिल टूटने का सुबह मतलब नहीं है। आप फिर उस ट्रैक पर चले जाएं। नहीं, मैं आपको उस ट्रैक से हटाता हूँ, आप फिर उस ट्रैक पर चले जाएं।
1: मैं इसलिए उस ट्रैक पे आता हूँ ना, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं और हमारे आनंद जी जो आजकल अपना दिल एक अकलौता दिल लिए घूम रहे हैं, तो वो ये कहना चाह रहे थे, कह भी रहे थे मुझसे कि अगर कमल भैया आए तो उनसे जरूर ये बात पूछना कि क्या दिल टूटने के बाद फिर से प्यार हो सकता है?
2: दोनों ही चीजें हैं।
0: मुझे तो लगता है हो सकता है सर।
2: मैंने कहा ना दोनों चीजें हैं।
0: हाँ हाँ, नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है। आपके पिटारे में दोनों ऑप्शन है।
2: डिपेंड करता है कि बंदा किस नेचर का है।
0: हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही
1: है। मोबाइल की बैटरी की तरह है कि अगर बैटरी डाउन,
2: मोबाइल की बैटरी के साथ मजबूरी है, उसको चार्ज होना ही होना है। लेकिन दूसरे वाले केस में डिपेंड करता है कि आदमी कदम बढ़ाए या ना बढ़ाए।
0: ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन सर, मुझे लगता है जो ट्रू लव होता है, जो सच्चा लव होता है, वो एक ही बार होता है, मेरा ऐसा मानना है।
2: मतलब
0: जेनरली मुझे ऐसा लगता है कि प्यार तो आप कितनी बार भी कर सकते हो, लेकिन जो दिल से प्यार निकलता है वो एक बार ही होता है। और जो आपका, मुझे लगता है लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम दोनों चलता है।
2: बिल्कुल,
0: है ना। आपका भी अखिल भाई, मैं खैर बाद में डिस्कस करूंगा। एक काम करते हैं, गाना सुनते हैं इसी बात पे। इस कॉन्वर्सेशन
1: पसंद नहीं है कि मैं खाना टाइम पे खाऊं।
0: नहीं नहीं, मैं सोच रहा हूं एक गाना सुन लेते हैं। प्रोग्राम्स में जो बातें हैं वो तो चलती रहेंगी। प्यार प्यार की बातें कर रहे हैं हम, एक प्यार वाला गाना हो जाए, उसके बाद वापस आएंगे। दोस्तों, आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो।
1: बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।
0: अभी बजाते हैं अखिल भाई एक गाना, टेंशन मत।
3: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर। संपर्क करें 9548539705।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा।
5: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
6: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
5: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
6: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
7: कॉल 7500153841।
0: आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातियों भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।

0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
1: One key pillar which has brought about a transformation.
2: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
1: Facilitating mobility.
0: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
4: चार दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: दिल्ली और चार राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
6: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आमतौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्यप्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा 2 प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थयात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिधो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। फूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सस में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
2: And now the news in detail.
1: अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

0: सुनप्रत गाने के बाद वेलकम बैक एक बार फिर से आनंद और अखिल के साथ हैं आप इस प्रोग्राम में जहां बातें हो रही हैं दिल से दिल तक। साथ में हमारे स्पेशल मेहमान कमल जी मौजूद हैं आज की इस खूबसूरत सी वाइब को और भी फुल ऑन हैपनिंग बनाने के लिए। तो अखिल जी आप कुछ कहना चाहेंगे?
1: मैं यही कहना चाहूंगा कि आज मेरे इस दिल से दिल तक के सेशन पे बहुत ही मतलब कहते हैं चार चांद लग गए हैं जिसमें आनंद जी और साथ के साथ कमल जी भी जुड़ गए हैं।
0: तो क्या बात है,
1: कहते हैं ना कि कभी कभी आप कुछ थोड़ा सा मांगो आपको बहुत ज्यादा मिल जाता है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो मैंने आपको आज... तो मिलता ही बहुत ज्यादा है, आप तो शुरू से ज्यादा वाले रहे जिसमें कोई इतनी शोकती नहीं है।
1: आज मैंने बस थोड़ा सा मांगा था कि मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाए
0: जी जी,
1: मगर
0: दिल से
1: जी
0: दिल तक वाला चाहिए था।
1: हाँ दिल से दिल तक में मैं चाहता था कि मेरे साथ कोई तो ज्वाइन हो। मैंने एक को मांगा और दो लोग ज्वाइन हो गए।
0: भाई आज आप ज्यादा मेहरबान हो रहे हैं, आपके ऊपर जो है एक साथ दो फूलों की बारिश हो गई है ना। तो कुछ कहना चाहेंगे आप?
1: मैं तो बस ये कहूंगा ऐसी फूल जो है
0: पंक्तियाँ आप छोड़ना चाहते हैं या फिर हम सीधा कमल जी के पास चलें?
1: मैं
0: अगर कोई दिल से निकल रही है तो सुना दीजिए सर,
1: मेरे
0: मेरा नाम इस्तेमाल ना करें कृपया करके आप, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सारे लिसनर्स को पता है मैं बहुत ही वाहियात शायरी करता हूँ, आप फिर भी अच्छी कर लेते हैं।
1: मैं तो बस ये कहना चाहूंगा, शायरी नहीं है मगर ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैं बोलना चाहूंगा। अल्फाज अगर दिल से निकले
0: जी
1: तो किताब नहीं
0: वाह
1: किसी की जिंदगी बन जाते हैं।
0: बहुत बढ़िया, बहुत
1: बढ़िया। जो दिल से निकले हुए अल्फाज हैं या दिल से निकली हुई बातें हैं कभी कभी वो आपकी जिंदगी

0: को भी रिलेट करती हैं।
1: करेक्ट, ये बात तो बिल्कुल सही कही है आपने और मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ आपकी जो जिंदगी में रिलेट बातें हो रही हैं वो आजकल आप ऑफ ईयर बताते हैं मुझे। खैर उसमें हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सर आप कुछ आजकल मतलब जो है आजकल तो अखिल भाई आपको ही पता है ना शेरो शायरी का कितना ट्रेंड चल रहा है। जैसे इंस्टाग्राम खोलो कोई ना कोई शायर दिख जाता है, हर कोई आजकल शायर हो गया है। ठीक है, और कुछ होते हैं ओरिजिनल वाले।
0: हर कोई शायर नहीं हो बन गया, मगर हर कोई जो है शायरी को अब आनंद के साथ लेने
1: नहीं,
0: चाहता।
1: मैं आपको बताता हूँ हर कोई शायर का, मेरा मतलब ये है अखिल भैया कि आजकल क्या हो रहा है ना सोशल मीडिया पे बहुत सारे क्रिएटर हैं जो लिखते हैं सिर्फ, वो बोलते नहीं है, बट जो बोलने वाले हैं वो उसको उठा के फिर अपने फ्लो में अपने अंदाज में बोलते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं फिर उनको लगता है कि हम भी शायर हो गए हैं, लेकिन एक जो ओरिजिनल शायर होता है उसकी बात अलग ही होती है, क्योंकि वो कलम से जो निकली बात होती है वो एक सच्ची वाली होती है, क्योंकि दिल से दिल वाली बात होती है। अब जैसे कमल सर आए तो वो एकदम जेन्युइन कंटेंट लेकर आए क्योंकि वो उनका ओरिजिनल है।
0: बस कमल सर ये सोच रहे हैं ये दोनों चुप हो तो मैं कुछ बोलूं।
1: नहीं, उनको पता है, कमल सर को ये पता है कि अगर ये दोनों चुप हो गए तो फिर ज्यादा हो जाएगा, इसलिए आप बोलते रहो बच्चों। खैर एनीवे सर, हाँ आपका स्वागत है।
2: चल
1: जी सर, तो आज आप जो है हमारी इस महफिल को कैसे शानदार करेंगे, आपने वो मानसून वाली चार लाइनें सुना दी। तो देखिए बाहर का मौसम भी अच्छा हो गया है, लेकिन अब आप आगे बढ़ते हुए क्या सुनाना चाहेंगे हमारे मुरादाबाद को, क्या नया लिखा है आपने इन बीते दिनों में?
2: आपने अभी बात करी नए शायरों की
1: जी,
2: जो कुछ जेन्युइन लिखते हैं और कुछ ऐसे ही शौकिया
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: मतलब किस तरह से बस पिक्चर आ जाए। तो दो लाइन उनके लिए देखिएगा कि औरों की गजल पर जो लगाते थे हाशिए।
1: वाह
0: क्या बात है,
2: औरों की गजल पर जो लगाते थे हाशिए, उनकी बहर से हट रहे उनके ही काफी है।
1: वाह वाह वाह क्या बात है, क्या बात है,
2: उनकी बहर से हट रहे उनके ही काफी।
1: मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी सर ने बात बोली है ना वो बात आई डोंट नो पूरी हुई या नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे पूरी करना चाहता हूँ कि जो आपने बोला है ना बिल्कुल रियलिटी है, एकदम जेन्युइन बोला है आपने।
2: नहीं आप इसको अखिल जी पर मत ले जाना।
1: नहीं मैं अखिल जी पे बिल्कुल लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है अखिल जी खुद कहीं और जाने वाले हैं अभी, इसीलिए मैं अखिल जी को बिल्कुल इसमें शामिल नहीं करूंगा,
0: कि थोड़ा सा चाहता हूँ कि अपना स्ट्रेस वो करूं, थोड़ा सा दूर करूं, इसलिए कमल जी जैसी दिख गए तो मेरा तो आधा स्ट्रेस वैसे ही दूर हो गया।
1: क्या बात है, बिल्कुल बहुत।
0: मैं तो बस ये कहूंगा जो हंसते हंसते सब कुछ सह जाए वही इंसान सबसे मजबूत होता है, और जो प्यार में भी मजाक कर जाए वही सबसे प्यारा होता है।
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही अखिल भैया आपने। आजकल आप बड़े इंटेलिजेंट हो गए दिल से दिल तक करते करते।
0: थैंक यू
1: बहुत ही अच्छी बात है, ये तो बहुत ही बढ़िया जी। सर आप कुछ फरमाएं।
2: बिल्कुल फरमाता हूँ सर, चैलेंज देखिएगा कि लगी गांठें ममन की देख सारी खोल सकता हूँ, लगी गांठें ममन की देख सारी खोल सकता हूँ, भले हो सब इमली का मैं मिश्री घोल सकता हूँ।
1: क्या बात,
2: लगी गांठें ममन की देख सारी खोल सकता हूँ, भले हो स्वाद इमली का मैं मिश्री घोल सकता हूँ, नहीं लगता हमारे बीच बोली कोई मसला है, नहीं लगता हमारे बीच बोली कोई मसला है, तू हिंदी में सुना अपनी मैं उर्दू बोल सकता हूँ।
0: क्या बात है, क्या बात है, ये तो आपने बहुत एकदम मेल मिलाप कर दिया हिंदी और उर्दू का। और कहाँ से आप, कहाँ से एकदम कौन से वक्त में सोचते हैं, सुबह के 3 बजे या सुबह के 4 बजे?
2: सर इसका कोई टाइम निश्चित नहीं होता, ये ज्यादातर जो नए नए आइडिया आते हैं सुबह सुबह जब दिमाग आपका एकदम फ्रेश होता है आप उठते हैं, या कभी कभी रात में जैसे अचानक आप उठे टॉयलेट के लिए तो कोई ना कोई ऐसी चीज होती है आपके दिमाग में कहना कि क्लिक कर जाती है, और वो फिर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चोट करती रहती है।
0: तो आपका कहने का मतलब यह है कि दिल टूटने के बाद फिर से प्यार हो सकता है?
2: नहीं, दिल टूटने का सुबह मतलब नहीं है। आप फिर उस ट्रैक पर चले जाएं।
0: नहीं
2: मैं आपको उस ट्रैक से हटाता हूं, आप फिर उस ट्रैक पर चले जाएं।
0: मैं इसलिए उस ट्रैक पे आता हूं ना क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं और हमारे आनंद जी जो आजकल अपना दिल एक अकलौता दिल लिए घूम रहे हैं, तो वो ये कहना चाह रहे थे, कह भी रहे थे मुझसे कि अगर कमल भैया आए तो उनसे जरूर ये बात पूछना कि क्या दिल टूटने के बाद फिर से प्यार हो सकता है?
2: दोनों ही चीजें हैं,
1: मुझे तो लगता है हो सकता है सर।
2: मैंने कहा ना दोनों चीजें,
1: हाँ हाँ, नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है, आपके पिटारे में दोनों ऑप्शन है।
2: डिपेंड करता है कि बंदा किस नेचर का है।
1: हाँ ये भी बात बिल्कुल सही है,
0: मोबाइल की बैटरी की तरह है कि अगर बैटरी डाउन,
2: मोबाइल की बैटरी के साथ तो मजबूरी है, उसको चार्ज होना ही होना है। लेकिन दूसरे वाले केस में डिपेंड करता है कि आदमी कदम बढ़ाए या ना बढ़ाए।
1: ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन सर मुझे लगता है जो ट्रू लव होता है, जो सच्चा लव होता है वो एक ही बार होता है, मेरा ऐसा मानना है।
2: मतलब
1: क्यों, जेनरली मुझे ऐसा लगता है कि प्यार तो आप कितनी बार भी कर सकते हो, लेकिन जो दिल से प्यार निकलता है वो एक बार ही होता है, और जो आपका मुझे लगता है लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम दोनों चलता है।
2: बिल्कुल
1: है ना, आपका भी अखिल भाई, मैं खैर बाद में जिक्र करूंगा। एक काम करते हैं, गाना सुनते हैं इसी बात पे, इस कॉन्वर्सेशन
0: पसंद नहीं है कि मैं खाना टाइम पे खाऊं।
1: नहीं नहीं मैं सोच रहा हूँ एक गाना सुन लेते हैं, प्रोग्राम्स में जो बातें हैं वो तो चलती रहेंगी, प्यार प्यार की बातें कर रहे हैं हम, एक प्यार वाला गाना हो जाए उसके बाद वापस आएंगे। दोस्तों आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो,
0: बजाते रहो गुनगुनाते रहो।
1: अभी बजाते हैं अखिल भाई एक गाना, टेंशन मत।

0: वेलकम बैक 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका अपना ही अपना एफएम मुरादाबाद।
1: बिल्कुल आपने कहा अखिल भैया, आपका अपना ही अपना और सब कुछ अपना ही तो है यहाँ पे। हम भी आपके अपने हैं, हमारे कमल जी भी हमारे अपने हैं और जो हमारे लिसनर्स हैं वो भी हमारे अपने हैं। तभी तो ये कनेक्शन बनता है दिल से दिल तक का। और इसीलिए आपने अपने शो का नाम भी रखा है, बहुत चालू हो रहे हो, दिल से दिल तक शो रख लिया है।
0: आज सारे लिसनर्स आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा,
1: अखिल भैया की थोड़ी फिरकी ले रहा हूँ, पहली बार मैं इनके साथ शो में, मतलब ऐसे दिल से दिल तक में तो पहली बार ही हम मिल रहे हैं।
0: आज कॉल बहुत आ रही है मेरे पास कि मैं अगर उनकी कॉल उठा नहीं पा रहा हूँ।
1: मैं समझ सकता हूँ, आप बहुत पॉपुलर आ रहे हैं अखिल भैया, आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है यार। ऑफ कोर्स इतनी कॉल तो मुझे भी नहीं आते, मैं खुद देख रहा हूँ, अभी भी फोन ब्लिंक हो रहा है आपका। देखो
0: ये, देखो ये आनंद जो है हर चीज का जो है ना वो तिल का ताड़ बना देता है।
1: मैं
0: जो
1: सच बात है ना दोस्तों वही करता हूँ, और मुझे लग रहा है कि हमारे गेस्ट है कमल जी, इससे पहले वो नाराज होकर भाग जाए हमें छोड़ के, हम वापस उनके पास चलते हैं इज्जत के साथ।
0: तभी मैं आप लोगों की कॉल नहीं उठा पा रहा हूँ क्योंकि आज हमारे साथ कमल जी हैं, और कमल जी बहुत ही अच्छी शायरी कर रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और इनको बुलाने में सबसे बड़ा योगदान जो है वो अखिल जी का है। वैसे इस टाइम पे मुझे स्टूडियो में होना नहीं चाहिए, लेकिन इनकी मेहरबानी जो मैं अभी तक बैठा हूँ यहाँ पे।
0: धन्यवाद धन्यवाद आनंद जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और मैं देख रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे भी लगातार कुछ ना कुछ निकलता जा रहा है। अखिल भैया हमारे बहुत प्रिपेयर करते हैं, वो जब तक वो कहते हैं जो लिखा नहीं वो दिखा नहीं,
0: बिल्कुल
1: ये उनकी खासियत है। तो खैर एनीवेज जी, कमल सर आप प्लीज, बहुत सारा चिट्ठा आप, मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में है, प्रॉपर लिख के लेकर आए हैं कमल सर हमारे, बहुत ही जेन्युइन कंटेंट आज डिलीवर कर रहे हैं वो। पहले ही बताइए सर, आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है?
2: बिल्कुल आ रहा है।
1: एसी चला दें क्या अगर आप कहें तो?
2: चलाते रहिए, बंद करते रहिए। मौसम का आनंद तो लेना ही है, गर्मी का भी सर्दी का भी।
1: बहुत ही बढ़िया,
0: चलिए हम आ चुके हैं, ये
1: हम चला ही देते हैं यार, टेम्परेचर थोड़ा गर्म।
0: इस बार इन्होंने टॉवल जो है गीला रख दिया ना बेड पे, तो भाभी जी छोड़ेंगे नहीं।
1: भाई वो आपको पता होगा क्योंकि अभी हम तो शादीशुदा है नहीं, तो हमें इस विषय में आइडिया है नहीं।
2: तभी तो टॉवल और ये सब उनकी फिरकी ले रहे हैं आप जो है
1: सर। ऐसा तो देखिए, अब आप भी उनकी टीम में शामिल हो रहे हैं, मैंने सोचा था एटलीस्ट आप तो मेरा साइड देंगे।
0: देखिए साहब, ये एक ऐसा लड्डू है कि जो है ना आपको खाना तो पड़ेगा कभी ना कभी। हाँ, तो अभी आप जब तक बचे हैं, जब तक आप मंदिरों में चक्कर काट रहे हैं, इधर उधर चक्कर उस लड्डू से बच रहे हैं, मगर एक ना एक दिन वो लड्डू तो आपको खाना है।
2: सही, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सही जगह अप्रोच करें।
1: हाँ, देखिए अखिल भैया, लड्डू खाने से पहले मैं आप जैसे लोगों से ट्रेनिंग ले रहा हूँ ना, तो मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ लड्डू को हजम कैसे करना है, ये भी तो बहुत जरूरी है।
0: सारी ट्रेनिंग धड़ी की धड़ी रह जाती है,
1: समझ सकते हैं।
0: चलिए आइए कमल जी, आप बताइए कुछ कुछ तो अपने उसमें हमें साझा कीजिए अपनी शायरी में।
1: देखिए मैं इस शायरी से पहले इतना कहना चाहूंगा, ये जो लड्डू और ये जो बातें थी ना, ये मैं जब भाभी कभी स्टूडियो आएंगी तो मैं उनसे जरूर पूछूंगा वो कौन सा लड्डू था जो आपने इनको खिलाया था, वो मुझे भी बताइए आप। खैर कमल जी आप बताइए, अपनी शेर व शायरी के माध्यम से कोई लड्डू का जिक्र नहीं होगा मुझे पता है, अब आप सीधे पॉइंट की बात करेंगे।
2: ठीक सर, तो अपने प्यारे से शहर मुरादाबाद के लिए कुछ पंखे हैं।
1: हाँ जी,
2: उम्मीद करता हूँ पसंद करेंगे।
1: बिल्कुल सर,
2: सुनिएगा कि ना कोई पहले मेरे ना किसी के बाद हूं मैं।
1: वाह,
2: ना कोई पहले मेरे ना किसी के बाद हूं मैं, आती जाती हर घड़ी में शाद हूं आबाद हूं मैं, आती जाती हर घड़ी में शाद हूं आबाद हूं मैं, नाम पीतल है मगर सोना हूं मैं।
0: क्या बात है,
2: नाम पीतल है मगर सोना हूं मैं, देख लो मुझको मुरादाबाद हूं मैं।
0: क्या बात कही,
2: देख लो मुझको मुरादाबाद हूं मैं, राम गंगा से लगा एक शहर हूं मैं।
0: बहुत खूब,
2: राम गंगा से लगा एक शहर हूं मैं, उर्दू से हिंदी जोड़ती एक बहर हूं मैं, राम गंगा से लगा एक शहर हूं मैं, उर्दू से हिंदी जोड़ती एक बहर हूं मैं, हूं जिगर पर जाने क्यों नाशाद हूं मैं।
0: क्या बात है,
2: हूं जिगर पर जाने क्यों नाशाद हूं मैं, देख लो मुझको मुरादाबाद हूं मैं।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, आज आपने मुरादाबाद से एकदम गुफ्तगू और ऐसी रूबरू करवाया आपने मुरादाबाद की बात।
1: नहीं, ये दिल से दिल वाला कनेक्शन था अखिल भाई, और ये मुरादाबाद के बारे में तो जितनी बातें कही जाए खैर वो कम ही है, लेकिन आपने जो एक शहर के बारे में चार पंक्तियां रखी, ये कहीं हमें मिल नहीं सकती, ना चैट जीपीटी पे ना जेमिनी पे, ये सिर्फ कमल जी के पास मिल सकती है।
0: ये
2: पूरा कर लूं पहले?
1: हमें लगा था एंड हो गया है। जी सर कहिए।
2: पीत के निर्यात में तो खास हूँ मैं, पीत मतलब पीतल।
0: हाँ जी,
1: अच्छा ठीक है जी।
2: पीत के निर्यात में तो खास हूँ मैं, यूं समेटे खुद में एक इतिहास हूं मैं।
1: वाह,
2: यूं समेटे खुद में एक इतिहास हूं मैं, यूं ही कितनी सदियों से नाबाद हूं मैं, देख लो मुझको मुरादाबाद हूं मैं।
0: क्या बात है।
2: देखिएगा
1: जी
2: कि भोर में खिलती हुई एक धूप हूं मैं, भोर में खिलती हुई एक धूप हूं मैं, ओढ़ कर एक नई छवि नव रूप हूं मैं, स्मार्ट हूं फिर भी कहीं अपवाद हूं मैं, देख लो मुझको मुरादाबाद हूँ।
0: क्या बात,
1: देख लो मुझको मुरादाबाद हूँ मैं। क्या बात है।
2: और अंतिम चालन देखिएगा कि मंचे जिगर बसता हुआ एक राग हूँ मैं।
0: बहुत बढ़िया,
2: मंचे जिगर बसता हुआ एक राग हूँ मैं, देता हूँ सबको कंपनी देता हूँ सबको कंपनी वो बाग हूँ मैं।
1: क्या बात,
2: देता हूँ सबको कंपनी वो बाग हूँ मैं, शामो शहर रोशन शरर आबाद हूँ मैं, देख लो मुझको मुरादाबाद।
0: बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ये कंपनी बाग से तो जुड़ी हुई कई कहानियां हैं हमारे साथ, कंपनी बाग के आसपास घूमना, और इस समय तो कंपनी बाग के नजारे ही बदल गए।
1: आपने कभी देखा उसके अंदर मुरादाबाद की नजारे बदल गए? आप कंपनी बाग पे अटके पड़े हो यार अखिल जी। देखो ना, जिस भी चौराहे पे जाओगे वही लाइटे लाइटे और मतलब चकाचौंध से भरा हुआ है पूरा मुरादाबाद। और इस समय में जब मैं और आप और कमल जी बात कर रहे हैं, हमारा पूरा शहर लाइटों से नहाया हुआ है।
0: ऐसा क्यों होता है कि जब मैं कभी लाइट देखता हूँ मुरादाबाद में चमकती हुई
1: तभी भाग जाती है?
0: एक हफ्ते बाद मुझे लाइट मिलती क्यों नहीं है?
1: क्योंकि वो मुझे पता है, आप जब उसको ध्यान से देखते हो उसे नजर लग जाती है कि उतार के ले जाता होगा। अखिल ने मुझे देख के नजर लगा दी, अब मैं रोड पे दिखूंगी नहीं तेरे को जा भाई,
2: क्योंकि आपकी रोशनी के आगे उसकी रोशनी फीकी पड़ जाती है।
1: ये तो
0: कमल जी बचा रहे हैं,
1: जो तारीफ करिए,
0: लाइट लेके गए कमल जी ने बचा दिया उन्हें आज।
1: सही बात है, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ अखिल भाई, वो तो खैर दूसरी दूसरी बात है, लेकिन सच में मुरादाबाद की जो भैया ने तारीफ करी है अभी कमल भैया ने, वो उसकी बात ही अलग है। मतलब अपने शब्दों में आपने रूबरू करा दिया है। तो एक काम करते हैं, इसी रूबरू रोशनी में एक बढ़िया से गाना सुनते हैं। ये बातचीत तो हमारी लगातार जारी रहेगी और मुझे लगता है कार्यक्रम में गीत संगीत भी बहुत मैटर करता है।
0: बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात कही। और मैं इसी बात पे कहना चाहूंगा इस गाने से पहले, रिश्ते अगर हंसी से निभाओ तो दूरियां भी पास लगती है।
1: वाह वाह वाह,
0: रिश्ते अगर हंसी से निभाओ तो दूरियां भी पास लगती है, और अगर मोहब्बत सच्ची हो तो खामोशी भी बात कर।
1: क्या बात है अखिल जी, मैं आपकी लाइनें सुन के बस चुप हो गया था।
0: हाँ, उसके बाद जो खामोशी आई थी सुनने में आ गया था कि आपको बात समझ नहीं,
1: मैंने एक मिनट पॉज इसलिए लिया कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, ये बड़ा मैटर करता है। एक मेरी स्क्रीन पे भी शायरी आ रही है, लेकिन मैं बाद में सुनाऊंगा। चलिए एक काम करते हैं, गीत संगीत का आनंद लेते हैं, फिर मिलते हैं। आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। बहुत ही खूबसूरत गाना, और इस गाने के बाद वेलकम बैक है आप सभी का। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। आज की जो ये बेहतरीन वाइव है इसको फुल ऑन सैटी सैटी और अमेजिंग अमेजिंग बना रहे हैं अखिल जी, मैं और साथ में कमल सर जो हमारी बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं और हमारे साथ ढेर सारी बातचीत कर रहे हैं। तो कमल जी, आपको आनंद आ रहा है यानी हमारे स्टूडियो में?
2: सर आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, अखिल ही अखिल है।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस।
0: मैं बस सभी अपने श्रोताओं से कहना चाहूंगा जो गाड़ी में हमें सुन रहे हैं या जो आसपास कहीं बाइक चलाते हुए सुन रहे हैं, तो हॉर्न का इस्तेमाल कम से कम करें, मतलब हॉर्न फ्री रखें। इतना शोर शराबा हो जाता है कभी कभी हॉर्न से कि साउंड पोल्यूशन भी अपनी जगह बढ़ता जा रहा है। क्या कहेंगे आप कमल जी इस बारे में?
2: सर ये थोड़ा सा मैटर सब्जेक्ट से अलग हो
1: जाएगा। सही कह रहे हैं आप, ये अखिल जी हैं जो दिल से दिल तक बात बनाते हैं।
0: इसके ऊपर कोई शायरी है?
1: हाँ,
2: अब इस विषय पर भी विचार करना पड़ेगा। अगली बार इस टॉपिक पर भी विचार करना पड़ेगा।
1: मैं बताता हूँ कमल जी, यहाँ रेडियो वाले ना कुछ भी पूछ सकते हैं, इनका ट्रैक कभी भी हट जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा हर डायरेक्शन में प्रिपेयर होना चाहिए। क्यों जी,
2: मैं तभी तो उनको सही ट्रैक पर ला दूं, ये फिर दूसरे ट्रैक पर चले जाते हैं।
1: एक मेरे को शायरी दिख रही है कि बहुत अच्छी सी है, मुझे लगता नहीं है वैसे ही अच्छी होगी क्योंकि मैं करता नहीं हूँ शेर व शायरी।
0: नहीं, ये काम व्हाट्सएप पे दिख रही है आपको?
1: हाँ, नहीं नहीं, मेरे को व्हाट्सएप पे नहीं दिख रही है, मेरे को किसी ने लिख के भेजी है, मेरे को वो दिख रही है। तो मैं भी इसको पढ़ता हूँ कि तुम्हें जो भी बहाना चाहिए था हमें तो कुछ बताना चाहिए था, कि तुम्हें जो भी बहाना चाहिए था हमें भी तो कुछ बताना चाहिए था। मुझे तो जुदाई का सदमा लगा, मुझे तो जुदाई का सदमा लगा, तुम्हें तो घर बसाना चाहिए था।
0: क्या बात कही,
1: अच्छी बात है ना।
0: वो तो घर बसा लेगी आप आनंद जी, ऐसी लिखते रहो मेरे लिए, वाला घर बसा जाएगा।
1: ये मैं अपने लिए नहीं बता रहा था यार, देखो कोई बंदा खुद पे थोड़ी ना चिपकाएगा यार, कैसी बात कर रहे हो। ये तो किसी ने मेरे को भेजी तो मैंने पढ़ के सुना दी। एनीवेज, हमारी शायरियों में वो कहां दम है जो कमल जी की बातों में है। क्यों अखिल जी,
0: बिल्कुल सही।
1: बैक टू कमल जी के पास चलते हैं और फिर कुछ बढ़िया से सुनते हैं।
0: भारत, कमल जी कितने साल हो गए आपकी शादी को?
2: 13 साल।
0: 13 साल का तो एक्सपीरियंस कमल जी के साथ है ही।
1: क्या बात है, बट हम उस एक्सपीरियंस की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम
2: आज लिखने लिखाने का 13 साल का नहीं
1: है। हाँ, आज मुझसे
2: लिखने लिखाने पिछले 4-5 साल का।
1: अच्छा, जो अब लिखते लिखाते हैं आप ये वाला, बहुत बढ़िया। तो इसी बात पे कुछ फरमा दीजिए जनाब आप। अच्छा, अभी जो है मौसम चेंज होने वाला है, जैसे अभी गर्मियों के से हम सीधा मानसून की तरफ जाने वाले, मतलब बारिश हरियाली चारों तरफ और रोमांस का महीना, रोमांटिक महीना कहते हैं
0: सावन, बच्चे स्कूल जाने वाले।
1: तो इसमें कुछ सुनाओ यार आप सर, तो बच्चे स्कूल जाने वाले
0: कल से,
1: बच्चों के लिए कोई शायरी नहीं है फिलहाल।
2: तो उसके तो मानसून की चाली ने पहले चिपका देना।
1: हाँ हाँ, अगर कुछ और हो तो वो भी चिपका सकते हैं आप। नहीं, अच्छी बात है, उन्होंने चार पंक्तियां उन्होंने अच्छी से लगा दी थी, हमने
0: ये फेविकॉल का एड था जो कमल जी कर रहे थे।
2: चार पंक्तियों में जीवन की सच्चाई देखेगा कि जिंदगी क्या है।
1: अच्छा चलिए, बिल्कुल सर,
2: कि अंक गणित के अंक से उलझी जीवन की इतनी सच्चाई।
1: वाह वाह,
2: अंक गणित के अंक से उलझी जीवन की इतनी सच्चाई, नींद दहाई ख्वाब सैकड़े और खुशियां हैं एक इकाई।
0: क्या बात है, क्या बात है। हमारे पास नेहा जी का मैसेज आया है कि कि कमल जी की शायरी सुनकर तो मुझे कॉलेज के दिन ही वापस याद आ गए। तो नेहा जी आपको, मतलब कमल जी हमारे इतने भी पुराने नहीं है, मगर हाँ शायरी उनकी बहुत ही अंदर तक जाती है, तो पुराने दिन तो हमेशा सभी को याद आ जाते हैं।
1: True, got it, एकदम, I agree with you. बहुत ही अच्छा। और मुझे लगता है कि देखो यार अखिल भैया, पता है जो शेर व शायरी का माहौल होता है ना, इसका डबल मजा हो जाता है अगर एक शायर आपके सामने जबरदस्त बैठा हो, है ना, जैसे कि आप बैठे हैं मेरे सामने, आप भी कुछ ना कुछ अतरंगी सतरंगी सुनाते रहते हैं, मजा आ जाता है। मुझे लग रहा है कि कमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। हाँ, तो हमें चुप हो चाहिए यार, इज्जत का मामला है।
0: कमल जी कहेंगे चार लाइनें सुन के मेरी वाहवाह कर देते, उसके बाद अपनी बात बोल देते
2: यार, मुझे कहना पड़ता है पूरी तो सुन लो,
1: पूरी मैं कह रहा हूँ तो दोस्तों
0: पूरी कीजिए आप पहले। आपकी वो चार लाइनों में दिल एकदम अंदर तक भरा आता है ना,
2: जो मुझे भी पता चल जाता है कि चाइल्ड को दम था या नहीं था।
0: देखा चुपर उस समय।
1: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, हम थोड़े से अनजान हैं इस फील्ड में, तो आप जरा हमें बख्श दीजिएगा और आप अपनी आगे की लाइनों को पूरा करिएगा।
2: चलिए जिंदगी पर ही कुछ चार पंक्ति और देखिएगा।
1: बिल्कुल सर।
2: कि जीवन का हर रोज मुझे एक नया तजुर्बा मिलता है।
1: वाह,
0: बहुत खूब।
2: जीवन का हर रोज मुझे एक नया तजुर्बा मिलता है, किसी के मन में छिपा है क्या ये ऐसे पता कहाँ चलता है।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
2: किसी के मन में छिपा है क्या ये ऐसे पता कहाँ चलता है।
1: जी जी।

0: वैसे तो जितने भी मुंह हैं, वैसे तो जितने भी मुंह हैं उतनी तरह की बातें हैं, वैसे तो जितने भी मुंह हैं उतनी तरह की बातें हैं, कोई खुलकर मिलता है तो कोई मिलकर खुलता है।
1: क्या बात है,
0: जीवन का हर रोज मुझे एक नया तजुर्बा मिलता है।
1: बहुत सही बात कही, आप दिल खोल के बातें करें जिससे कि आपका दिल ना खोलना पड़े कभी। इतनी अच्छी बात कही, मोहब्बत में लोग चांद तक पहुंचने की बात करते हैं, हम तो बस इतना चाहते हैं कि सामने वाला सीन करके भी जवाब दे दे।
2: क्या बात है, बिल्कुल आपको जवाब मिलता भी है, वो बात की कि आप जवाब नहीं देते हैं, बहुत अच्छी आपने करी है, थैंक यू सो मच। और ये जो बातों का सिलसिला है ये और भी मजेदार हो जाता है जब इसमें चार लोग बैठे होते हैं, फिलहाल तीन लोग बैठे हैं, मजे की बात ये है
1: तीन का जो ये कॉम्बिनेशन है, ये आनंद बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन होता है।
2: बिल्कुल, ये बचपन से हमारे हमने कहावत सुनी थी, तीन लोग की जो जोड़ी होती है वो खतरनाक ही होती है।
1: ऐसी तीन दोस्त होते हैं जो गाड़ी में बैठ के एक दूसरे को अपनी कहानियां सुना रहे होते हैं इस समय।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बात अलग है, आपने स्टेशन में बैठ के अपनी कहानी कभी नहीं सुनाई, खैर कभी फुर्सत से सुनेंगे हम जरूर। जब तक कमल सर कुछ नया निकाल रहे हैं, हम एक काम करेंगे, गाने की तरफ बढ़ेंगे, छोटा सा एक म्यूजिकल ब्रेक होगा और उसके बाद हम लोग वापस आएंगे, फिर सर से इजाजत लेंगे और कुछ उनसे सुनेंगे भी।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल।
2: गाना सुना है अपने किशोर कुमार का, जिंदगी एक सफर है सुहाना,
1: हाँ यहाँ कल क्या हो किसने जाना, तो अगले एपिसोड में अगले लिंक में क्या हो जाए अभी किसने कुछ नहीं जाना।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, आगे की लाइन बताओ या भूल गए हो। गाइस अभी काम करते हैं, गाना सुनते हैं, मुझे खुद को भी याद नहीं आ रही है, कमल सर भी सोच रहे हैं आगे कुछ तो कहा था किशोर कुमार ने, अखिल भाई तो पूरा ही डूब चुके हैं। खैर एक काम करते हैं, गाना सुनते हैं, आपका ही मजा।

0: वेलकम बैक 89.6 मेगाहर्ट्ज़ एफएम मुरादाबाद, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। धड़कना सीख जाते हैं,
1: हाँ,
0: टूटे हुए दिल भी फिर धड़कना सीख जाते हैं जब कोई सच्चा इंसान जिंदगी में आ जाता है।
1: क्या बात है, और इनकी जिंदगी में भी एफएम आ गया है, तो इसलिए ये अपना दिल बहुत धड़का रहे। सही बात है, गलत?
0: दिल से दिल तक चल रहा है,
1: नई बात,
0: दिल से दिल तक चल रहा है। आज हमारे पास कई लिसनर्स के कॉल आ रहे हैं, हम उठा नहीं पा रहे हैं, उसके लिए माफी। मगर आज आप सभी सुन रहे होंगे हम सबके दिलों की बात, क्योंकि जो हमारे साथ बैठे हैं ना सख्स कमल जी, वो ऐसे हैं कि अगर कोई बात भी निकल रही है, अगर हंसी मजाक में भी निकल रही है ना, तो आज उनके डायरेक्ट दिल से निकल रही है। और आनंद को तो आप जानते हो,
1: तो
0: ये
1: मतलब
0: तो हिला ही देता
1: है। कहना क्या चाहते हैं, उनकी बात घर पे दिल से नहीं निकलती है?
0: अब घर पे तो
1: भाभी जी के लिए
0: भाभी के आगे क्या क्या बातें इनकी निकल रही नहीं निकल रही हमें तो नहीं पता।
1: वो आपको तो खैर पता है, आप भी तो शादी शुदा है। मैं ये बोल के सबको बता देना चाहता हूँ कि अखिल इट्स नॉट सिंगल। आप लोग इस नजर से नहीं देखेंगे हमारे अखिल भाई को, नहीं तो भाभी जी हमें बहुत मारेंगी। खैर, बैक टू पॉइंट, इससे जोक्स अपार्ट, अखिल भाई, मैंने कहा था ना जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हमने कहा था हम कमल जी से सुनेंगे, लेकिन उससे पहले अखिल जी ने सुना दिया, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है कभी भी। खैर सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं एक बार फिर से। आप जरा अब जो है ये हमारी अंतिम कॉन्वर्सेशन चल रही है, ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पे अब इजाजत लेंगे आपसे, और आपने इतना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। बट जाते जाते कुछ अच्छा सा अगर आप सुनाना चाहें, ताकि अगली बार लिसनर और डिमांड करें, हम दोबारा आपको बुलाना चाहें, है ना अखिल भाई?
0: बिल्कुल सही कहा।
2: देखिएगा कुछ पंक्तियां और हैं कि नामवरों की महफिल में गुमनाम से हम क्यों दिखते हैं।
1: क्या बात है,
2: नामवरों की महफिल में, मतलब जैसा आप लोगों की महफिल है।
1: जी जी, नहीं हमारा नाम है सर, मेरा आनंद है, उनका महफिल है।
2: नहीं मतलब जाना माना नाम, उसको नामवर कहते हैं।
1: अच्छा, नाम
2: जो जाना माना नाम होता है,
0: ये स्वयंवर की बात कर रहे हैं, बाद में स्वयंवर।
1: अच्छा ओके, सॉरी सॉरी।
2: नामवरों की महफिल में गुमनाम से हम क्यों दिखते हैं,
1: वाह,
2: अपनी भी कुछ पहचान बने
1: जी,
2: आओ कुछ ऐसा लिखते हैं।
1: वाह, क्या बात है,
2: अपनी भी कुछ पहचान बने, आओ कुछ ऐसा लिखते हैं। अब तक तो गैर की महफिल में,
1: जी जी,
2: अब तक तो गैर की महफिल में बस वाह वाह ही करते आए।
1: वाह वाह वाह वाह,
2: अब तो अब तक तो गैर की महफिल में बस वाह वाह ही करते आए, एक खरीदार की चाहत है, बाजार में हम भी बिकते हैं।
0: क्या बात कही,
2: नामवरों की महफिल में गुमनाम से हम क्यों दिखते हैं।
1: दिखते हैं, क्या बात है, क्या बात है,
0: ये तो आज इन्होंने उल्टा ही कह डाला, मतलब हमारा तो मतलब कहते हैं अंदर तक पहुंच गए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और ये अंदर से बाहर भी निकल जाएगी, आप चिंता ना करें दोस्तों। जी जी सर, और देखिए वही वाली बात है ना कि जब मैं हमेशा कहता हूँ कि एक कलाकार की खूबसूरत बात यही होती है कि जब वो दिल से लिखते हैं ना, और जब वो दिल से सुनाते हैं तो वो कनेक्ट भी दिल से दिल तक होती है। कमल सर, है ना, बहुत सारे लोग हैं जो अभी इस फील्ड में आना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, बट उन्हें पता नहीं है वो कहाँ से शुरुआत करें, कैसे लिखें, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? जो बहुत सारे ऐसे आजकल हमारे इस शो को सुन के बहुत लोगों के मन में, मुझे तो बहुत मैसेज आते हैं, ख्याल आ रहा है कि हम भी आए, हम भी यू नो इस तरह की शायरी करें, बट उनको पता ही नहीं है कि उनको स्टार्ट कैसे करना है। तो आप जैसे आपका 3-4 सालों का भी सर ने एक्सपीरियंस बताया, तो आप इस पे कुछ कहना चाहें उन बच्चों को?
2: किसी भी लिखने वाले के लिए बहुत बड़ी चीज है सब्जेक्ट।
1: हाँ बिल्कुल,
2: और अगर आप बिल्कुल सटीक दिमाग से बिल्कुल एक मतलब एक एम लिए देखोगे ना, तो आपको बहुत सारे आसपास में सब्जेक्ट दिखेंगे। वो सब्जेक्ट किसी भी विषय पे हो सकते हैं, देश पे भी हो सकते हैं, आपकी आम जिंदगी जो है रोज की उससे भी जुड़े हो सकते हैं।
1: 100%.
2: बस आपको वो सब्जेक्ट देखना है और कुछ सोचना है उसके बारे में,
0: आप खुद
2: अपने आप ही आप जुड़ते जाएंगे सब्जेक्ट से, और पंक्ति अपने आप ही अंदर आपके बनती रहेगी, बस आपको उनको
1: उतारने की
2: सेट करना है,
0: उन शब्दों को अपने जहन में ला के आपको
2: उसमें आपकी जो भी घटनाएं घट रही है उन पे थोड़ा नजर रखिए,
1: मतलब आपको ऑब्जर्व करना है।
2: मुझे तो दिल से मुझे तो जो इंस्पिरेशन मिलती है अखबार से मिलती है।
1: अरे वाह, बहुत बढ़िया।
0: अमर उजाला से या दैनिक जागरण से?
2: अमर उजाला और हिंदुस्तान।
1: क्या बात है, बढ़िया, वेरी नाइस, आपने इन दोनों को प्रमोट किया है, हमें दोनों पैसे भी देते हैं। तो हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे।
0: अगर आपको आसपास कोई सब्जेक्ट नहीं मिले तो आप खुद को भी अपना एक सब्जेक्ट बना सकते हैं।
2: नहीं, खुद पे लिखना बहुत बड़ा काम है, हर कोई नहीं कर सकता।
1: बहुत अच्छा आपने कहा है सर,
2: खुद पर लिखना और खुद पर हंसना
1: जी,
2: बहुत बड़ी बात,
1: बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, हम मजे की बात है कि हम दोनों खुद पे हंसते रहते हैं, क्योंकि हम लोग एरिया में काम करते हैं। एनीवेज,
0: बहुत दूसरों को देख के हंसते रहते हैं।
1: बहुत नहीं, दूसरे लोग हमें देख के हंसते हैं।
0: मैं कहना चाहूंगा ये बिल्कुल आनंद जी दिल से निकल रही है आवाज,
1: बिल्कुल मेरा दिल का तार आप प्लीज तोड़ दीजिए, इससे पहले कोई और जूते चप्पल बरसाए, आप प्लीज पूरा करिए अपनी बात।
0: महफिलों की रौनक तुमने ना एकदम वो कर देता, महफिलों की रौनक लोग नहीं,
1: वाह,
0: महफिलों की रौनक लोग नहीं, उनके अल्फाज होते हैं।
1: क्या बात है,
0: जो दिल से निकले वही हमेशा याद रहते हैं।
1: अरे वाह, बहुत बढ़िया, जैसे कि आप याद रहते हैं हमारे लिसनर्स को, और कमल जी तो हमेशा याद रहेंगे, इतनी अच्छी बातें करते हैं सर। चलते चलते कुछ सुनाना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को जाते जाते?
2: बिल्कुल सर, आपने कहा तो जरूर सुनाना पड़ेगा।
1: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक दोस्ती वाला अगर कुछ हो जाए तो मेरे को बड़ा मजा आता है दोस्ती में, यू नो हमारे जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं सब हमारे फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, तो अगर इस पे आपको
0: सुनाना चाहे। सब अपने दोस्तों को भी याद कर रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अखिल जी भी याद कर रहे हैं।
2: पर भी चार लाइनें सुनाते हैं, पहले जो निकली हुई है पहले उनको।
0: हां हां हां, क्यों नहीं क्यों नहीं।
2: तो देखिएगा कि जाने किस आलिम की उस पर मेहरबानी हो गई है।
1: वाह।
2: जाने किस आलिम की उस पर मेहरबानी हो गई है, उसकी लिखी नज्मों की महफिल दीवानी हो गई।
1: वाह जी वाह।
2: उसकी लिखी नज्मों की महफिल दीवानी हो गई है, उसकी गुमनामी भी एक दिन नाम की मोहताज थी।
0: बहुत खूब।
2: उसकी गुमनामी भी एक दिन नाम की मोहताज थी, शोर है अब हर तरफ उसकी कहानी हो गई है, जाने किस आलिम की उस पर मेहरबानी हो गई।
1: क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया।
0: जो लोग आलम बिरयानी के आसपास कहीं बैठे हुए हैं गाड़ी में तो वो अपनी बिरयानी आराम से खाते रहे।
1: एब्सोल्युटली सही कहा।
0: और ये शायरी का असली आनंद तो उन्होंने लिया
2: होगा। तो ये मतलब उसकी प्रमोशन हो गई क्या? आलम बिरयानी की प्रमोशन भी हो गई
1: सर, यहाँ कुछ भी हो सकता है,
0: कुछ भी हो सकता है।
1: जैसे कि मैंने कहा था आपसे, कुछ अगर आप हमारे दोस्तों के लिए कुछ दोस्ती पे अगर दो लाइन कहना चाहें जाते जाते।
2: चलिए साहब, जैसा हुक्म है।
1: बिल्कुल हाँ हाँ, आप बहुत सुपर फास्ट भागते दौड़ते पहुंचे हमारे ऑफिस, हमें पता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो
2: देखिएगा कि कुछ मतलब दोस्ती, मिलना मिलाना, महफिल, इस बारे में कुछ आप उससे कोरिलेट कर लेंगे।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
2: कि महफिलों के दौर ये आते रहे जाते रहे।
1: वाह वाह।
2: महफिलों के दौर ये आते रहे जाते रहे, आप सब बस ऐसे ही हंसते रहे गाते रहे।
1: क्या बात है।
2: आप सब बस ऐसे ही हंसते रहे गाते रहे, सोच नाना ये कि मैं तुम सबसे कितना दूर हूँ। सोच नाना ये कि मैं तुम सबसे कितना दूर हूँ, ये ना कह देना कि मैं नाकाबिले दस्तूर हूँ।
1: क्या बात है, क्या बात है।
2: ये ना कह देना कि मैं नाकाबिले दस्तूर हूँ, घर की जिम्मेदारियों के बोझ से कुछ चूर हूँ।
1: अरे वाह।
2: घर की जिम्मेदारियों के बोझ से कुछ चूर हूँ, पर तुम्हारी महफिलों का एक चमकता नूर हूँ।
1: क्या बहुत बढ़िया, खूबसूरत।
2: पर तुम्हारी महफिलों का एक चमकता नूर हूँ, बंद गए हैं दिल तो ये बंधन न तोड़ा जाएगा। बंद गए हैं दिल तो ये बंधन न तोड़ा जाएगा, जुड़ गया है साथ तो अब टूटने न पाएगा।
1: क्या बात है, क्या बात।
2: जुड़ गया है साथ तो अब टूटने न पाएगा, बस कर्म इतना करो महफिल यूं ही सस्ती रहे।
1: क्या बात है।
2: बस कर्म इतना करो महफिल यूं ही सस्ती रहे, जाम भी चलते रहे और क्षमा जलती रहे।
0: क्या बात कही, क्या बात कही। जिनके हाथ में जाम है वो तो
2: उनका भी परमिशन हो गया,
0: वो तो इस समय खुशी से कह रहे हैं क्या बात है, आज तो सही टाइम पे हमने एफएम लगा लिया और दिल से दिल तक बात जो है हमारे बीच पहुंच गई है। और मैं सभी लिसनर से कहूंगा कि आप भी अपनी शायरी हमें मैसेज कर सकते हैं 9837896896 पे, हम भी आपकी दिल की बात सभी के पास पहुंचाएंगे।
1: बिल्कुल सही कहा अखिल भाई आपने, और हम भी चाहते हैं कि आप भी अपने टैलेंट को छुपाएं नहीं, बाहर निकालें, है ना। तो कमल जी बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आप आए, आपने इतना इंपॉर्टेंट टाइम साझा किया और अपने दिल से लिखी बातों को हमारे लिसनर तक पहुंचाया, और हम चाहेंगे कि बीच बीच में हम आपको ऐसे ही परेशान करते रहे, है ना, और आप ऐसे ही हमारे दोस्तों को एंटरटेन करते रहे। बिल्कुल। तो अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और इतना स्पेशल इस प्रोग्राम को बनाया। अखिल जी चले अपना पोटला उठा के बातों का पिटारा लेके,
0: कल आप लोगों से मिलेंगे हम ठीक फिर से रात में 9 बजे से 10 बजे तक, और करेंगे दिल से दिल की बातें।
1: क्या बात है। तब तक के लिए मैं यानी आरजी आनंद और हमारे साथ अखिल भैया थे और कमल जी थे, हम लेते हैं आपसे जाने की इजाजत, जल्दी करेंगे आपसे मुलाकात। फिलहाल छोड़ के जा रहे हैं कुछ अच्छे गाने, आप कहीं मत जाइए, ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहो, गुनगुनाते रहो। बाय बाय।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: चलें साथ लेने,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे।
0: हाँ सम

0: किसी के,
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के,

0: nagagaya.
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।